मन में विश्वास, वाणी में मिठास और कर्म में लगन रखिए। हर नई सुबह सफलता का एक नया द्वार खुलती है।

0: नमस्ते है सबको, नमस्ते नमस्ते।
1: जिसकी वाणी में मिठास होती है उसके लिए हर राह आसान हो जाती है। प्यार और सम्मान का सबसे सुंदर माध्यम मधुर शब्द ही हैं। और इसी विचार के साथ मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति, छोड़े जा रही हूँ आपको एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए सुनते रहे आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 16वीं तिथि, तथा 6 जून सन

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को

0: सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमरीका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। 5 मिनट हुए हैं, आइए सुनते हैं चिंतन।
3: जिस समय हमारी चेतना में सिर्फ एक ही विचार व्यवस्थित रहता है, चाहे वो किसी मंत्र को सिद्ध करने का हो या किसी विशेष विषय पर परीक्षा उत्तीर्ण कर डिग्री प्राप्त करने का या एक सफल व्यापारी बनने का या किसी खेलकूद में प्रवीणता लाकर मेडल प्राप्त करने या डॉक्टर या इंजीनियर बनने का हो, उस समय हम अपने मन में सिर्फ उस लक्ष्य को प्राप्त करने की चेष्टा रखते हैं। तब हर घड़ी हर लम्हे हमारे सोचने और विचारने की धार उसी विषय में ही केंद्रित होकर हमारा विचार और मन की दिशा जुड़ी रहती है। इसी को महापुरुषों और श्रेष्ठ दार्शनिकों और विद्वानों ने समर्पण कहा है। इसी को अध्यात्म की भाषा में तुरीया अवस्था कहते हैं। अगर प्राप्त शिष्य अपने सदगुरु को सोते जागते चलते फिरते खाते पीते स्नान करते और हर प्रकार का क्रियाकलाप करते वक्त तसव्वुर ध्यान रखता है तो उस शिष्य को 52 प्रकार की सिद्धियां और गुरु के पास की विद्या स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है और यही समर्पण का चमत्कार है। एक जगह गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से यही कहा है, हे अर्जुन, तू निष्काम भाव से मेरे शरणागत हो जा, अतः पूर्ण रूप से मुझ पर ही आश्रित हो जाओ, फिर मेरा जिम्मा है, अर्जुन तेरा बेड़ा पार है। परंतु मन और अपने विचार को हमारे द्वारा इस स्तर तक लाना एक हंसी मजाक की बात नहीं है। जैसे एक साइकिल चलाने वाला और एक घोड़ी सवार चलते चलते अचानक एकदम से साइकिल और घोड़े की गति को रोकते नहीं है, यदि एकदम से रोक दें तो सवारी के गिरने का डर रहता है। साइकिल और घोड़े की सवारी जिस प्रकार बिना अभ्यास के नहीं सीखी जाती, उसी प्रकार मन को भी अपने काबू में लाना बहुत मुश्किल की बात है। किंतु हमारा मन एक चंचल घोड़े की तरह है, जिसे भी अभ्यास के माध्यम से काबू में लाया जा सकता है, फिर हमें अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। किसी शायर ने यह कहा है, कदम चूम ही लेती है खुद ही बढ़कर मंजिल, गर मुसाफिर हार न माने। समर्पण और सफलता एक दूसरे का पूरक है। यदि लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ कर्म किया जाए तो सफलता अवश्य कदम चूमती है। यदि समर्पण भाव से पूजा की जाती है तो परमपिता परमात्मा भक्त के असंभव कार्य को भी संभव कर देते हैं। समर्पण का एक श्रेष्ठ उदाहरण है प्रथम आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने चार दिशाओं में चार मठ की स्थापना की है, जो हिंदुओं का पवित्र धार्मिक स्थल है। उनकी माताजी गंगा स्नान करने के लिए अपने निवास से दूर जाती थी, पर वो अत्यंत विद्या थी, कष्ट सहकर स्नान करके घर लौटती थी। उनका ये कष्ट शंकराचार्य जी महाराज से नहीं देखा गया। उन्होंने 40 दिनों में मां गंगा को सिद्ध कर पूर्ण रूप से समर्पित होकर प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना मां गंगा ने सुन ली और गंगा जी उनके घर के पास से बहने लगी। फिर उनकी माता जी को गंगा स्नान के लिए कष्ट नहीं हुआ। ये घटना भी समर्पित होकर प्रार्थना करने का ही परिणाम है।
2: आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से भी आप सुन रहे थे चिंतन

कार्यक्रम वंदना में भी आपने हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति को सुना। आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से इसमें आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं कवि नारायण अग्रवाल नारायण के लिखे कुछ भक्ति गीत। आप सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति और रॉबिन चटर्जी के स्वर में ये भक्ति गीत।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
4: भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना भी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से प्रस्तुत है कृषि चर्चा, वार्ताकार है मनोज कुमार साहू।
5: किसान भाई जय जवाहर, राम राम। आज हम चर्चा करबो बैगन और टमाटर में एक मुख्य बीमारी होती है उकटा बीमारी, ओकर निदान कैसे किया जाए, ओकर पहचान के कैसे किया जाए, काबर की है बहुत ही प्रॉब्लमेटिक इश्यूज है। तो मैं चर्चा कर रहा कि सबसे पहले टमाटर में जो उकटा बीमारी होते वो दो तरीके के होते, एक जीवाणु जनित भी होते और एक फफूंद जनित भी होते। सोलेनेसी में मिर्च, टमाटर, बैगन ये तीनों में भी होते, तो लक्षण लगभग समानता रहते। तो सबसे पहले हम बात करबो कि जो जीवाणु जनित उकटा होते वह कैसे होते। तो किसान बंधु, जो जीवाणु जनित उकटा रोग होते ओकर जो पहचान ये है कि पौधा ग्रीन स्थिति में जब हरा हुए रहते और मुरझाए के शुरू होते, सबसे पहले वहाँ एक तरीके से पत्ती और ऊपर से सुखा जाते और ऊपर से नीचे की राज जाते, पत्ती झुरमुरा जाते। तो सडनली क्या होते कि 2-3-4-5 दिन के अंदर में पत्ती अचानक से मुरझा जाते और हरा स्थिति से ही मुरझाते। यह बैक्टीरियल विल्ड जो जीवाणु जनित कथन एक पहचान हुई, लेकिन सिर्फ लक्षण के आधार पे ही पहचान पाना वाला मुश्किल है। तो एकल लिए एक हम एक छोटे टेस्ट करथन। तो किसान भाई का करथन कि जहाँ इसने मुरझात है ओला हमन जो संक्रमित पौधा है ओला जड़ से निकालथन और पानी में थोड़ा वास करथन, ओकर बाद एक कांच के ग्लास लेबो और ओमे साफ पानी भर देबो, फिर जो जो जड़ भाग रहते वो जो तना और जहां से जमीन से कॉन्टेक्ट में रहते वो भाग लेबो और कट कर, कट करके हमन ओला वो ग्लास में कुछ समय के लिए 5 मिनट के लिए स्थिर रूप से रख देबो, ओला बिना डिस्टर्ब किए हुए किसी प्रकार से ग्लास ला हिलाना डुलाना नहीं है। तो कुछ समय बाद स्थिति ऐसे होते कि वहाँ ट्रांसपेरेंट टाइप के एक धार की तरह से उमे ऊज निकलते, अगर एकर पहचान होगी तो यह बैक्टीरियल विल्ट होइस। अब बैक्टीरियल विल्ट अब फफूंद जनित विल्ट होते, अब एकर पहचान करना है तो फफूंद जनित जो उकटा रोग होते इनमें भी पौधा मुरझा थे, शुरू तो पौधा लगभग थोड़ा पीला पड़ के पत्ती है मुरझाए कसकर थे और उग्र स्थिति में पत्ती यह भी झड़ते भी, लेकिन यह बैक्टीरियल विल्ट की तुलना में थोड़ा धीरे धीरे होते। तो अब एकर पहचान करने के लिए अब एकर भी टेस्ट करबो तो ओला का करबो कि जो जड़ है उस संक्रमित पौधा के ओला भी निकालबो और फिर उसने हमन पानी में थोड़ा धो लेबो और एकर बाद जड़ ला हमन क्रॉस करके काट के देखबो। तो अगर जो जड़ के भाग में वैस्कुलर डिस्क्रेशन कथन मतलब वो जो जड़ वाला भाग है वो में भूरा काला कलर के दिखाई दे ही, अगर भूरा काला कलर के दिखाई दे दिस तो यह फंगल विल्ट होइस। अब एकर अब हमन साइंटिफिक रूप से पहचान कर दे रहे, अब एकर निदान करबो तो बैक्टीरियल विल्ट के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक थे ओला कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ हमन मिक्स करके ड्रेंचिंग करबो और नेक्स्ट टाइम जब कोई भी हमन सोलेनेसी इस तरीके कि जहाँ एक बार फसल आगे है तो नेक्स्ट टाइम जब हमन एकर बीज उपचारित करबो, थरहा उपचारित करबो, मृदा उपचारित करबो और तब लगाबो। लेकिन खरीफ फसल में हमन ड्रेंचिंग ही कर सकत हन, तो किसान भाई ड्रेंचिंग के माध्यम से कुछ हद तक हमन कंट्रोल कर सकत हन। फंगल विल्ट के जब निदान के बाद इस तो ओकर लिए जो टेबुकोनाजोल फफूंद नाशी रसायन होते ओकर लगभग 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना लेबो अपन जतका क्वांटिटी में चाहिए और ओला हमन सिंचाई के माध्यम से ड्रेंचिंग कर देबो। अगर ड्रिप उपलब्ध है तो ड्रिप के माध्यम से चला देबो और इस तरीके से हमन निदान पा जाबो। लेकिन किसान भाई एक चीज जरूर ध्यान रखिया कि अगर बार बार वही फसल ले था तो नेक्स्ट टाइम में कोशिश करा कि फसल चक्र अपनावा और फसल चक्र नहीं अपना पा था तो जय फफूंद नाशक जो ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास है एकर प्रयोग विशेष रूप से करा। धन्यवाद।
4: कृषि चर्चा अभी आप सुन रहे थे, वार्ता कर थे मनोज कुमार साहू 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 35 मिनट हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम करेंगे आज सुबह 9 बजकर 25 मिनट पर, दिन के 11 बजे, दिन के 12 बजे और रात्रि 9 बजे। यहीं से पॉडकास्ट श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ का चौथा भाग हम अनुप्रसारित करेंगे आज सुबह 9 बजकर 10 मिनट पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रात्रि 9 बजकर 25 मिनट पर हम अनुप्रसारित करेंगे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर युवा शक्ति थीम पर विशेष कार्यक्रम। आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह का अनुप्रसारण किया जाएगा आज सुबह 8 बजकर 30 मिनट पर। रामचरितमानस का भाग 34 आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर बाद, यानी कि सुबह 6 बजकर 40 मिनट पर। देशगान का प्रसारण होगा सुबह 6 बजकर 50 मिनट पर। आज सुबह 7 बजकर 5 मिनट पर हम आपके लेकर आएंगे कार्यक्रम फ्रेश बॉलीवुड। लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मंदिर का आनंद लीजिएगा सुबह 7 बजकर 45 मिनट पर। सुगम संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे आज सुबह 10 बजकर 10 मिनट पर और सुबह 10 बजकर 30 मिनट का समय होगा फरमाइशी फिल्म गीतों के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। पॉप गीतों का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम पॉप टाइम में, प्रसारण समय होगा संध्या 5 बजकर 10 मिनट। फिल्म संगीत हमारे केंद्र से आज आप सुनेंगे संध्या 6 बजकर 20 मिनट पर, संध्या 7 बजे और रात्रि 8 बजकर 30 मिनट पर। रात्रि 8 बजकर 20 मिनट का समय होगा गैर फिल्म गीतों के प्रसारण का। आनंद लीजिएगा रात्रि 10 बजे और आज रात्रि 10 बजकर 30 मिनट पर हम आपके लिए लेकर आएंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी। झरोखा आप सुनेंगे सुबह 7 बजकर 35 मिनट पर। प्रसारण का प्रसारण होगा संध्या 5 बजे। महिलाओं का कार्यक्रम वनिता विहार हम लेकर आएंगे संध्या 5 बजकर 30 मिनट पर। आपस की बात का विषय होगा नारी की समझदारी, सुरक्षित भोजन की जिम्मेदारी। ये चर्चा होगी विश्व खाद्य दिवस के संदर्भ में। इसके साथ ही चर्चा घरेलू हिंसा के प्रति आवाज उठाए, न घबराएं न संकोच करें। कार्यक्रम किसान वाणी सुनेंगे संध्या 7 बजकर 20 मिनट पर। आज की बात का विषय होगा नमो ड्रोन दीदी और आधुनिक खेती। अन्य नियमित क्रमों के साथ आज आप सुनेंगे चर्चा फूलों की खेती किसानों के लिए समृद्धि का रास्ता। ये चर्चा होगी आज की नसीहत के अंतर्गत। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है 100.7 MHz पर।
6: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च 1 विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
7: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर 40 मिनट हुए हैं। आज सुनते हैं रामचरितमानस का भाग 34। कलाकार हैं ए हरिहरण।

तारक नाम के असुर से त्रस्त देवताओं को ब्रह्मा ने यह ज्ञान दिया कि उसका वध शिव जी के पुत्र द्वारा ही संभव हो सकेगा। शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक घोर तपस्या की है, किंतु शिव अखंड समाधि में बैठे हैं। अतः ब्रह्मा ने कामदेव द्वारा शिव जी की समाधि भंग कराने का परामर्श दिया। देवताओं ने बड़े प्रेम से कामदेव की स्तुति की। तब जाकर विषम पांच वाणों और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवती की कथा और अनुरोध सुनकर कामदेव को हंसी आई, क्योंकि वो जानता था कि शिव की समाधि भंग करके उसके प्राण नहीं बचेंगे। फिर भी परमार्थ के हित में अपनी बलि देने के लिए वह सहमत हो गया। पुष्प के अपने धनुष तथा वसंत आदि सहायकों की सहायता से कामदेव ने समस्त संसार में अपना प्रभाव फैलाकर स्त्री पुरुष संज्ञा वाले सभी चर अचर प्राणियों को काम के वश में कर दिया।

रामचरितमानस का भाग 34 सभी आप सुन रहे थे। 50 मिनट हुए हैं। आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से प्रस्तुत है समूह स्वर में देशगान। रत्न है सुल्तान त्रिपाठी निराला की।

สมุทรสุนทรีสุดท้ายคุณต้องการ

0: परिषदा सर्वेभ्यः योग्य छात्रेभ्यः परामृष्टं यत् ते निर्धारित समये एव स्व आवेदन प्रक्रियां सम्पादयन्तु। केन्द्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी अघोषयत् यत् अंडमान द्वीप समूहस्य पूर्व समुद्रीय तटात् प्रायः 15 किलोमीटर दूरे श्री विजयपुरम त्रिक्षेत्रे प्राकृतिक गैस भंडारः अन्विष्टः। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन संदेशेन श्री पुरी प्रख्यापितवान् यत् एतत् अन्वेषणम् अंडमान समुद्रस्य विशाल ऊर्जा क्षमतां पुनः प्रमाणीकरोति। सहैव अस्मिन् क्षेत्रे प्रचल्यमानस्य गवेषणाभियानस्य एकाम् अपरां सफलतां च सूचयति। सः अकथयत् यत् ऑयल इंडिया इति संस्था सम्प्रति गैस द्रव्यस्य संरचनां तथा च तस्य ऊष्मीयमानं मूल्यांकितुं गैस सैंपलिंग इति प्रतिचयनस्य कार्यं करोति। अन्ताराष्ट्रिय पर्यावरण दिवसावसरे श्रीपुरी महोदयेन नवदिल्ल्यां फ्लेक्स इंधन वाहनेभ्यः E85 इंधनस्य शुभारंभो विहितः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ह्यः अब्रवीत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः आर्थिक परिष्काराणां लक्ष्यस्य अन्तर्गतं भारतस्य विकास यात्रा देशस्य आर्थिक समृद्धिम् अविरतं वर्धयति। अस्मिन् आर्थिक वर्षे पंजीकृतं 7.7% जीडीपी विकासं निर्दिश्य श्री शाहः प्रावोचत् यत् एषा उपलब्धिः गत 12 वर्षेषु भारतस्य अर्थव्यवस्थया सुदृढतां प्रकटयति। अथ च क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तान दलयोर्मध्ये स्पर्धा अद्य न्यू चंडीगढ़स्य मुलानपुर स्थिते महाराजा यादवेन्द्र सिंह अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडांगणे आरप्स्यते। अस्यां स्पर्धायां शुभमन गिलः भारतीय दलस्य नेतृत्वं विधास्यति। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं प्रातः 9:30 आरप्स्यते। पुरुषाणाम् अंडर 18 इति आ 18 एशिया कप हॉकी प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां भारतेन पाकिस्तान दलं 5-3 अंतरालेन पराजितम्। अपरतः महिलानां आ 18 एशिया कप प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां चीन देशेन भारतीय दलं पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की दर से बढ़ी है। दमण में कल 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर आगे बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 50 गीगावाट अकेले गुजरात की है। वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल

0: घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना का कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 942,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगाहारा में कल सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत की अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। सुबह 5:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फ्रेश वॉलीवुड।

0: कार्यक्रम फ्रेश हॉलीवुड का पहला गीत आपने सुना फिल्म कनप्पा से। स्वर था सूर्य गायत्री का, गीत लिखा था शिवाला ने, संगीत था रजिन राज का। आकाशवाणी 890 में आप सुनते हैं रेडियो श्रोता राहुल की प्रतिक्रिया।
1: नमस्ते, मैं हूं राहुल नामदो और आज मैं आपके बीच अपनी खुशी साझा करने आया हूं। भारत में रेडियो प्रसारण को 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह सुनते ही मेरा मन गर्व से भर जाता है। हृदय की गहराइयों से आकाशवाणी रायगढ़ को बहुत बहुत बधाई। सोचिए, 90 साल पहले जब रेडियो ने पहली बार आवाज दी थी, तब न तो टेलीविजन था, न मोबाइल, न इंटरनेट। उस दिन से लेकर आज तक रेडियो ने हर सुबह की शुरुआत की, हर त्योहारों की रौनक बढ़ाई, हर आपदा में राहत का पैगाम दिया। यह सिर्फ एक प्रसारण माध्यम नहीं, बल्कि हर भारतीय की जिंदगी का एक सच्चा साथी रहा है। 90 वर्ष यानी लगभग 90 बरस, इतने लंबे समय तक बिना किसी थके, बिना किसी रुके लोगों के बीच बने रहना, यह बहुत बड़ी बात है। कभी आजादी की लड़ाई के संदेश, कभी सीमा पर वीर जवानों की हौसला अफजाई, तो कभी छत्तीसगढ़ की माटी के लोकगीत। रेडियो ने हमें सिखाया कि सच्ची ताकत आवाज में होती है, दिखावे में नहीं। एक बार फिर से बधाई, जय हिंद।

दिलजीत और साथियों के सुर में अभी अपने बेबी जॉन फिल्म का गीत सुना। गीत लिखा था इरशाद कामिल ने, संगीत था थॉमस एस का। आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से इस समय आप सुन रहे कार्यक्रम फ्रेश वॉलीवुड।

0: Daily Law के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
6: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
5: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अनिरुद्ध रविचंद्र के स्वर में। गीत लिखा था मनोज मुंशी ने, संगीत था अनिरुद्ध रविचंद्र का।
1: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे

सभी कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

जाइए, आप कहाँ जाएंगे? इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना श्रद्धा मिश्रा, सुवर्णा तिवारी और यश मिश्रा के स्वर में। पारंपरिक रचना थी, संगीत था संदेश शांडिल्य का।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक, मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: DTH और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून, दिल की आरती,
2: सुरीली संदली।
7: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagad@gmail.com।

मिस्टर सेलिब्रिटी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अरुण विजय के स्वर में। गीत लिखा था योगेश ई पंडित ने, संगीत था विनोद याजमन्ना का। इसके साथ ही कार्यक्रम फ्रेश बॉलीवुड अब संपन्न होता है। सुबह 7:35 हुए हैं। आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा।

कार्यक्रम झरोखा सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके रेडियो मित्र सुशील का नमस्कार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं सड़क दुर्घटना में घायलों के त्वरित इलाज हेतु केंद्र सरकार द्वारा संचालित पीएम राहत योजना के विषय में। पीएम राहत योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका लक्ष्य है सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को तुरंत इलाज पहुंचाना, ताकि उनके जान की सुरक्षा की जा सके। श्रोताओं, दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर यानी दुर्घटना के बाद का पहला घंटा काफी महत्वपूर्ण होता है, और अमूमन यह देखा गया कि इलाज में देरी की वजह से बहुत लोग अपनी जान से हाथ गंवा बैठते हैं। इस गोल्डन में पैसे की कमी के चलते किसी का इलाज न रुके, इस उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। लोगों को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलता है इस योजना के अंतर्गत। यह कैशलेस इलाज जो होता है, इसकी भुगतान सीधे अस्पताल को की जाती है, और यह दुर्घटना की तिथि से प्रथम 7 दिनों के लिए लागू होता है। गंभीर 24 घंटे और अति गंभीर मामलों में 48 घंटे तक स्थिर उपचार की सुविधा मिलती है इस योजना के अंतर्गत। यह योजना EDR प्लेटफॉर्म और TMS 2.0 से जुड़ी हुई है। अस्पताल में भर्ती होने से लेकर दावा निपटान तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल है। इसके लिए पुलिस प्रमाणीकरण यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होता है। इस योजना के संबंध में हम आपको और जानकारी देंगे, उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम झरोखा में आज हम बात कर रहे हैं पीएम राहत योजना के विषय में। आपातकालीन स्थिति में यह योजना इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ईआरएसएस डायल 112 के साथ एकीकृत की गई है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति, वो पीड़ित हो या कोई अन्य आम नागरिक, एम्बुलेंस सेवा का अनुरोध कर निकटतम नामित अस्पताल का पता लगा सकता है। अगर इस विषय में कोई शिकायत हो तो पीड़ितों की शिकायत के समाधान हेतु जिला स्तर पर जवाबदेही नियुक्त की गई है। इसके लिए जिला सड़क सुरक्षा समिति, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त द्वारा की जाती है, उनके द्वारा नामित एक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया जाता है जो शिकायत का निवारण करता है। अस्पतालों को भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना कोष के माध्यम से किया जाता है। यदि दोषी वाहन बीमित है तो राशि का वहन सामान्य बीमा कंपनियों के द्वारा किया जाता है, और यदि वाहन बीमित नहीं है और हिट एंड रन मामलों में यह व्यय भारत सरकार के बजटीय प्रावधान के माध्यम से पूरा किया जाता है। श्रोताओं, ये थी जानकारी पीएम राहत योजना के विषय में। अगले अंक में आपको फिर से किसी नई विषय पर जानकारी प्रदान करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
4: आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से भी आप सुन रहे थे सूचनात्मक कार्यक्रम झलोखा। 40 मिनट हुए, आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम बाजी मांदर।

0: ये सुन रहे थे संतोष शुक्ला का गाया ये लोकगीत।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
1: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

जय नारायण किशोर और साथियों के कई इस गीत के साथ ही कार्यक्रम बाजी मंदिर अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर 55 मिनट हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से विविध भारती कार्यक्रम का प्रसारण हम करेंगे। आज सुबह 9 बजे 25 मिनट पर, दिन के 11 बजे, दिन के 12 बजे और रात्रि 9 बजे। पॉडकास्ट श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ का चौथा भाग हम प्रसारित करेंगे सुबह 9:10 पर। रात्रि 9:25 पर हम प्रसारित करेंगे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर युवा शक्ति थीम पर विशेष कार्यक्रम। प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आज सुबह 8:30 पर। आप सुनेंगे सुगम संगीत। 10:30 पर हम लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आज संध्या 5:10 पर आने लीजिएगा पॉप गीतों का कार्यक्रम होगा पॉप टाइम। वैसे आज आप सुनेंगे संध्या 6:20 पर, संध्या 7 बजे और रात्रि 8:30 पर। रात्रि समय होगा गैर फिल्मी गीतों के प्रसारण का। रात्रि 10 बजे और आज रात्रि 10:30 पर हम लेकर आएंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यमिनी। वोट का प्रसारण होगा संध्या 5 बजे। संध्या 5:30 पर हम लेकर आएंगे महिलाओं का कार्यक्रम वनिता विहार। आपस की बात का विषय होगा नारी की समझदारी, सुरक्षित भोजन की जिम्मेदारी। ये चर्चा होगी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के संदर्भ में। इसके साथ होगी चर्चा घरेलू हिंसा के प्रति आवाज उठाएं, न घबराएं न संकोच करें। किसान भाई अपना कार्यक्रम किसान वाणी सुनेंगे। आज की बात का विषय होगा

0: 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अकलमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
3: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने को है, कुछ ही पलों में समाचार होंगे।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य

0: ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूप से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा, क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
3: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
4: With Nepal, we have an expansive agenda.
5: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
4: Partnership that we have with Nepal.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
7: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
6: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के NCC आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.nct।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपने अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
8: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
9: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इजरायल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इजरायल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीना।
0: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोईकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
10: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है,
5: संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देश बंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमेरिका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
11: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. More than 9.42 lakh farmers to join Khet Bachao Abhiyan for balanced fertilizer use and sustainable farming. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy rainfall in northern districts of Kerala until June 9th. And Indian Grandmaster R. Pragyanan scripts history becomes first Indian to win Norway chess title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental projects worth around 2,970 crore rupees in Daman last evening, the Prime Minister noted that India continues to be among the fastest growing economies in the world. He assured the citizens that the country will forge ahead with its reform express while prioritizing massive infrastructure development and welfare schemes for the poor.
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
12: Earlier, Mr. Modi launched various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat. Addressing the gathering, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial fifth of the nation's green energy share. He added that the state is poised to play a massive role in shifting from solar energy to green hydrogen and green ammonia, which is essential for achieving energy self-reliance.
1: दुनिया अब हरित युग की तरफ ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है और इसमें भी गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट बनाया था और गुजरात के चारणका गांव में भारत का पहला सोलर पार्क भी बनाया
12: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city. He lauded Surat's circular water economy model and the Waste to Wealth initiative, which has turned into a mass movement over the last 12 years. The Reserve Bank of India has simplified the rules governing investments by foreign portfolio investors or FPIs in government securities. The revised framework is aimed at making investments easier and reducing compliance requirements for foreign investors. More from our Mumbai correspondent.
2: Under the revised framework, FPIs investing through the general route will get greater flexibility as certain investment restrictions have been removed. The RBI has also merged the existing general and long-term investment categories into a single limit for government securities and state government securities. For financial year 26-27, the investment limit for central government securities has been fixed at 4,62,490 crore for the first half of the year and 4,77,006 crore for the second half. For state government securities, the corresponding limits have been set at 1,53,043 crore and 1,64,242 crore respectively. The revised directions have come into effect immediately. Ankita Apte, Akashvani News, Mumbai.
12: India's economy has maintained a strong momentum in 2025-26 with real gross domestic product or GDP estimated to grow by 7.7% in comparison to 7.1% in 2024-25. The Ministry of Statistics and Programme Implementation yesterday released the provisional estimates of annual GDP for the financial year 2025-26 and quarterly estimates of January to March this year. It said the primary sector has observed 3.2% growth rate, mainly driven by the performance of agriculture and fishery sectors. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare said that more than 9.42 lakh farmers across the country have joined the Khet Bachao Abhiyan as of June, transforming the campaign for balanced fertilizer use into a nationwide mass movement. The campaign, launched by the Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, aims to promote balanced fertilizer application, conserve soil fertility and encourage sustainable farming practices. A report.
13: The Agriculture Ministry informed that over 17,800 awareness programs have been organized so far under the campaign, reaching nearly 6.98 lakh farmers. In addition, around 3,700 training programs have been conducted, providing information on balanced fertilizer use, soil health management, and scientific farming techniques to more than 1.57 lakh participants. The ministry said that over 8,850 field demonstrations have also been organized to provide practical exposure to farmers on the use of organic and alternative nutrient sources, as well as integrated nutrient management techniques. These demonstrations are aimed at improving long-term soil productivity and reducing excessive dependence on chemical fertilizers. With Akshit and Rohan's report, Jigyasa Pandey for Akashwani News, Delhi.
12: Central Board of Secondary Education or CBSE has extended the last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till 7th of June. In a social media post, the board said students can now submit their applications till Sunday midnight. CBSE said that the decision has been taken in the interest of students to provide them with additional time to complete the application process. The earlier deadline for submission of applications was this month. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India has said that Pakistan is abusing its temporary membership of the UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir, and it should be mindful of its responsibilities. India's permanent representative P. Harish said that empty rhetoric and hollow claims by Pakistan would not change this fundamental reality that Jammu and Kashmir was, is and will always remain an integral and inalienable part of India.
14: I'd like to remind Pakistan that being a member of the UN Security Council is a huge responsibility. It's not a forum for peddling biased and false narratives. I'd like to make it loud and clear. Jammu and Kashmir was, is and will always remain an integral and inalienable part of India. Any assertions to the contrary are baseless, devoid of and inconsistent with historical facts. Empty rhetoric and hollow claims by Pakistan would not change this fundamental reality. In the interest of time with the wider UN membership, I would not delve any further into this.
12: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal in New Delhi today. The Foreign Affairs Minister of Nepal has said that during the meeting, both sides will discuss matters of mutual interest with a view to enhancing cooperation across key areas, including trade, investment, connectivity, energy and people-to-people ties. Mr. Khanal is currently on a three-day visit to India. During the weekly press briefing, spokesperson for the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said the visit will help further strengthen the special partnership between India and Nepal.
4: With Nepal, we have an expansive agenda from development cooperation to people-to-people ties to trade and investment. So all these ties together will be discussed when the two foreign ministers meet. But on our side, we are keen to further strengthen this multifaceted partnership that we have with Nepal.
12: Russia's President Vladimir Putin has turned down an offer for in-person talks with his Ukrainian counterpart Volodymyr Zelensky, saying he sees no point in such a meeting for now. Putin delivered the remarks during Russia's flagship economic forum in St. Petersburg yesterday, a day after Zelensky shared an open letter appealing for a face-to-face meeting in which the two leaders could hash out an end to the war. Zelensky responded later, saying Putin's rejection of his proposal showed that the Kremlin had no wish to end the war. U.S. forces have struck Iranian coastal surveillance radar installations near the Strait of Hormuz after shooting down four Iranian drones which targeted regional maritime traffic. The incident marks the latest flashpoint in a three-month-old conflict, further straining already deadlocked peace negotiations between Washington and Tehran. More from our correspondent from Dubai.
15: The strike came as diplomatic efforts between Washington and Tehran remained stalled, with a major sticking point of being Iran's demand for the release of $24 billion in frozen assets held overseas. Iranian officials have reportedly linked progress on any interim agreement to the unfreezing of funds, while the United States is reluctant to give up what it sees as a key source of leverage in these negotiations. Meanwhile, in Lebanon, Hezbollah has rejected a U.S.-dropped ceasefire proposal accepted by Israel and the Lebanese government, insisting that any agreement include a full Israeli withdrawal from southern Lebanon. The group has also released drone footage showing attacks on Israeli forces near the Beaufort Castle, a strategic hilltop fortress captured by Israeli forces during their recent offensive. Iran has reiterated its support for Hezbollah and maintains that Israeli pullout from Lebanon is essential for any broader regional settlement. Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
12: In Keralam, red alert indicating extremely high rainfall is declared in five districts till 9th of June. More from our correspondent.
16: Red alert indicating extremely heavy rainfall has been declared in the districts of Malappuram, Kozhikode, Wayanad, Kannur and Kasargod in Keralam. Six districts are under orange alert indicating isolated very heavy rainfall, while the remaining three districts are under yellow alert indicating isolated heavy rainfall. Intensive rainfall is expected over the next 3 days in Keralam. Places including Kannur, Kozhikode, Kochi and Alappuzha have recorded more than 15 mm of rainfall since 7 a.m. today. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
12: Meanwhile, the weather agency predicted thunderstorm accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Uttarakhand, East Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Jharkhand and Jammu and Kashmir today. Meanwhile, thunderstorm conditions are expected over Bihar, Chhattisgarh, Odisha and Rajasthan today. Furthermore, IMD forecast heat wave conditions over coastal Andhra Pradesh for the day. On to sports. In chess, Grandmaster R. Pragyanand has created history by becoming the first Indian to win the Norway chess title in Oslo with a final round victory over Germany's Vincent Kaimer. Pragyanand, who began the day in third place, secured a crucial classical win worth 3 points to finish with 18 points and seal the title. The 20-year-old from Chennai achieved a feat that had eluded Indian chess legend Vishwanath Anand and reigning world champion D. Kukesh since the tournament began in 2013. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
17: Thank you, Shagun. Almost all the dailies quote the Prime Minister's statement regarding strong economic growth, with the Indian Express's headline being financial year 26 growth estimate raised to 7.7%. Momentum strong. The paper also adds to draw funds, prop rupee, government scraps, FII, capital gains, withholding tax on bonds. While the Financial Express reports economy sprints to 7.8% growth in fourth quarter for 2026. The first tranche of India-US interim trade deal likely by mid-July, says Piyush Goyal, reports the Hindu Business Line. The Pioneer informs Shah vows zero tolerance on demographic shifts as he addressed BSF personnel at Lankamura border outpost. CBSE drops GoEMS portal for re-evaluation with student and examination data migrated to infrastructure under the board's direct control, cites Hindustan Times. The Asian Age headlines, Putin says Russia ready to jointly build Su-57 stealth jet with India, suggests strong strategic partnership between the two countries. And finally, wind from Milky Way's black hole called Sagittarius A has been discovered after 5 decades of trying. Its wind is like a gentle breeze, not a hurricane. The wind has carved out a huge conical cavity in space, informs the Asian Age. And with that, it's back to you, Shagun.
12: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy rainfall in northern districts of Kerala until June 9th. And Indian Grandmaster R. Pragyanan scripts history, becomes first Indian to win Norway chess title. And with that, we end the morning news. Have a nice day.

0: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। सुबह के 8:30 हुए हैं। आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से हम प्रसारित करेंगे कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह।
1: रोग, मिर्गी, कारण, लक्षण एवं उपचार, इस विषय पर डॉक्टर उमेश कुमार चंद्रा से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता है रमा शंकर।

0: श्रोताओं नमस्कार। डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, जब हम अपने शरीर के अंगों की बात करते हैं तो हमारा जो सिर होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। इसमें लगने वाले आघात, चोट से कभी कभी हमें काफी तकलीफ होती है और सभी लोगों को सलाह दी जाती है कि अपने सिर पे लगने वाले चोटों से हमेशा सावधान रहें। और श्रोताओं, कुछ बीमारियों का कभी सामना करना पड़ता है जिनका संबंध सीधे मस्तिष्क या हमारे सिर से होता है, और कुछ बीमारियां बाहरी तौर पे होती हैं, कुछ अंदरूनी तौर पे। तो मस्तिष्क से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनके क्या कारण हो सकते हैं, उनके लक्षण क्या है और उनके क्या उपचार हो सकते हैं, इस बारे में जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर उमेश कुमार चंद्रा जी को, जो एक मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर उमेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी धन्यवाद। मैं डॉक्टर उमेश कुमार चंद्रा, मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ, रायपुर।
0: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो कार्यक्रम में हम ये जानना चाहेंगे कि जब हम अपने मस्तिष्क की बात करते हैं तो इनमें कौन कौन से बीमारी जो है प्रमुख तौर पर देखी जा सकती है।
1: जहाँ तक मस्तिष्क की बात है, बहुत ही वृहद संरचना होती है शरीर की, बहुत बड़ा अंग होता है मस्तिष्क, लेके पूरा स्पाइन तक, साथ में हाथ और पैरों में फैले हुए नसों तक का पूरी बीमारी मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ के अंदर कवर होती है। मस्तिष्क रोग में मुख्य रूप से सबसे कॉमन सामान्य रूप से जो समाज में फैली है बीमारी, उसमें से एक है लकवा या स्ट्रोक। दूसरा प्रमुख बीमारी इसके अंदर आता है वो है फिट्स या एपिलेप्सी, या जिसको दूसरी भाषा में मिर्गी बोला जाता है। तीसरा प्रमुख कारण है सिर दर्द या मस्तिष्क

0: के अंदर दर्द, इसके अंदर बहुत कॉमनली है माइग्रेन हेडेक है। मुख्य बीमारी के रूप में बोलूं तो हाथ पैर में सुन्नता या झुंझुनी, सर्वाइकल या गले में दर्द, और उसके बाद अगला है कमर दर्द। ये प्रमुख मुख्य रूप से समस्याएं हैं जो मस्तिष्क रोग के अंदर आती हैं, और बहुत सारे टाइप से होते हैं समस्याएं, लेकिन ये जो 5-6 हैं ये मुख्य रूप से समाज में बृहद रूप से फैला हुआ है।
1: जी जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब एक बहुत ही वृहद रूप में पाया जाने वाला मस्तिष्क से संबंधित रोग है मिर्गी।
0: जी,
1: तो इसके बारे में बताइए कि मिर्गी के दौरे क्या होते हैं।
0: मिर्गी समाज में मतलब प्रमुख रूप से फैला हुआ बीमारी है। ऑलमोस्ट हम बोला जाए कि 600-700 लोगों में एक किसी को मिर्गी एपिलेप्सी की समस्या हो सकती है। यह बहुत ही कॉमन है, खासकर हमारे इंडिया और छत्तीसगढ़ बेल्ट में बहुत ही कॉमन है। मतलब ये मिर्गी ऐसा समस्या है कि हर गांव जाओ तो कम से कम आपको 8-10 मरीज मिल ही जाएंगे। और इसमें मुख्य रूप से ये होता है, जैसे अचानक से हाथ पैर में अकड़न आना, हाथ पैर का मुड़ जाना, चेहरे का ऊपर की ओर जाना, आंखें ऊपर चले जाना, मुंह को चबा देना और मुंह से झाग आना। ये सब स्थिति होने के बाद मरीज को कुछ टाइम के लिए बेहोशी आता है, और बेहोश होने के बाद मरीज गिर जाता है।
1: जी,
0: ये स्थिति लगभग 1-4 मिनट 5 मिनट तक ही बनी रह सकती है। ये समाज में जो फैला मुख्य रूप से जो अपन देख पाते हैं ये वो समस्याएं हैं। इसके और दूसरी समस्याएं भी होती हैं जो मिर्गी का ही रूप है, लेकिन इतना वृहद रूप से शरीर में सिम्टम नहीं दिखाता। उनमें एक है कि अचानक से कुछ क्षण के लिए कोई एक हाथ पैर कमजोर हो जाना, या फिर उस हाथ या पैर में कुछ टाइम के लिए एबनॉर्मल मूवमेंट्स होना, अपने आप हिलना। और तीसरा एक टाइप होता है जिसमें कि कुछ टाइम के लिए अपन अपने रिश्तेदार या फिर दोस्त यार किसी को पहचान नहीं पाते। ये कुछ होता है ओनली 10-15 सेकंड्स के लिए। अचानक से हम जिस इन्वायरमेंट में हैं, जिस माहौल में हैं, उससे अपन कट ऑफ हो जाते हैं।
1: जी,
0: ये कुछ कॉमन समस्याएं हैं इपिलेप्सी, जो इपिलेप्सी के अंदर आती हैं, इपिलेप्सी के प्रकार हैं।
1: जी। तो डॉक्टर साहब, जब हम मिर्गी की बात करते हैं तो इसके क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं?
0: मिर्गी के लगभग बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इनमें से एक तो है, जैसे किसी मरीज को लकवा हो गया, लकवा होने के बाद ब्रेन रिकवर कर रहा है तो सीजर आ सकता है या फिर मिर्गी आ सकता है। दूसरा, एक्सीडेंट के बाद में जो चोट लगती है सिर में, उसके बाद वो स्कार बनता है, वहां से मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। और जैसे ब्रेन में टीबी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, ये एक प्रमुख कारण है उसका भी। कुछ कंडीशन में जेनेटिक्स में होता है, जेनेटिकल कंडीशन है, फैमिली में चलती आती रहती है। ये बच्चों में ज़्यादातर होता है, और वयस्क लोगों में खासकर एक्वायर्ड या फिर जो हम बाद में प्राप्त करते हैं वो कॉमन कारण होता है। जैसे मैंने बताया, इस लकवा हो गया, कोई चोट लग गया। और आजकल प्रमुख रूप से देखा जा रहा है, जैसे यंगस्टर्स में देखते हैं खासकर, कि नशे का प्रचलन बढ़ रहा है।
1: जी।
0: अल्कोहल कंजप्शन बढ़ रहा है, सिगरेट स्मोकिंग बढ़ रहा है, इन सबसे भी मिर्गी के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे जो मरीज या फिर जो इंसान एल्कोहल के प्रति डिपेंडेंट हो गया है, उसको लंबे टाइम तक एल्कोहल का सेवन कर रहा है, लंबे टाइम तक स्मोकिंग या फिर टोबैको का सेवन कर रहा है, तो बॉडी उसके अभ्यस्त हो गया, हमारा शरीर उसके अभ्यस्त हो चुका है। जब हम अचानक से कुछ दिन के लिए अधिक मात्रा में लिए, फिर अचानक से एक दिन कम कर दिए, तो ये एकदम से दौरा आने का कारण बन सकता है। तो खासकर यंगस्टर्स में जो अधिकतम टाइम जो कंजप्शन कर रहे हैं अल्कोहल का, निकोटीन स्मोकिंग कर रहे हैं, उनमें मिर्गी आने के चांसेस और ज़्यादा हो जाती हैं।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, ये जो मिर्गी के दौरे होते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि बिना किसी चोट के भी, जैसे कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं हो, उन छोटी उम्र के बच्चों को भी देखने को मिलती है, तो इसका कारण क्या हो सकता है?
0: जनरली ऐसे में ब्रेन के अंदर ही अंदरूनी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। कई बार जो बच्चा पैदा होता है उसके उस टाइम जब पैदा हुआ तब ऑक्सीजन की कमी हो गई, ग्लूकोज कम हो गया, या फिर ब्रेन का इन्फेक्शन हो गया, तो या फिर बच्चों में कॉमनली देखा जाता है कि बुखार आया, तेज बुखार आया, 103-104 डिग्री फीवर आया है, उसके बाद में उसको झटका आ गया
1: जी, जी.
0: तो बच्चों में ये बहुत कॉमन रहता है और उसको बोलते हैं अपन फेब्राइल सीजर
1: जी.
0: तो बच्चों में बिना कुछ स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी के भी सीजर या दौरे आ सकते हैं. कुछ कारण रहते हैं जो जन्मजात ब्रेन में बनावट के कारण भी नॉर्मल बनावट है या फिर थोड़ा डिफेक्ट है तो उस कारण से भी वो सीजर का एक कारण बन सकता है
1: जी.
0: लेकिन मुख्य रूप से बच्चों में या फिर मिडिल एज के लोगों में इसका कारण अधिकांश समय पता नहीं चल पाता
1: जी.
0: लेकिन फिर भी हमको उसको आगे इन्वेस्टिगेशन करना है, आगे जाँच करना है, इसके लिए हम उनको प्रमोट करते हैं
1: जी. डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी थी ये, और समाज में मिर्गी के लिए कई कई तरह की बातें होती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे. उससे पहले हम चाहेंगे कि आपकी पसंद का एक गीत हम इस कार्यक्रम में सुने.
0: जैसे मेरे फेवरेट सॉन्ग तो आशा ताई द्वारा गाया हुआ गाना है, उनमें से एक मुझे बहुत ही पसंद आता है, वो है इन आंखों की मस्ती.
1: तो बहुत अच्छा गीत है. तो श्रोताओं कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की पसंद का ये गीत.

0: श्रोताओं, डॉक्टर सलाहकार के में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर उमेश कुमार चंद्रा जी से, जो एक मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ हैं, और बात कर रहे थे मस्तिष्क संबंधी कुछ विकारों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि हम इस गीत के पहले बात कर रहे थे, मस्तिष्क में होने वाली एक जो बीमारी है मिर्गी, जिसे एपिलेप्सी कहते हैं, उसके कारण उनके लक्षण क्या होते हैं? तो डॉक्टर साहब, जब हम देखते हैं किसी व्यक्ति को मिर्गी होता है, तो समाज में इसके क्या क्या तथ्य हो सकते हैं?
1: मुख्य रूप से जो जादू टोना वाला पहले ही भ्रांतियां फैली हुई हैं, उनके अंदर भी ये अभी भी आता है। अधिकांश लोग को लगता है कि ये कोई बीमारी ना हो के कोई जादू टोना का प्रभाव है क्या, ऐसा लगता है। और लोग ऐसा मिर्गी के दौरा आते हुए भी उनको बीमारी को अनदेखा करते हैं, मरीज के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। कहीं पर देखा जाता है कि उनको अननेसेसरी टॉर्चर या फिर झाड़ फूंक के लिए ले जाया जाता है, जहां पे उनको फिजिकली टॉर्चर भी किया जाता है। और मुख्य रूप से ये देखा जाता है कि जैसे मरीज को किसी और के सामने दौरा आ गया, तो उनका जो प्रचलित तरीका है इलाज करने का या प्रचलित तरीका है कंट्रोल करने का, उसके अंदर वो लोग उसको लाइक चम्मच है, सॉलिड चीजें उसको मुंह में डाल देते हैं, जिस कारण मरीज को फिजिकल ट्रॉमा या फिर उसके दांतों को चोट लगना, जीभ पे चोट लगना बहुत कॉमन हो जाता है। और एक और होता है इसमें, जब मिर्गी से जो आदमी प्रभावित है उसका जब शादी की उम्र आता है, तो सबसे ज्यादा उसको यहाँ पे चीजों को झेलना पड़ता है या फिर सामना करना पड़ता है बोलूंगा। जैसे शादी के टाइम आया, शादी में उसको सामने वाले को उसने बीमारी के बारे में बताया, तो सब लोग को ये लगता है कि लाइलाज बीमारी है और ये पता नहीं कब से प्रभावित है, ठीक होगा कि नहीं होगा, आगे जीवन में क्या और प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये सबको देखते हुए उसके लिए बहुत सारा चीजों का सामना करना पड़ता है। ऐसे मरीज जो मिर्गी से प्रभावित हैं उनको, तो ऐसे जो मरीज मिर्गी से प्रभावित हैं उनको, वो हमारी तरह नॉर्मल आदमी है, कुछ टाइम के लिए उनके ब्रेन में करंट पैदा हो रहा है और वो उसको दौरे आ रहे हैं, कोई लंबी बीमारी है नहीं उसके लिए, कुछ फ्यू मिनट्स या सेकेंड्स के लिए आएगा, वो ठीक हो जाएगा ऐसा। तो उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये एक टाइप से भ्रांति है जो प्रमुख रूप से समाज में है।
0: यदि कोई व्यक्ति एपिलेप्सी या मिर्गी की बीमारी से पीड़ित है, तो हमें किन चीजों से उन्हें दूर रखना चाहिए?
1: जैसे अपन देखते हैं कोई मरीज एक रास्ते में चल रहा है, अपना दैनिक कार्य कर रहा है, उस दौरान उसको कभी भी सीजर आ सकते हैं, उसमें कोई दो मत की बात नहीं है। तो मेरा पहला दायित्व तो बनता है उसको प्लेन जगह पे, सुरक्षित जगह पे, जहाँ पे कोई धारदार चीज ना हो, कोई उबड़ खाबड़ जगह ना हो, वहां पे तुरंत स्विच करना। वहां पे ले जाते ही मुझे उनको एक तरफ करवट लेके लेटाना रहता है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, ताकि जो मुंह में लार बन रहा है या फिर जो अधिकतम सिक्रीशन आ रहा है मुंह में, वो फेफड़े में ना जाए, तो उससे उसका सांस लेने का तरीका ठीक हो जाएगा। एस्पिरेशन, जो अपन लार बनता है वो फेफड़े में जाने की संभावनाएं रहती हैं वो कम हो जाती हैं, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने का चांस रहता है वो भी बहुत हद तक कम हो जाता है। और जो भी दौरे आते हैं वो लगभग लगभग 80-90% केसेस में कुछ आधा मिनट एक मिनट के अंदर ही शांत हो जाते हैं अपने आप। तो हमको ऐसे मरीजों को बाहर के तौर पे, कि उसको बाहर कोई नुकीली चीज से चोट ना लगे, उसके लिए उनको सेफ जगह पे ले जाना रहता है। जैसे कोई पानी वाली जगह पे आ गया किसी को, तो मेरा पहला दायित्व है कि उसको तुरंत मैं पानी की जगह से थोड़ा दूर ले जाऊं, जहां पे प्लेन जगह हो, जहां पे चोट लगने की संभावनाएं कम हो। आग वाली जगह पे आ गया तो वहां से थोड़ा दूर ले जाऊं, बिकॉज ऐसे मरीज कुछ टाइम के लिए अपना पूरी तरह कंट्रोल खो देते हैं, उनका खुद के बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता, तो उनको पहले अपने सेफ जगह पे शिफ्ट करें।
0: तो डॉक्टर साहब, इसमें जो एक सबसे जरूरी बात होती है कि जब कोई रोग होता है तो उसके कुछ ट्रिगर्स होते हैं जो उसे बढ़ा सकते हैं, तो क्या मिर्गी के भी ऐसे कुछ ट्रिगर्स हैं?
1: जी,
0: ऐसे
1: जी।
0: कारक होते हैं जिनसे इस रोग के बढ़ने की संभावना होती है?
1: मिर्गी के रोग में ट्रिगरिंग फैक्टर बहुत ज्यादा है, और सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि हम उनको थोड़ा सावधानी बरत के अवॉइड कर सकते हैं। इनमें मुख्य कारण रहता है, डॉक्टर द्वारा जो दवाई एडवाइस किया गया है उसको आप फिक्स टाइम पे लीजिए, जिस डोज में बोला गया है उस डोज में लीजिए, फिक्स टाइम पे लीजिए। उससे क्या है, बॉडी में दवाई का लेवल बना रहता है, तो आगे मिर्गी आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। और दूसरा चीज ये कि एक ट्रिगरिंग फैक्टर रहता है नींद का कम होना, जो नॉर्मल एडवाइस किया गया नींद है कि अपन रात को टाइम से सोएं और टाइम से उठें, उसमें लगभग 7-8 घंटे का प्रॉपर निद्रा का टाइम रहता है, रात में साउंड स्लीप बोलते हैं। तो अपन 7-8 घंटा प्रॉपर स्लीप लें, दिन में 1 घंटा नैप ले सकते हैं, ये कॉमन हो गया। उसके बाद जनरली अपन जो मिर्गी के पेशेंट हैं उनको सलाह देते हैं कि फास्टिंग अवॉइड करें, खाली पेट ज़्यादा टाइम तक ना रहें, उससे भी मिर्गी ट्रिगर हो सकता है। और तीसरा, अपने पहले ही बात करी, अल्कोहल या फिर स्मोकिंग से भी इसका ट्रिगर होता है
0: जी डॉक्टर साहब।
1: किसी भी तरह से स्ट्रेस लेते हैं उससे भी अपना ट्रिगर हो सकता है, तो स्ट्रेसफुल कंडीशंस को अवॉइड करना बेहतर रहता है।
0: जी जी। तो डॉक्टर साहब, अगर हम इसके इलाज की बात करें
1: जी,
0: तो इसके क्या इलाज हो सकते हैं और कितने कारगर होते हैं?
1: मिर्गी अभी के समय में लगभग पूर्ण रूप से मिर्गी को ठीक कर सकते हैं। हमें बेसिक अपने को चाहिए तो मरीज को दवाई के प्रति एडहेरेंट रहना पड़ेगा, प्रॉपर दवाई को टाइम से लेना पड़ेगा। और इसमें मेन इलाज के तौर पे होता है, प्रारंभिक तौर पे होता है मस्तिष्क का इमेजिंग होता है, सीटी स्कैन या फिर एमआरआई करा कर अपन देख सकते हैं पहले कि ब्रेन में कोई घाव तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कुछ और कारण तो नहीं बन रहा जिस कारण से ये दौरे का एक कारण बना हुआ है। एक ईजी नाम की जाँच होती है जिसमें अपन मस्तिष्क की तरंगों का जाँच करते हैं कि कहाँ से दौरा आ रहा है, कहाँ से ये करेंट की एक्टिविटी हो रही है, तो ये प्रारंभिक जाँच होता है। और बाकी अदर कारण में शुगर हो गया, रूटीन ब्लड टेस्ट हो गया, इनका टेस्ट कर सकते हैं। ये सब आजकल लगभग सभी जगह पे अवेलेबल है। और दूसरी बात है कि अपन इसमें इलाज की बात करते हैं, तो आजकल लगभग मिर्गी पूरी तरह ठीक किया जा सकता है अभी कंडीशन में। तो इतनी सारी दवाइयां अवेलेबल है मार्केट में, लगभग 50-60 तरीके की दवाइयां हैं, पुराने जमाने से लेकर नए जमाने तक की पूरी दवाइयां उपलब्ध हैं। और अभी की दवाइयां बहुत ही पोटेंट हैं मिर्गी को ठीक करने के लिए। अपन टाइम से लें उन दवाइयों को और डॉक्टर की सलाह माने तो मिर्गी से पूर्णतः बचा जा सकता है।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। तो डॉक्टर साहब, हम आप ये जानना चाहेंगे कि कोई महिला गर्भवती है और उस समय उस महिला को जो है एपिलेप्सी और मिर्गी की संभावना या बीमारी पहले से है, तो उन्हें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और इसका क्या कोई इफेक्ट बच्चे पर भी पड़ सकता है क्या?
1: जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है अभी के समय में। जैसा मैंने पहले बताया, एपिलेप्सी जनरली यंगस्टर्स को ज़्यादा इफेक्ट करती है, स्टार्टिंग लगभग इसी उम्र में होता है। तो इसका जाहिर सी बात है, जब शादी की उम्र में लड़कियां आती हैं तो उनको उसके शादी के पहले भी काउंसलिंग की जाती है, शादी के बाद भी। जैसे उनको मिर्गी के लक्षण हैं, दवाई चल रहा है, तो मैं क्या करूं क्या ना करूं? तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि यदि आपको पहले से ही मिर्गी या फिट्स की समस्या है, आप दवाई ले रहे हैं, तो डॉक्टर आपके उस कंडीशन को जानते हैं। आप यंग हो, शादी होने वाला है, या फिर आप मैरिड हो तो प्रेगनेंसी हो सकता है, तो उसके लिए आपको दवाई उस तरह ही चुनी जाती है पहले से ही, जो कि आपके हेल्थ को और आने वाले बच्चे के हेल्थ को अभी प्रभावित ना करे या फिर कम प्रभावित करे। तो अभी जो मॉडर्न मेडिसिन में जो दवाइयां हैं एपिलेप्सी या फिट की, वो काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं और होने वाले बच्चे के लिए ऑलमोस्ट सुटेबल कंडीशन में होती हैं दवाइयाँ। तो आपको घबराने की बात नहीं रहती, बस आपको इतना मानना है कि डॉक्टर ने जो आपको जिस डोज में एडवाइस किया है दवाइयाँ, उस डोज में प्रॉपर तरीके से लेना है और दवाइयों के प्रति लापरवाही नहीं बरतना है। और यदि इसका प्रभाव ऐसा हो सकता है कि आप कोई प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट होने वाली हैं और अचानक से दवाई बंद कर देते हैं, उस दौरान झटका आता है, तो एबॉर्शन का रिस्क ज़्यादा हो जाता है और मदर और बच्चे दोनों को खतरा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि अभी की दवाइयां जो मॉडर्न मेडिसिन में झटके की दवाइयां हैं, वो काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं और होने वाले बच्चे को और उनकी मदर को कोई प्रभाव नहीं डालती। तो आपके चिकित्सक जो हैं ऐसे दवाइयों को ही सजेस्ट करेंगे आपको, जो कि आपके हेल्थ और बच्चे के हेल्थ को प्रभावित ना करें। इसलिए दवाइयाँ पूर्ण तरह सुरक्षित हैं, तो टाइम से जैसे आपके डॉक्टर ने सलाह दिया है वैसे लेंगे तो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा।
0: जी जी जी जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जब एपिलेप्सी या मिर्गी की बात होती है तो इसमें दवाइयाँ जो लिखी जाती हैं, तो क्या जो पेशेंट है वो दवाइयों को रेगुलर खाए और दवाइयों को इस्तेमाल करे तो क्या वो पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता है?
1: बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जनरली हमारे पास जो भी मरीज आते हैं मिर्गी के, उनका एक सवाल ये रहता है कि मुझे दवाई कब तक चलेगी या फिर मैं दवाई कब तक खाना पड़ेगा। तो ये कंडीशन निर्भर करता है ब्रेन के कोई बनावटी स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, ब्रेन में कोई पुरातन घाव तो नहीं है। जनरली जिन मरीजों को अपन इमेजिंग या सीटी एमआरआई में कुछ बड़ा घाव नहीं दिखता है या फिर कुछ ग्रॉस एबनॉर्मलिटीज नहीं है, उनमें 2 से 3 दवाइयाँ चलती हैं और ये लगभग 3 से 5 साल में ऐसे मरीज जनरली ठीक हो जाते हैं। हमको बस एक काम करना है, जो प्रॉपर डोजिंग एडवाइस की गई है उसको टाइम से लेना है और जो स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, जो ट्रिगर हैं, उनको अवॉइड करना है। और कुछ ही केसेस रहते हैं जिनमें ग्रॉस स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी है ब्रेन में या फिर पुराना चोट है, स्कार है, 2-3-4 दवाइयों के बाद भी झटका कंट्रोल नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे ही मरीज होते हैं जिनकी जो फिट या झटका आने की संभावना है उसको कंट्रोल करने में दिक्कत होती है, लेकिन ऐसे मरीज भी दवाइयों के साथ, जैसे मैंने बताया, दवाइयाँ पूरी तरह सुरक्षित हैं आज के समय की और आगे हमारे हेल्थ पे साइड इफेक्ट या फिर उनका बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं रहता है, तो हम इन दवाइयों को लंबे टाइम तक ले सकते हैं, दवाई पूरी तरह सुरक्षित है। तो दवाई के डोज या फिर दवाई की जो नंबर ऑफ टेबलेट्स हैं, कितना टेबलेट चल रहा है, दिन में कितनी बार खा रहे हैं, ये हम डिसाइड ना करें कि दिन में 4-5 दवाई चल रही है, इतना हेवी डोज में हो रहा है, तो डोजिंग डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो जानते हैं आपके हेल्थ के बारे में, आपके लिए कितनी दवाइयाँ कितनी मात्रा में सेफ हैं, तो हम उसका कैलकुलेशन ना करें कि दवाई हमारे लिए ज़्यादा हो रहा है।
0: जी।
1: तो ऐसे मरीज कुछ मान चलो 10-15% केसेस होते हैं जो रिफ्रैक्टरी सीजर्स के पेशेंट रहते हैं, लेकिन जो बोलूंगा 70-80% केसेस हैं ऐसे, एक या दो दवाई से कंट्रोल हो जाता है और उनमें अधिकांश केसेस जो हैं वो 5 साल के अंदर में उनको ठीक किया जा सकता है।
0: तो बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ये, और जिन भी लोगों को इस तरह की समस्याएं हैं एपिलेप्सी से संबंधित, वो डॉक्टर साहब की बताई बातों पे जरूर गौर करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। तो डॉक्टर साहब, जब हम एपिलेप्सी के पेशेंट की बात करते हैं तो उन्हें अधिकतर हिदायत दी जाती है कि उन्हें गाड़ी चलाना जो है, कभी कभी लोग मना कर देते हैं कि आप गाड़ी ना चलाएं, आपका जहाँ पे कार्य होता है वहां ना जाए, पानी जहाँ पे होता है वहां ना जाए।
1: हाँ, जैसे मरीज जो इस शुरुआती अवस्था में है जिनका दौरा कंट्रोल नहीं है और जिनको फ्रीक्वेंट सीजर आ रहे हैं, हम ऐसे मरीजों को जनरली एडवाइस करते हैं ताकि गाड़ी ना चलाएं। दूसरा चीज है, कोई तैराकी जगह है, तालाब है, स्विमिंग पूल है, ऐसे जगह पे ना जाएं और आग वाली जगह, ऊंचाई वाली जगह से बचें। ऐसा हम सलाह इसलिए देते हैं ताकि ये मरीज दौरे के दौरान अपने होश कुछ टाइम के लिए खो देते हैं। पानी के अंदर यदि दौरे आते हैं उनको, आग के आसपास दौरे आते हैं, तो जनरली उनको खतरा ऐसे ही बढ़ जाता है। पानी के अंदर दौरे आ गए तो सांस की दिक्कत, अचानक समूह में पानी जाने, सब समस्याएं आ जाती हैं। आग के पास आ गया तो जलने का खतरा रहेगा, हाइट से गिरने का डर रहेगा, ये सब है। और जनरली जब तक दौरा कंट्रोल नहीं है तो अपन इनको गाड़ी चलाने की सलाह, स्विमिंग की सलाह ऐसे नहीं देते हैं। सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, जहाँ एक ड्राइवर है जो बहुत सारे लोग को एक साथ ले जा रहा है, बस का ड्राइवर हो गया, कार ड्राइवर हो गया, ट्रेन ड्राइवर, तो ऐसे लोगों में ज़्यादा रिस्क रहता है, तो उसको डेफिनेटली अवॉइड करते हैं। लेकिन जैसे 2-व्हीलर चलाना है, सिंगल ड्राइविंग है, तो दौरा जो है 2 से 3 साल तक पूरी तरह कंट्रोल है, दवाई पे आप पूरी तरह विश्वास करते हैं, दवाई पूरी तरह ले रहे हैं, आप दवाई लेने के बाद दौरे नहीं आ रहे हैं 2 से 3 साल तक, तो आप सिंगल हैंड गाड़ी चला सकते हैं, जैसे खुद अपना एक 2-व्हीलर हो गया। और लेकिन आपको जहां तक हो सके सावधानी रखनी चाहिए, जो पीछे में एक सहायता के लिए किसी को रख सकते हैं आप। यदि जब आपको लगता है आप प्रॉपर नींद नहीं ले पाए हैं या फिर आपने कोई दवाई डोज मिस कर दी है, तो उस कंडीशन में सलाह दूंगा कि डेफिनेटली आप गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि उस दौरान आपको दौरे आने का रिस्क बढ़ जाता है।
0: जी डॉक्टर साहब, कई ऐसे भी पेशेंट होते हैं एपिलेप्सी से संबंधित जो नशा भी करते हैं, तो ये नशा कितना हानिकारक हो सकता है ऐसे पेशेंट्स के लिए?
1: आजकल जो एपिलेप्सी की दवाइयां हैं,

0: थोड़ा बढ़ जाता है
1: जी।
0: मरीज जो ऑलरेडी अल्कोहल पे हैं, कई बार उनको नशे के दौरान या फिर जो स्मोकिंग करते हैं उनको उस दौरान में दवाइयों का डोज का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। यदि सेम डोज वो दवाई ले रहे हैं तो प्रभावशाली नहीं हो पाता, या फिर नशे के दौरान वो दवाई मिस करते हैं तो उनको फिट आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं
1: जी।
0: और साथ में उनके फिर लाइफ को रिस्क बढ़ जाता है
1: जी।
0: तो ऐसे कंडीशन में मैं यंगस्टर्स या यूथ को सलाह दूंगा कि नशे से बचें, ताकि इसका इफेक्ट जो आपके बॉडी पे कम हो, साथ में आपकी जो मेडिसिन भी रेगुलर चलते रहें और आपका जो एपिलेप्सी है, बीमारी है, वो आपके कंट्रोल में रहे। जैसे जैसे अपन अल्कोहल या फिर निकोटिन के सेवन को बढ़ाते जाते हैं, बॉडी उसका अभ्यस्त होते जाता है, साथ ही साथ जो एपिलेप्सी की दवाइयों का इफेक्ट भी कम होते जाता है
1: जी।
0: तो हो सके आपकी दवाइयां और बढ़ जाएं फ्यूचर में, आपके हेल्थ को और नुकसान होने का खतरा हो, तो सलाह दूंगा कि नशे से जहां जिस हद तक हो सके बचें।
1: और श्रोताओं, डॉक्टर के सलाह कार्यक्रम में आज मस्तिष्क से संबंधित जो एक बहुत ही वृहद बीमारी है मिर्गी, जिसे एपिलेप्सी कहते हैं, इसके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया। तो हमारे श्रोताओं से हमारी यही उम्मीद होगी कि डॉक्टर साहब की बताई गई बातों को ज़रूर ध्यान देंगे और जो भी व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित हैं वे सावधानी बरतें और डॉक्टर के पास अवश्य जाएं और डॉक्टर की बताई गई दवाइयों के अनुसार ही अपना डोज सुनिश्चित करें। तो डॉक्टर उमेश कुमार चंद्रा जी, कार्यक्रम में आप आए और मस्तिष्क संबंधित जो एक खास बीमारी है एपिलेप्सी मिर्गी, इसके बारे में आपने जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में अभी आप सुन रहे थे मस्तिष्क से संबंधित रोग मिर्गी कारण लक्षण एवं उपचार। इस विषय पर डॉक्टर उमेश कुमार चंद्रा से ली गई भेंट वार्ता।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह बजे हैं, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में। लीजिए सुनिए उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में सुपर 30 फिल्म का गाना। अमिताभ भट्टाचार्य हैं गीतकार और संगीतकार हैं अजय अतुल।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर सुबह 10 मिनट होने को हैं। पॉडकास्ट श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के चौथे भाग का प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे।
1: देश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत, इस संवाद का संचालन कर रहे हैं अमित कुमार सिंह।
2: बस्ती के आकाश गुप्ता आज मेरे साथ हैं। इन्होंने अपने 7 साथियों के साथ जो कर दिखाया उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में इनके नाम और इनके कार्यों की चर्चा करके आज इनको पूरे विश्व के पटल पे स्थापित किया, जिसकी प्रशंसा बस्ती ही नहीं पूरे देश में की जा रही है। आकाश गुप्ता जी जो बस्ती जनपद के लजघटा गांव के निवासी हैं और ये छात्र हैं, इनके साथ जितने भी लोग उस अभियान में लगे हुए हैं सभी किसी न किसी विद्यालय में 8वीं 9वीं 10वीं और ग्यारहवीं के छात्र हैं। आकाश गुप्ता जी आपका स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मनोरमा नदी सफाई अभियान को कब आपने शुरू किया और कहां से प्रेरणा मिली आपको?
3: हमने अपनी मनोरमा नदी की सफाई का अभियान 67 दिन पहले शुरू किया। जब हमने ये शुरू किया तो हमारी नदी इतनी गंदी थी कि उसमें कचरा और उसके बाद ढेर सारी पूजा की सामग्रियां उसमें पड़ी हुई। किसी के यहाँ पे कार्यक्रम होता था तो वे लोग आकर अपना जो भी बाद का सामान होता था उसमें लाके नदी में फेंक देते थे, जिस वजह से हमारी नदी का स्थिति ऐसा हो गया था कि उसमें कोई भी जानवर पानी पीता नहीं था क्योंकि उसकी हालात ही ऐसी थी और कोई भी आदमी उस वहां पर नहाता भी नहीं था। तो हमने सोचा कि आज से 10 साल पहले जब हमारी नदी इतनी साफ थी, जहां पर सब लोग नहाते थे, जानवर पानी पीते थे, आखिर आज के टाइम पे वो हाल क्यों नहीं? तो हम लोगों ने सोचा कि अगर ये हमारी नदी है तो इसे साफ करने का कर्तव्य भी हमारा है। तो हम लोगों ने 6 से 7 लोगों की टीम बनाई और अपनी नदी सफाई का अभियान शुरू किया। पहले दिन हमें नहीं लगा था कि हम लोग इस नदी को इतना आगे साफ कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी नदी का अभियान का सफाई जारी रखा और आज हमारी नदी कुछ ऐसी दिखने लगी है जहां पर जानवर आकर इसमें पानी भी पीते हैं और यहां पर लोग आकर नहाते भी हैं और हमारी बहुत प्रशंसाएं भी करते हैं।
2: आकाश जी, यह अभियान शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि इतने गंदी नदी है, आप कैसे इसको साफ करोगे, या आपका मनोबल भी एक बार कमजोर हुआ होगा कि मैं जो है कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसी प्रेरणा आपको आई कहां से और गांव के लोगों का क्या सहयोग और सपोर्ट रहा आपके साथ?
3: जब हम लोगों ने ये कार्य स्टार्ट किया था तो हमारे गांव के जो लोग थे उन्होंने कहा ये साफ तुम लोग नहीं कर पाएगे क्योंकि ये नदी बहुत गंदी है, इसको साफ करने के लिए सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन हमने कहा नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा ही साफ करेंगे लेकिन हर एक दिन काम करेंगे। और हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना हम लोग नदी अपना साफ कर लेंगे और लोगों का भी सपोर्ट नहीं रहता था क्योंकि गांव का कोई भी हमें सपोर्ट करने नहीं आता था, कोई भी नहीं कहने आता था कि हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे और तुम्हारी मदद करके नदी की सफाई को आगे जारी रखेंगे।
2: आप जब उस समय नदी की स्थिति उसकी हालात देखे तो कैसा लगा?
3: पहले के टाइम पे नदी की स्थिति बहुत ही खराब थी, तो हम लोग आते थे बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे हम सभी लोग, तो हम सोचते थे कि अगर हमारी नदी इतनी गंदी, हम लोग अगर यहाँ बैठते हैं, यहाँ बदबू आ रही है, तो इसको साफ करके हम लोग यहाँ पर सुकून से बैठेंगे। तो हम लोगों ने इसकी सफाई का काम शुरू किया और इसको साफ किया।
2: करीब 2 महीने चले इस अभियान में, सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या मिली?
3: सबसे बड़ी चुनौती ये रही हमारी नदी में कि हम लोगों ने इसको साफ पूरा किया, 30 से 40 दिन तक हमने इसको लगातार साफ किया, लेकिन फिर 10 दिनों के अंदर इसके अंदर काइया जमा होने लगी और वो काइया धीरे धीरे सड़ने लगी और जिससे बहुत ज्यादा समस्या हमें होने लगी। फिर उसको साफ किया हम लोगों ने और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे कि आकर वो पूजा की सामग्रियां वापस उसमें डाल रहे थे। उसके बाद इसके अंदर से बहुत सारी कांच की बोतल्स और वो भी टूटे फूटे हालात में मिले। बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स का हाथ कट गया, पैर कट गया और यही सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि लोग आते हैं, कचरा फेंक जाते हैं, उसके बाद सहयोग भी नहीं करते, उसको साफ भी नहीं करते।
2: इस अभियान में गाँव के लोग और भी लोगों का क्या सहयोग रहा?
3: गाँव के लोग आते थे, हमें कहते थे कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अभी तक कोई भी गाँव वाला हमारे साथ नदी में नहीं है। अब आप सोच सकते हैं, कहने की बात अलग होती है, करने की बात अलग होती है। अगर आप हमारे साथ में चलकर नदी की सफाई करते हैं तब तो हम मानेंगे आप हमारे साथ जुड़े हुए, क्योंकि हम साथी लोग जब से शुरू किए हैं तब से अभी तक काम कर रहे हैं।
2: क्या इस अभियान में जनप्रतिनिधियों और शासन का कोई सहयोग आपके साथ रहा?
3: हमने एक वीडियो बनाई थी योगी जी को लेकर कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर किया जिस वजह से हमारी एक दिन में वीडियोस 1 करोड़ लोगों ने देख लिया और योगी जी ने उसको वीडियो देखा भी। और योगी जी से पहले मोदी जी ने मन की बात में हमारी जिक्र किया कि मैं और मेरे 7 लोगों की टीम ने मिलकर अपनी मनोरमा नदी की सफाई का पहल किया है।
2: सफाई अभियान के बाद अब तक मनोरमा नदी को आप देखते हैं तो क्या लगता है?
3: सफाई के बाद मनोरमा नदी हमारी इतनी साफ लगती है कि ये तो एक जैसे लगता है कि चमत्कार टाइप का, लेकिन ये चमत्कार नहीं, ये हमारी 67 से 68 दिनों की मेहनत है जो कि हमने लगातार की है।
2: आपको अभी क्या लगता है इसमें और कुछ करने की जरूरत है?
3: जी, अभी हमारा काम तो जारी रहेगा जब तक कि हम लोग अपनी मनरामा नदी का पूरा गांव का हिस्सा जब तक साफ नहीं कर लेते तब तक तो हमारा काम जारी रहेगा, उसके आगे भी सोचेंगे। लेकिन हम चाहेंगे इसमें हमारी सरकार भी मदद करे, क्योंकि हम कुछ युवाओं के बस का ये पूरा नदी साफ करना नहीं है।
2: जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में आपका नाम लिए तो आपको कैसा महसूस हुआ?
3: हम लोग उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के छोटे से गांव लजघटा में रहते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक पटल पे हम लोगों की बात की, हमारे नाम का जिक्र किया, हमारी टीम का जिक्र किया, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारी सफाई का अभियान भी अब लोग देख रहे हैं।
2: इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा सराहना मिलने के बाद आप पर, आपकी टीम पर क्या प्रभाव पड़ा? ऐसा भी आपको लगता है कि ये जिम्मेदारियां और बढ़ गई?
3: हाँ, जिम्मेदारियां बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि अब जो हम लोग सफाई का काम करते थे 2 से 3 घंटा, अब हम लोगों ने ट्राई किया कि उसको और बढ़ाने का, और हम लोग अब धीरे धीरे और नदी को और आगे बढ़ते हुए साफ कर रहे हैं। और लक्ष्य तो यही है कि जितना हो सके हम लोग नदी को साफ रखे, जिससे कि जानवरों को और आम आदमी को परेशानी ना हो।
2: आज देश में पर्यावरण संरक्षण और पुनर्जीवन को लेकर काम करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
3: हम यही कहना चाहेंगे जो भी नेचर ने हमें दिया है वैसे ही हमको उसको संतुलित रखना है, कि चाहे वो नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे नहर हो, चाहे झरना हो, आप लोग उसको ऐसे सुरक्षित रखिए कि उसमें गंदगी ना फैले, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे तकलीफ ना हो।
2: आकाश जी, आपने जिस तरह से साबित किया कि बदलाव के लिए बड़े पद या बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं बल्कि इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यह कहानी अपने गांव, शहर, पर्यावरण के लिए कुछ सकारात्मक करने की प्रेरणा देगी।
3: अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको बड़ी मशीन या फिर कोई बड़े यंत्र की जरूरत नहीं है, आप अपने हाथों से पहले ट्राई कीजिए उसको साफ करने का। जब आप अपने हाथों से साफ करेंगे थोड़ा बहुत हिस्सा साफ होगा, फिर आपका मन करेगा कुछ और ट्राई किया जाए, धीरे धीरे आप लोग और आगे तक सफाई करें। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ हाथ और पैर थे, हम लोगों ने उसी से स्टार्ट किया है। उसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया उसमें नाव बनाने का, जिसमें हम लोग थोड़ा नाव बना भी गए थे लेकिन बीच में टूट गया। ऐसे ऐसे हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को ट्राई किया, तब जाके हमारी नदी इतनी साफ हो पाई। क्योंकि आप लोग जब किसी चीज को स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे उसकी आगे की रास्ताएं खुलते जाएंगे।
2: क्या ये आपको उपकरण से, जिसकी चर्चा मन की बात में मोदी जी ने किया, ये युवा जो है पर्यावरण या जल संरक्षण को लेकर के जागरूक है, इनके पास फावड़ा और जाल और ये ग्लव्स लेकर के ये नदी के सफाई अभियान को कर रहे हैं, क्या इस सफाई अभियान में आपको किसी ने कोई किसी तरह का सहयोग किया उसमें?
3: हम लोग जब वीडियो डालते गए उसके बाद लोगों ने इतना सपोर्ट किया, हमने उसमें अपना QR डाला जिसमें लोगों ने काफी सपोर्ट दिया, जिससे हम लोगों ने बूट्स मंगाए, ग्लव्स मंगाए और बहुत सारी चीजों को मंगाए, और बहुत सारे लोग हमारे एड्रेस पे कुछ सामान भी भेज देते हैं जिससे हमारी मदद हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा काम चलता रहा।
2: आपने कहा कि जब से हमने इस अभियान को शुरू किया तब से हम लोगों ने YouTube, Instagram और Facebook के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जोड़ा, और इस अभियान को और सफल बनाने के लिए, नदी के सफाई के लिए हमने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े। कितने लोग इससे प्रेरित हुए?
3: जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे तो 0 फॉलोअर थे, लेकिन अभी के टाइम पे अगर बात की जाए तो हमारे इंस्टाग्राम पे 63,000 फॉलोअर हो चुके हैं, फेसबुक पे 50,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं और यूट्यूब पे 10,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट हमारे साथ रहा, लोगों ने हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया जिससे हम लोग आज इतना ज्यादा सफल हो पाए।
2: आप जिस तरह से यह कार्य करके साबित किए बदलाव के लिए बड़े इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। आकाश जी, इसके बाद आपका

0: पॉल्यूशन होगा। अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम लोग नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बरसात का मौसम आने वाला है तो नदी का पानी काफी ज्यादा रहेगा, जिसके अंदर हल्की उसको सफाई नहीं की जा सकेगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे नदी के किनारे का जितना भी फील्ड है उसको हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, जितना हो सके पीपल, बरगद, पाकड़, जामुन ये सब पेड़ बैठाएंगे।
1: इंस्टाग्राम और फेसबुक के तहत लोगों को जोड़ करके क्या लगता है आपको कि क्या इससे लोग आपसे जुड़ रहे हैं, क्या इससे आगे और भी आपको काम करने के लिए और भी लोगों का साथ मिलेगा?
0: निश्चित सी बात है सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और जब तक ये नदी सफाई नहीं होगी पूरी तब तक ये काम चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर वृक्षारोपण भी होगा, हमारी नदी का अभी घाट भी बनना है, हमारी नदी पर अभी जहाँ बरगद पेड़ है वहाँ चबूतरा भी बनना है, और जब तक ये बन नहीं जाएगा तब तक ये कार्य चलता रहेगा। जब हमने इसको पहले दिन से स्टार्ट किया था तब से लेकर अभी तक हमें काफी ज्यादा लोग जाने लगे हैं, जैसे कि अभी विधायक जी ने कल परसों में आकर हमारे साथ मिलकर नदी की सफाई किया, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अब ये अभियान जो है हमारा बहुत आगे तक जाने वाला है और साफ सफाई का काम तो चलता रहेगा।
1: समाज में कुछ नया करने का आपने एक प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे अमित कुमार सिंह। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

अभी आप सुन रहे थे पॉडकास्ट प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इस कार्यक्रम का चौथा भाग। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं विविध भारती कार्यक्रम। हम अनुसरण करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भैया जी सुपरहिट इस फिल्म का गाना। यसर देसाई और पवनी पांडे की आवाजों में अमजद नदीम थे गीतकार और संगीतकार भी। लीजिए अब सुनिए आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। जावेद अली और सुनिधि चौहान की आवाजों में कौसिर मुनीर हैं गीतकार और संगीतकार हैं साजिद वाजिद, और फिल्म का नाम है दावत-ए-इश्क़।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: जुदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शोधा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

राजेंद्र कृष्ण साहब का शुमार फिल्म जगत के बेहतरीन गीतकारों में होता है। उनकी कविता में नजाकत है, जज्बात की गहराई है और दिल को छू लेने वाला फन है।

वो चाहे अलसाई सी दोपहर हो, कोई हसीन शाम हो, या फिर कोई उदास अकेली रात। राजेंद्र कृष्ण के बोल उन पलों में कभी प्यार, कभी इकरार, कभी रुसवाई और कभी जिंदगी का कोई और दर्द इस तरह भर देते हैं कि उस दर्द से भी मोहब्बत हो जाए।

6 जून 1919 को शिमला में जन्म हुआ था अपनी कलम से दिलकश नगमों को जन्म देने वाली इस गीतकार का। बहुत कम उम्र में ही राजेंद्र कृष्ण मोहित हो गए थे कविता पर। रोजी रोटी की जद्दोजहद में 1940 तक म्यूनिसिपल ऑफिस में क्लर्क की नौकरी की। उनकी इस नीरस नौकरी को रसीला बनाती रही फिराक गोरखपुरी, एहसान दानिश, सुमित्रा नंदन पंत और निराला जी की रचनाएं। 1940 के मध्य में राजेंद्र कृष्ण मुंबई आ गए। फिल्मों की दुनिया में बतौर लेखक और गीतकार अपनी प्रतिभा को आजमाने। संघर्ष की जंजीरें टूटी 1947 में जब फिल्म जंजीर के लिए उन्होंने लिखा अपना पहला गीत। 1947 में राजेंद्र कृष्ण ने लिखी फिल्म जनता की स्क्रिप्ट, लेकिन कामयाबी मिली 1948 में बनी फिल्म आज की रात से। निराशा भरी रातें ढल चुकी थीं और राजेंद्र कृष्ण लगातार काम पाने लगे। 1949 में श्याम सुंदर के संगीत से सजी फिल्म लाहौर में उनके गीतों को बहुत लोकप्रियता मिली। उन्हीं में से एक था ये गीत।

लगभग तभी एक और फिल्म आई, बड़ी बहन, जिसके संगीतकार थे हुस्नलाल भगतराम। राजेंद्र कृष्ण के गीत एक बार फिर संगीत रसिकों के होठों पर

तमिल के जानकार राजेंद्र कृष्ण उन दिनों के मद्रास के मशहूर बैनर एवीएम की पहली पसंद बन गए। वहां के अन्य निर्माताओं ने भी राजेंद्र कृष्ण की रचनात्मक प्रतिभा की कद्र की। एवीएम की लगभग सभी हिंदी फिल्मों की स्क्रिप्ट के अलावा उनके गीत लिखे राजेंद्र कृष्ण ने।

राजेंद्र कृष्ण ने अपने समकालीन लगभग सभी नामचीन संगीतकारों के लिए गीतों की रचना की। राजेंद्र कृष्ण ने करीब 100 फिल्मों की पटकथाएं लिखी और कोई 300 फिल्मों के लिए लिखे अपने अनूठे अलबेले गीत। सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड बहुत देर बाद मिला 1965 में फिल्म खानदान के इस गीत के लिए।

0: सन 1988 में
1: हम आखिर से बोल रहे हैं, परमिट होने को है, एक समाचार होंगे।
2: थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ की जल प्रबंधन पहल को राष्ट्रीय स्तर पर मिली सराहना। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पौधारोपण अभियान के तहत प्रदेश में 21 लाख पौधे रोपे जाएंगे और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा आज से शुरू हो गई है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ की जल प्रबंधन पहल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने सिंचाई दक्षता बढ़ाने और जल संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए राज्य में लागू कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन आधुनिकीकरण यानी MCAD मॉडल की प्रशंसा की है। मंत्रालय ने अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर इस मॉडल को अपनाने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे किसानों, जल संसाधन विभाग और सुशासन के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता का सम्मान बताया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर के राजीव स्मृति वन में एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने बरगद का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण जन भागीदारी से ही सफल हो सकता है और प्रत्येक नागरिक को अपनी माता के नाम एक पौधा लगाना चाहिए। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष प्रदेश में 3.5 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए थे। वन मंत्री केदार कश्यप भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए एक वृहद पौधारोपण अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत पूरे प्रदेश में 21 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने बताया कि प्रदेश के सभी बूथों में अनिवार्य रूप से पौधारोपण का कार्य किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रकृति का संरक्षण भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है और पर्यावरण की रक्षा सभी की जिम्मेदारी है। श्री चौधरी ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए औद्योगिक उत्सर्जन की ऑनलाइन निगरानी और फ्लाई ऐश प्रबंधन की व्यवस्था को मजबूत किया गया है। उन्होंने बताया कि नवा रायपुर में 20,000 से अधिक पीपल के पेड़ लगाकर इसे पीपल सिटी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने 4 दिवसीय बस्तर प्रवास के पहले दिन कल कांकेर जिले में विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने बड़े गौरी में जल जीवन मिशन के कार्यों का जायजा लिया और निर्माणाधीन नालंदा परिसर तथा अमोड़ा नरहरपुर सड़क का निरीक्षण किया। सड़क निर्माण की धीमी प्रगति पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री साव ने कहा कि गुणवत्ता और समय सीमा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वे 4 दिन बस्तर संभाग में योजनाओं के क्रियान्वयन और निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे। सुशासन तिहार के तहत उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कल कबीरधाम जिले के बोड़ला नगर पंचायत में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को इसके निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने तरेगांव में 2.5 करोड़ रुपए

0: और अंधड़ चलने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 12 जून तक छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ की जल प्रबंधन पहल को राष्ट्रीय स्तर पर मिली सराहना। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पौधारोपण अभियान के तहत प्रदेश में 21 लाख पौधे रोपे जाएंगे और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा आज से शुरू हो गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। केंद्र से विविध भारती कार्यक्रम का प्रसारण हम करेंगे दिन के 12 बजे और रात्रि 9 बजे। 9:25 पर हम अनुप्रसारित करेंगे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर युवा शक्ति थीम पर विशेष कार्यक्रम। सुगम संगीत सुनेगा आज सुबह 10:10 पर। सुबह 10:30 पर हम लेकर आएंगे फरमाइश फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। पॉप गीतों का कार्यक्रम होगा पॉप टाइम। संध्या 6:20 पर, संध्या 7 बजे और रात्रि 8:30 पर। रात्रि 8:20 का समय होगा गैर फिल्म गीतों के प्रसारण का। विविध संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 10 बजे और रात्रि 10:30 पर हम लेकर आएंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरभिनी। कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट के कार्यक्रम वनिता विहार का दिवस के संदर्भ में

রাস্তা সুইমে

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जानें, अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। गीत के महत्व तो सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है, अब सभी जानते हैं। ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875 ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन जो बंकिम चंद्र ने ही संपादन किया था, बंगा दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818 में। यदि आप जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया है जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया, उसके पहले पहला सुर दिया जदू भट्टो ने। सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदू भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ, पहली बार पब्लिक मंच

0: पर ये गीत गाया था और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नवलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे, जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर, नॉट ओनली ए नॉवेलिस्ट। प्रख्यात चिंता भी रमेश चंद्र दत्त ने कहा, द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था, जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र अत्याभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्रेशन हुआ इस गीत में। बंकिम, मैंने पहले ही कहा कि एक नवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of Swadesh Puja. On 1876, West Bengal ki Hugli Jela mein Gopal Chandra Dhar namak ek vyakti Vande Mataram Geet Desh Mallar Dhun mein gaya tha. Aur maine bola ki 1871 mein geet ka parikalpana Murshidabad Jela mein hua. Vande Mataram hamara garv hai, Swadesh ko aage badhane ke liye ye geet har waqt hamara adarsh hoga. Rabindranath टैगर ने उनकी घरे बायरे नामक जो नॉवेल है, उपन्यास है, उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला, देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं। जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे। उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में, तब उसका गीत का प्रचार हुआ, प्रसार हुआ। उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए शक्तिमान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखे तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार। बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
1: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनवेंद्र नाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून, दिल की आरती,
2: सुरीली संडली।
7: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर।

0: कार्यक्रम सुगम संगीत में भी अभिजक जैसे को सुन रहे थे। रचना थी अख्तर आजाद की।
1: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।

0: धर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना ओटीटी ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन की क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagad यानी shrotarayagad@gmail.com।
3: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
4: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
3: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
5: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए

भूपेंद्र सिंह बताली सिंह को भी आप सुन रहे थे। रचना थी कतल रॉय स्थानीय की। इसका हमारे कार्यक्रम अब संपन्न होता है। सुबह 10:30 हुए हैं। आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम

बोलिए श्रोता साथियों के प्रसंग पर श्री यहाँ पर्वतांचल ग्राम बेलर गांव से मिथिलेश देवंगन मधु देवंगन हिमांशु और अंकित देवंगन भविष्य पर रायगढ़ से है विनोद कुमार गुप्ता रीना नेहा ईशु और अंशु गुप्ता श्री जो रायगढ़ से हैं लक्ष्मण बाधवानी बिमला बाधवानी मास्टर हर्ष खुशी और शुभम बाधवानी इनके साथ हैं कन्हैयालाल तिरथानी फिल्म हकीकत का ये गीत

0: اهل القصه ما فيها في نبيل الحقيقه تقيس هنا جيت لك لبسين كا ريديو سروتا
1: आकाशवाणी F90।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं भारती यादव रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सर्वप्रथम आकाशवाणी को अपने गौरवशाली 90 वर्ष पूरे करने पर मेरी ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं। आकाशवाणी ने वर्षों से हम देश के कोने कोने तक समाचार, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाई है। चाहे समाचार हो या हवा महल या विविध भारती जैसे लोकप्रिय कार्यक्रम में न केवल लोगों का मनोरंजन किया बल्कि जागरूक भी बनाया है। गांव हो या शहर, हर वर्ग के लोगों तक आकाशवाणी की आवाज पहुंची है और उससे एक सूत्र से बांधने का कार्य किया है। मैं हृदय से आकाशवाणी का धन्यवाद करती हूँ जिसमें हमेशा विश्वसनीय व सच्ची जानकारी हम तक पहुंची। आज जिस ऐतिहासिक अवसर पर हम सभी आकाशवाणी के इस गौरवशाली सफर को नमन करते हैं और इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।
0: कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया श्रोता साथियों की पसंद पर। भद्रसिंह सिंह, पन्नालाल सिंह, खुशबू सिंह, तारा और कौशल सिंह। जवाब तो से हैं आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। छत्रपति संभाजीनगर से हैं राजेश शाबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। गांधी चक्रों पर पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मिका बिरक। फिल्म वापस का ये गीत

0: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के सुर में अभी अपनी फिल्म वापस का गीत सुना। गीत दिलीप वज्रोपुरी ने, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। केंद्र से इस समय आप सुन रहे फरमाइश फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया श्रोता साथियों की पसंद पर। इंदिरा नगर भंवरपुर से हैं राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, जगदीश और राजू देवांगन। मैं रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से है नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। बेमित्रा से हैं सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, बीरेंद्र ब्रिजकांत सारथी। जातुका किशनपुर से हैं आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम और चांदनी नाज। आइए आप सबकी पसंद पसंद फिल्म गिरफ्तार का ये गीत।

किशोर कुमार और आशा भोसले के सुर में अभी आपने फिल्म गिरफ्तार का गीत सुना। रचना थी इंदिवर की, संगीत था बप्पी लहरी का। कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं श्रोता साथियों के पसंद पर। ताजपुर महुआ से हैं भाईकारी, रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक और लल मिश्रा। ग्राम डोली सकरा से हैं जयंत कुमार बैरागी। ग्राम रिंगली छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। इंद्रनगर रायगढ़ से हैं शेख अब्दुल समीन, अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानू, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम और आसिफ नईम राजा। लाल टंकी चौक रायगढ़ से हैं चेतन दास, शीतल दास, सुशीला साहित्या, मनोज कुमार, मुकेश और अंकित साहित्या। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते फिल्म लावारिस का ये गीत।

अक्षय भोसले और किशोर कुमार के सुर में अभी अपने फिल्म लव आरिस का गीत सुना। गीत लिखा था अंजन ने, संगीत था कल्याण चैनन जी का। श्रोताओं, यदि कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आप भी अपने पसंद के गीत सुनना चाहते हैं तो हमें इस पते पर खत लिखें। आपकी फरमाइश द्वारा के निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 21, आकाशवाणी रायगढ़, पिन कोड है 4960001।

0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। दिन के 11 बजने को है। विभक्ति कार्यक्रम का प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे।
1: सिर्फ विविध भारती पर।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम था मौसम। गीतकार थे गुलजार साहब और संगीत दिया था मदन।

0: यह अवस्थी आशा भोसले की और फिल्म का नाम था उमराव जान। इसे लिखा था शहरयार ने और धुन बनाई थी खयाम साहब ने।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम में अब सुनिए जयदेव के संगीत निर्देशन में मखदूम मोहिउद्दीन की लिखी ये रचना। गायिका है छाया गांगुली और फिल्म का नाम है गमन।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आइए सुनते हैं अगला गीत। जगजीत सिंह की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म साथ साथ की ये गजल। इसे जावेद अख्तर ने लिखा है और संगीत दिया है कुलदीप सिंह ने।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं। क्यों? क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
2: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
2: खत लिख दे।
3: लीजिए अब सुनिए हृदयनाथ मंगेशकर के संगीत निर्देशन में गुलजार साहब की रचना, आवाजें हैं आशा भोसले और सत्यशील देशपांडे की। ये फिल्म है लेकिन।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: और अब आज का चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए अब सुनिए मैटिनी शो।

मैटिनी शो में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म थ्री इडियट्स के कुछ गीत। जी हाँ, फिल्म थ्री इडियट्स, जिसे आपने भी देखा होगा, इसी पर आज हम कुछ बातचीत कर लेंगे। क्यों, ठीक है ना? तो आप सभी जानते हैं कि फिल्म थ्री इडियट्स बहुत ही फेमस फिल्म है और ये फिल्म कई विषयों की पड़ताल के लिए जानी जाती है, खासतौर से शिक्षा प्रणाली की जो मुद्दे हैं, शिक्षा प्रणाली के मुद्दे हैं, उनसे जुड़ी जो आलोचनाएं हैं और शिक्षा से जुड़े जो सामाजिक दबाव हैं बच्चों पर, परिवार पर, उस पर केंद्रित रही ये फिल्म थ्री इडियट्स। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, आवाजें सोनू निगम, शान और स्वानंद किरकिरे की। गीत को स्वानंद किरकिरे ने ही लिखा है और धुन शांतनु।

0: दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म थ्री इडियट्स की। इसमें ये फिल्म 2009 में आई थी और आमिर खान के अलावा आर माधवन, शर्मन जोशी, करीना कपूर, बोमिन ईरानी और ओमी वैद्य मुख्य भूमिकाओं में थी। और इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार हिरानी ने किया था। गीत स्वानंद किरकिरे ने लिखे थे और संगीत था शांतनु मोहित्रा का। और हाँ, हम सभी जानते हैं कि इस फिल्म में आमिर खान ने फुनसुक वांगड़ू के रूप में भूमिका निभाई थी रेंचो की, जिसे रेंचो के नाम से हम जान रहे थे। शर्मन जोशी जो है राजू रस्तोगी के रूप में बहुत ही अच्छा किरदार निभा रहे थे और आर माधवन फरहान कुरैशी के रूप में थे। करीना कपूर ने पिया के रूप में अपनी बहुत ही खास भूमिका निभाई और इस फिल्म का केंद्र बिंदु थे बोमिन ईरानी, जिन्होंने प्रोफेसर वीरू वायरस सहस्रबुद्धे के रूप में अपनी भूमिका निभाई। ओमी वैद्य ने चतुर रामलिंगम जो साइलेंसर के रूप में थे अपनी काफी अच्छी भूमिका निभाई और मोना सिंह मोनिका के रूप में थी। राहुल कुमार को मिलीमीटर के रूप में फिल्म में दर्शाया गया था। तो कुल मिलाकर ये फिल्म जो थी बहुत ही शानदार तरीके से एक शानदार विषय पर फिल्माई गई। निर्माता विधु विनोद चोपड़ा थे जिन्होंने बहुत ही सुंदर विषय उठाया। और कहते हैं कि फिल्म जो है चेतन भगत के उपन्यास 5.1 पर आधारित थी और इस फिल्म की पटकथा यानी स्क्रीन प्ले राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी ने लिखा था। और जैसा कि हमने बताया, शांतनु मोहित्रा ने संगीत दिया था और स्वानंद किरकिरे ने अपने गीतों से इस फिल्म में चार चांद लगा दिए थे।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो।
0: ये स्वर है सूरज जगन और शर्मन जोशी के।

किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा।

0: मैटिनी शो में आज हम बात कर रहे हैं फिल्म थ्री इडियट्स की। थ्री इडियट्स फिल्म भारतीय हिंदी फिल्मों की अगर हम बात करें तो मील का पत्थर माने जाने वाली फिल्म है और ये फिल्म शिक्षा प्रणाली की कमियों और सामाजिक दबाव, जिस पर मैंने अभी बात कही थी आपसे, उस पर एक तीखा व्यंग्य है जो दर्शकों को अपने जुनून को चुनने की एक सलाह देता है, संदेश देता है और जीवन को सरलता से जीने का भी संदेश देती है ये फिल्म, क्योंकि जिंदगी में हम आज इतने तनावग्रस्त हैं, हमारे बच्चे जो कैरियर चुनना चाहते हैं अच्छा मनपसंद, लेकिन इतना बोझ है शिक्षा का कि वे समझ नहीं पाते कि क्या किया जाए। तो ये फिल्म स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कैसे हमारे जो शिक्षण संस्थान है, जो एजुकेशन है, वो सिर्फ रटने वाली विद्या पर बढ़ावा देती है, यानी नवाचार, जो कहा जाता है कि नवाचार कीजिए, उस पर इतना नहीं जोर देती है जितना कि रटने जैसी विद्या पर, ताकि बच्चे किसी पोस्ट पर जब जाते भी हैं, किसी कैरियर को चुनते भी हैं, तो कई बार उनका पढ़ावा कहीं काम ही नहीं आता है। तो ये फिल्म ये भी दर्शाती है कि जो माता पिता हैं वो बच्चों पर कैरियर का विकल्प थोपे नहीं कि आपको इंजीनियर ही बनना है, आपको डॉक्टर ही बनना है, यानी आपको काबिल बनना है, कामयाबी की राह पर चलना है और इसके लिए आपको अपने सपने देखने हैं, अपने सपनों के पीछे भागना है। ये फिल्म साफ संदेश देती है कि काबिल बनो और कामयाबी तो आपके पीछे झक मार कर आएगी, बस तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी है।
1: जाने नहीं।
0: और मेहनत भी ऐसी जो आपके सपने हैं, जो आपके ख्वाब हैं, जो आपकी कल्पना में हैं।

जी तो आप सभी ने फिल्म थ्री इडियट्स देखी होगी, जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो इंसानी जीवन का संघर्ष है उसकी एक शानदार कहानी है। और ये फिल्म दर्शाती है कि हमें अपने अस्तित्व के लिए बचपन से ये लड़ाई लड़नी शुरू करनी होती है, क्योंकि बच्चा जब दुनिया में आता है तो अपने माता पिता की आशाओं से भरी निगाहों को देखता है, जो चाहते हैं कि उनका बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने या कोई बड़ा अधिकारी बनकर परिवार का नाम रोशन करे। माता पिता इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ होते हैं कि उनकी अपेक्षाएं वास्तव में उनके बच्चों को लाभ पहुंचा रही है या उनके मानसिक दबाव को बढ़ा रही है। और ऐसा नहीं है कि माता पिता अपने बच्चों के दुश्मन होते हैं, बल्कि या ऐसा कि उनका कोई निजी स्वार्थ होता हो, लेकिन हाँ, माता पिता भी कई बार जरूरत से ज्यादा बच्चों पर जब बोझ लाद देते हैं तो फिर एक अलग कहानी पैदा हो जाती है। माता पिता की अपेक्षाओं का दबाव और बच्चे को और ज्यादा गंभीर बना देता है, तनावग्रस्त बना देता है और अपनी जिंदगी में जो बचपन की दुनिया है उसे भूलकर एक मानसिक दबाव की जिंदगी जीने लगता है। तो ये फिल्म एक ऐसे पिता की कहानी बताती है जो अपने बेटे को, जिसे वन्य जीव फोटोग्राफी का बहुत शौक था, इंजीनियरिंग करने के लिए मजबूर करने की अपनी गलती को अंततः स्वीकार करता है और उसे अपने दिल की बात मानने की अनुमति देता है, जो कि हर माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चे से बात करे और पूछे कि आखिर उनका बच्चा क्या बनना चाहता है और उस दिशा में क्या वो सच में मेहनत करेगा या खाली ख्वाब देख रहा है या सपने देख रहा है। ये बातचीत करने की आज परिवार में बेहद जरूरत है, ना कि अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को बच्चों पर लादने की। फिल्म थ्री इडियट्स यही कहती है संदेश।

0: ये आवाजें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की थी। तो आज हम बात कर रहे हैं फिल्म थ्री इडियट्स की, और आप सभी ने अगर ये फिल्म देखी है तो निश्चित रूप से आप इस फिल्म को पसंद किया होगा। और इस फिल्म में शायद पहली बार शहरी कॉलेज जाने वाले छात्रों को एक सही रूप से बोलते हुए या कपड़े पहने हुए दिखाया गया है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि बहुत ही बड़े रूप में, एक अलग रूप में कॉलेज का दृश्य दिखाई देता है जो आम कॉलेजों से बिल्कुल अलग होता है, लेकिन इस फिल्म में वैसा ही दृश्य दिखाया गया है जैसा फिल्मों में हमारे जीवन में भी वैसा ही दृश्य हमें कॉलेज का मिलता है। और दोस्ती की एक दिल को छू लेने वाली और दिल को उत्साहित कर देने वाली कहानी है, और जहां इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों को छू लिया। और हमें लगता है कि इस तरह की फिल्में अगर बनाई जाए तो निश्चित रूप से ये फिल्में हमें कुछ सीखने को तो देगी।
1: ग्यारह बजकर 55 मिनट होने को हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के लिए एकीकृत आजीविका कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई नेशनल यूथ म्यूथाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ ने 7 स्वर्ण पदक सहित 17 मेडल जीते। और मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन प्रदेश के कुछ जिलों में तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के लिए एकीकृत आजीविका कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। मुख्य सचिव विकासशील ने इस संबंध में अधिकारियों को विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ये कार्यक्रम बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिलों में शुरू किया जाएगा। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने राज्य के सभी 194 नगरीय निकायों में शहरी विकास योजनाओं की निगरानी और सशक्त करने का निर्णय लिया है। विभाग की सचिव संगीता आर ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, स्वच्छ भारत मिशन और अमृत मिशन सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि आज 6 जून को सभी राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी अपने अपने जिलों में पहुंचकर योजनाओं की प्रगति और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए एक वृहद पौधारोपण अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत पूरे प्रदेश में 21 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने बताया कि प्रदेश के सभी बूथों में अनिवार्य रूप से पौधारोपण का कार्य किया जाएगा। दुर्ग जिले में अफ्रीकी देशों से आए 4 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को एहतियात के तौर पर 21 दिन के लिए होम आइसोलेशन में रखा गया है। इनमें कांगो, इथोपिया, युगांडा और सूडान से आए यात्री शामिल हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज दानी ने बताया कि सभी यात्रियों की प्रतिदिन स्वास्थ्य निगरानी की जा रही है। फिलहाल चारों यात्री पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनमें किसी प्रकार के लक्षण नहीं पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई नेशनल यूथ म्यूथाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ ने 7 स्वर्ण पदक सहित 17 मेडल जीते हैं। इस चैंपियनशिप में 26 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 900 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ से 36 सदस्यीय दल इस चैंपियनशिप में शामिल हुआ। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा आज से शुरू हो गई है। ये परीक्षा 9 जून तक चलेगी। परीक्षा 2 पालियों में हो रही है। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन प्रदेश के कुछ जिलों में तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। आज प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी दी गई है। भारत सरकार की राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन दंतेवाड़ा स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में 8 जून को सुबह 10 बजे से किया जाएगा। मेले में जिले के समस्त आईटीआई के वर्तमान प्रशिक्षणार्थियों, पूर्व प्रशिक्षणार्थियों और अन्य इच्छुक युवाओं को आमंत्रित किया गया है। गौरेला पिंड और मरवाही जिले के कोटमीकला साप्ताहिक हाट बाजार में ज्वेलरी व्यवसायी की हत्या और लूट मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल उर्फ मनीष मंडल को झारखंड के देवघर से गिरफ्तार कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के लिए एकीकृत आजीविका कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई नेशनल यूथ म्यूथाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ ने 7 स्वर्ण पदक सहित 17 मेडल जीते और मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन प्रदेश के कुछ

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन में हिस्सा लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए सत्र आयोजित होंगे। आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए लिंगमनेनी रमेश को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी के आधिकारिक बयान में ये घोषणा की गई। लिंगमनेनी रमेश आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: भारत अमेरिका सेना ने अधिकारियों की वार्ता का 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सहअध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीति लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमान जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वेवन ने की। चर्चा में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने, अंतर संचालनीयता बढ़ाने, पेशेवर आदान प्रदान का विस्तार करने और साझा सुरक्षा हितों के समर्थन में सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों देशों ने सहभागिता के बढ़ते दायरे की सराहना की और भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा या दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। स्थानीय नागरिकों और व्यवसाय करने वाले या छात्र परमिट धारक विदेशी नागरिकों को देश में प्रवेश की अनुमति होगी। हालांकि यदि उन्होंने पिछले 3 हफ्तों में इन देशों में से किसी का भी दौरा किया है तो उन्हें 21 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भोजनावकाश तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से राजस्थान के ऑलराउंडर मानव सुथार टेस्ट क्रिकेट में पहली बार खेल रहे हैं। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हमने राजेंद्र कृष्ण जी के लिखे गीतों को शामिल किया है। आज उनका जन्मदिन है, तो आइए सुनते हैं यादों की महफिल कार्यक्रम में गीतकार राजेंद्र कृष्ण की रचनाएं।

सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में हम आपको राजेंद्र कृष्ण की लिखी गीत रचना सुनवा रहे हैं। युगल स्वर आशा भोंसले और मोहम्मद रफी के, फिल्म का नाम है अमरदीप।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और सी रामचंद्र का गाया हुआ फिल्म का नाम है आजाद। गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की और संगीत सी रामचंद्र यानी चितलकर का।

कार्यक्रम में आप सुनिए कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण के बोल, आवाज लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है ब्लैकमेल।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण के बोल, आवाजें मोहम्मद रफी और साथियों की, फिल्म का नाम गोपी।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म ब्लैकमेल में।

कार्यक्रम का अगला गीत मदन मोहन के संगीत निर्देशन में है। गीतकार राजेंद्र कृष्ण तो है ही, आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है मन मौजी।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं। क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
2: इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्टकार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
2: खत लिख दे।
3: राजेंद्र कृष्ण के बोल, रवि का संगीत, मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की आवाजें फिल्म शहनाई के लिए।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म शारदा से आपके लिए चुना है। गाने वाले कलाकार लता मंगेशकर और आशा भोंसले, राजेंद्र कृष्ण के बोल तुम्हें ही और सी रामचंद्र का संगीत है।

0: लता मंगेशकर और आशा भोंसले की आवाज थी फिल्म शारदा के लिए।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
2: वंदे मातरम सुजला।
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
0: और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने गीतकार राजेंद्र कृष्ण को याद किया।

सुरीला सफर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी बताइए कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे हैं और हमारे कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं और आपकी टिप्पणियां आपके संदेश पढ़कर हमें पता लगा कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और थोड़ा सा परेशान भी हो गए थे कि क्या बातें, आज सुरीला सफर में हम सफर करेंगे कि नहीं। अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ये कार्यक्रम आपका अपना है और हम हर दिन आपके साथ यूं कहें कि आप हमारे साथ सफर करते रहेंगे। हाँ थोड़ा कभी कभी आगे कभी कभी पीछे हम हो सकते हैं, होना नहीं चाहिए पर ऐसा कभी कभी हो जाता है। तभी तो जब ऐसा होता है यानी कभी समय ज्यादा हो जाता है कभी समय से पहले कुछ हो जाता है तो हमारा ये मन व्यथित हो जाता है और आज इसीलिए हमने कुछ ऐसे गीत चुने हैं जो आपके मन को प्रभावित जरूर करेंगे। और हमने हमारी इबारत बहुत छोटी रखी, कई श्रोताओं ने लिखा है कि अरे इतनी छोटी इबारत, जब हम बहुत बड़ी इबारत रखते हैं तो आप कहते हैं माशाल्लाह कितनी बड़ी इबारत रखी है, तो ऐसा नहीं है। जब मन में जो विचार आते हैं जिस गीत को लेकर या आज इस कार्यक्रम को लेकर, हम वैसा ही लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमसे अच्छा तो आप लिख देते हैं जनाब, जिसे हम पढ़ते हैं आप सभी के साथ साझा करते हैं। तो आज हमारी छोटी सी इबारत है कि कभी कभी मन का रेगिस्तान सूख जाता है, या यूं कहें कि कभी कभी मन जो है रेगिस्तान सा हो जाता है, मन प्यासा हो जाता है। इस भागती दौड़ती दुनिया में हर कोई, आप हम, किसी न किसी चीज का प्यासा है ना। उदास मन को बस एक अदृश्य मीठी सी बूंद की तलाश होती है। अगर आज यूं कहें कि आपका मन जब भी उदास हो तो रुकिए, खुद को कोसिए मत, कोसना बंद कीजिए, आसमान की ओर देखिए, सूरज खुद जलकर औरों को ऊर्जा और प्रकाश दे रहा है, बस यही जीवन दर्शन है। इसलिए इस जीवन दर्शन को लेकर आज हमने इबारत रची, तो छोटी सी इबारत थी क्योंकि जब दर्शन की बात हो गई तो क्या कहना चाहिए, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात है ना। तो आपने मन के बारे में, सूरज के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हाँ हमने आपको लिखा था कि इस इबारत में आज के चुनिंदा गीतों से संबंधित कोई शब्द नहीं रखे गए हैं, जिसे लेकर आप अक्सर परेशान हो जाते हैं कि भाई इस शब्द पर तो बहुत सारे गीत हैं। आज हमने आपको इतना बड़ा क्लू दे दिया और उसको जानकर आपने देखिए कितने कम समय में कितने सारे गीत चुन लिए हैं जो हमारी पसंद के गीतों से मेल खा रहे हैं, यानी यूं कहें कि अब हमारी पसंद मिलने लगी है। यही तो होता है संगत का असर, हमें आपकी संगत का असर हो गया है, या यूं कहें कि आपको हमारे साथ रहने का असर है कि हमारी पसंद मिलने लग गई है। तो बस आज के गीतों में रे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, बताइए कौन से गीत हो सकते हैं वो। आपने बहुत सारे गीतों को बताया भी है और उसका जिक्र हम करने भी वाले हैं, लेकिन हाँ हम आपको ये कहना चाहते हैं कि फिल्मी गानों में हमारे गीतकारों ने अलग अलग प्रयोग किए हैं और ये प्रयोग

बहुत सफल भी हुए हैं। आज के सभी गीतों में रे का संबोधन है ना। कहते हैं कि हिंदी और उर्दू साहित्य का एक बहुत ही काव्यात्मक और भावनात्मक तरीका है ये, जिसमें हम किसी निर्जीव वस्तु, विचार या खुद के मन को सीधे पुकारते हैं तो उसमें संवाद करते हैं और कहते हैं सुन रे, है ना। बस इन्हीं गीतों को आज हमने चुना है, जहां गीतकारों ने उसमें खुद से, किसी वस्तु से, किसी विचार से या किसी अपने से सीधे संवाद किया है रे के माध्यम से, जैसे कि सूरज रे जलते रहना। तो सुनिए आज का ये पहला गीत।

तो देखा आपने सूरज रे जलते रहना, कितना खूबसूरत गीत। हेमंत कुमार की आवाज थी, हरिश्चंद्र तारामती फिल्म का नाम था, कवि प्रदीप की रचना थी ये और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। आपने सुना इस गीत को और महसूस किया होगा कि यहाँ कवि प्रदीप प्रकृति के सबसे तेजस्वी तत्व सूरज से बात कर रहे हैं और उसे उसकी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। सूरज रे जलते रहना, बुझना मत जलते रहना, कितना खूबसूरत तरीके से गीतकार ने इस गीत को लिखा है ना। हमारी श्रोता लिखती है कि कोई चीज खो जाए और न मिले तो मन कैसा उदास हो जाता है, मन का रेगिस्तान उसी पल सूख जाता है। लोग कहते हैं कि वक्त हर जख्म को भर देता है, पर ऐसा नहीं होता। इंसान नियति के आगे झुककर जीने को बाध्य है और जब हम जानते हैं कि हाल कैसा भी हो जीना तो पड़ेगा ही, तो क्यों नहीं जीवन थोड़ा हंसकर और थोड़ा भूल कर जिया जाए। जीवन को जितनी गंभीरता से लिया जाएगा उतनी ही पीड़ा होगी। इसे कुछ इस तरह से जियो कि यह उम्र एक सड़क है और हम सिर्फ चलने वाले हैं, हमें सिर्फ चलते जाना है। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन की इस आपाधापी में अक्सर मन का सागर उथला और शांत हो जाता है, उम्मीदों का किनारा छूटता सा लगता है और आत्मा एक सुकून भरी छांव की प्यासी हो जाती है। ऐसे में खुद को दोष देने के बजाय जरा उस वृक्ष को देखिए जो खुद तेज धूप सहकर पथिकों को शीतल छाया देता है। यही इस नश्वर जीवन का सबसे बड़ा सत्य और सार है, दूसरों के जीवन में प्रेम और प्रकाश को बांटना। वहीं एक श्रोता ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी बात कही है कि अगर कोई ये पता लगा ले कि मन की उत्पत्ति कैसे हुई तो मैं उसे वैज्ञानिक कहूंगी। सब कहते हैं मन मेरा है, मन मेरा है, लेकिन मन क्या है, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई और ये किससे बना है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका उत्तर नहीं मिलेगा। मन की उत्पत्ति निरंतर बदलती रहती है, इसलिए कोई नहीं बता सकता कि ये कैसे अस्तित्व में आया। मन को ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों दोनों के बीच कड़ी यानी मध्यस्थ माना गया है। अंतःकरण के चार भाग, अंतःकरण के चार अंगों में से मन एक है, शेष तीन बुद्धि चित्त और अहंकार। कार्य मन का मुख्य स्वभाव है, संकल्प विकल्प चंचलता दुविधा और इच्छाएं पैदा करना। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मन के अंदर भी एक रेगिस्तान होता है, बाहर भले हरियाली हो लेकिन अंदर सूखी और गर्म रेत। मन का रेगिस्तान पानी नहीं मांगता, वो मांगता है बस इतना कि कोई उसे समझे बिना, जज किए बिना उस उदास मन को बस वो जो थक गया है मुस्कुराते उसे मुस्कुरा कर देखे। उदास मन के भीतर भी एक कोना होता है जहाँ उम्मीद की एक बेल जिसे सींचना पड़ता है, खुद से बात करके, खुद को समझ के और बेवजह खुद को ही गले लगाकर। आपने बहुत सारे गानों का जिक्र किया है, जो इसमें से आपका एक गाना हमसे मिलता है, सूरज रे जलते रहना। तो आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, शब्द रे। सोना रे,

आशा भोसले मोहम्मद रफी को आपने सुना। फिल्म का नाम था तीसरी मंजिल। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे और संगीतकार थे राहुल देव बर्मन। कितनी प्यारी इल्तजा कर रही है महबूबा अपने महबूब से, ओ मेरे सोना रे। जी तो आज के दो सवाल नोट कर लीजिए। वैसे तो आपने अपनी टिप्पणियों में बहुत सारे गीत लिखे हैं जो हमारी गीतों से मेल भी खा रहे हैं और उसके अलावा भी गीत लिखे गए हैं, तो वही हमारा सवाल है कि रे का ये प्रयोग किन किन गीतों में हुआ है, आप बताइए। जैसे ही आप बताएंगे हो सकता है आपकी पसंद हमारी पसंद से और मेल खा जाए और इसके अलावा कुछ अन्य गीत भी हमारी नजर में आ जाए। तो रे का प्रयोग यहाँ और फिल्मों में किन किन गीतों में किया गया है, इसका उल्लेख आपको करना है, कम से कम 4 या 5 गीत। और दूसरा सवाल ये है कि रे का ये काव्यात्मक रूप कब कब गीतों में इस्तेमाल किया जाता है, यानी गीतकार जब लिखता है जैसे सो नारे सूरज रे, ये क्यों और कब। जैसा कि मैंने पहले कहा भी था, आप अपनी कल्पना से बताइए, अपने भावना से बताइए कि रे का ये काव्यात्मक रूप गीतकार कब कब गीतों में किस रूप में इस्तेमाल करता है। अगर वो कहता है सूरज रे चंदा रे मन रे, तो क्यों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, बताइएगा कम से कम शब्दों में।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत आधुनिक अंधी दौड़ की मरीचिका का उल्लेख करते हुए जीवन के दर्शन को बयां कर रही है। अंततः इस मृत तृष्णा का सुखांत सूर्य की उपमा संग प्रदान कर सुखद उपसंहार में समापन किया गया है। विषय पूर्णतः तथ्यपूर्ण और दार्शनिक है। अभिनव गीत चयन भी प्रशंसनीय है। अल्पकालीन सूचना पर भी आशा है कि यह संक्षिप्त इबारत सफर की गरिमा बरकरार रखेगा। बिल्कुल, ये आप सभी श्रोताओं पर है। हो सकता है आज का ये सफर थोड़ा छोटा हो जाए, आप सभी लोग कम से कम टिप्पणियां कर पाए क्योंकि आपको वक्त कम मिला, लेकिन जितना भी मिला उसी में हम इस सफर का आनंद उठाएंगे, क्यों है ना। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश में जीवन में छाई उदासी या ग्लानी को एक तरस या प्यास की उपमा के साथ उभारने की कोशिश हुई और एक शब्द को खास कर प्रयोग में लाया गया है गीतों के जरिए, वो भी खास है रे, यानी मन वो उदास हो या धीर कैसे धरे या हो या सूरज जो जीवन की शक्ति के लिए अपने को जलाता रहे, यही जीवन की सच्चाई को उजागर करते हुए गाने होंगे। आपने भी कुछ गीतों का चयन किया है तो देखिएगा आपकी गीत हमारी पसंद से मेल खा रहे हैं या नहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपकी ये पंक्तियां जीवन के एक बहुत ही गहरे और कड़वे सच को बेहद खूबसूरती से बयां कर रही है।

रखनी जी। भागदौड़ भरी इस जिंदगी में अक्सर हम दूसरों की उम्मीदों को पूरा करते करते अंदर से पूरी तरह रीते और थकावा महसूस करते हैं। ये ठहराव जिसे हम प्यास या खालीपन समझ रहे हैं, वास्तव में खुद को भीतर से सींचने और एक नई ऊर्जा के साथ खिलने का अवसर है। हमें किसी बड़े चमत्कार की नहीं बल्कि अपनेपन और सांत्वना की बस एक छोटी सी मीठी बूंद की तलाश है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी मीठी बूंद की तलाश में हम पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं। वो मिलती है कि नहीं ये हमारे अपने अपने सोच और कहना चाहिए अनुभव पर निर्भर करता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आपने श्रोताओं के मन को रेगिस्तान बना दिया। पोस्ट लगभग सिर्फ 45 मिनट पहले आई है। मेरे ख्याल से सभी उत्सुकता से आपकी राह देख रहे थे कि कब सुरीला सफर की रेल आए, हम उसमें सवार हों, इबारत को देख अपनी जिज्ञासा की प्यास बुझाएं। तो अब तो आप रेल में सवार हो गए हैं ना, चलिए करते हैं यात्रा शुरू। और हो गई है यात्रा शुरू, देखिए रेल हमारी चल पड़ी है फटाफट। एक श्रोता लिखते हैं कि अपने मन की उदासी को कोसने के बजाय खुद पर हौसला रखें और उगते सूरज की तरह चारों तरफ प्रकाश फैलाएं, अर्थात परिश्रम करें, आगे बढ़ें। मन रे तू काहे न धीर धरे, आपने इस गीत का चयन किया है और वाकई हमारा अगला गीत यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बधाई जिन्होंने ये गीत पसंद किया है या अपनी पसंद में ये गीत शामिल किया है।

रोशन के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे साहिर लुधियानवी का लिखा गीत। मोहम्मद रफी की आवाज थी और फिल्म का नाम था चित्रलेखा। कितना खूबसूरत गीत, गहरा और सुंदर। दार्शनिक प्रयोग यहाँ पर रे का, देखा आपने, रे का अर्थ यानी यहाँ मन या आत्मा से है। और यहाँ गीतकार जो साहिर लुधियानवी है अंतरात्मा को एक दार्शनिक उपदेश दे रहे हैं। जो मन अशांत है उन्हें धैर्य रखने की सीख दे रहे हैं। कह रहे हैं कि रे मन, तू धीरज क्यों नहीं धरता, इस जीवन की धूप छांव को किसने बांधा है, इसलिए व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ दे रे मन, मन को समझा, अपने आप को समझा। कितना गहरा गीत, और इस गीत को सुनकर तो मन को शांति मिलती ही है, आपको भी निश्चित रूप से बहुत गहरी शांति मिली होगी। और आप मन को समझा सकते हैं इस गीत को सुनकर कि इधर उधर व्यर्थ की दौड़ भाग में कुछ नहीं रखा, मन को शांत और सौम्य रखा जाए, वही जीवन का सार है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीला सफर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आप इस रेगिस्तानी सफर में गर्मी में आज सुरीले गानों से मन की प्यास बुझाएंगी, मन को शीतलता मिलेगी, बहुत सुंदर। वहीं गीत एक श्रोता लिखते हैं कि इंतहा हो गई इंतजार की, नमस्कार, क्या बात है, आज सुरीला सफर बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा पोस्ट के लिए। अरे आप तो फिर भी इस सफर में शामिल हो गए हैं, और क्या चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती रे, मंदाकिनी बहन रे, आप ही बताओ आज की पोस्ट इतनी देरी से क्यों आई, वैसे रोज सुबह आ जाती है मगर इतनी छोटी सी इबारत भी नहीं होती है। सुरीला सफर में जुड़ रहे सभी के संग आपको मैं स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका कि आप हमारे साथ हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आप पानी की बूंदे लेकर आई हैं, तो कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिलेगी, बाकी तो जब प्रोग्राम चलेगा तब पता चल जाएगा कि कितनी ठंडक मिलेगी, मिली ठंडक आपको। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि सूरज हमें जीवन दर्शन भी सिखाता है, सूरज हर दिन बिना थके अपना काम करता है, ये सिखाता है कि जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो अपने कर्तव्य से नहीं डिगना है, नहीं हटना है, रात कितनी भी लंबी हो और सवेरा जरूर आएगा। और इसी तरह हमारे जीवन में भी दुख के बाद सुख जरूर आता है, सूरज स्वयं जलकर भी संसार में प्रकाश बिखेर कर परोपकारी बनना सिखाता है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत अनुरूप संभावित गाने, समय कम है इसलिए ज्यों ज्यों याद आएंगे जोड़ते जाएंगे, सूरज रे जलते रहना फिल्म हरिश्चंद्र तारामती, मन रे तू काहे नधीर धरे, और आपने और भी गानों के बारे में लिखा है। तो हमारी जो आज की सवाल है, हमारा जो आज का सवाल है, उसमें हम आपके गीतों को शामिल करेंगे जो आपने रे के प्रयोग वाले

0: चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म नागमणि का गीत। इसे आवाज दी है प्रदीप ने। गीत को कवि प्रदीप ने ही लिखा है और धुन बनाई है अविनाश व्यास ने।
1: पिंजरे के पंछी
0: रे

जी, तो सुना आपने कि कवि प्रदीप ने कितने दार्शनिक तरीके से ये बात कही है कि पिंजरे में बंद पक्षी और शरीर यानी दुनिया में फंसी मानव आत्मा की जो उन्होंने तुलना की है। आप देखिए कि वो कहते हैं कि जिस प्रकार पिंजरे में कैद पक्षी अपने पंखों के कटने और अपनी स्वतंत्रता यानी अपनी आज़ादी छिन जाने का दर्द किसी को नहीं बता सकता, ठीक उसी तरह मानव शरीर में कैद आत्मा सांसारिक बंधनों और दुखों के कारण मौन रहकर भीतर ही भीतर तड़पती रहती है। तभी तो उन्होंने कहा, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। हमारे श्रोता लगातार अपनी बात कह रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बात रख रखे हैं और मुझे लगता है बहुत गहराई में चले गए हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि कहीं उलझ गए हैं हम मंदाकिनी जी शब्द जाल में, जब आप होती हैं तो कुछ नया होता है, 1 बजे का बस इंतजार है, हम नहीं उलझेंगे। बिल्कुल मत उलझिए, बस आप हमारे साथ बिल्कुल आराम से सफर में रहिए और आरामदेह सफर का मजा लीजिए। एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी मन इतना सूख जाता है कि आंखों में आंसू होते हुए भी प्यास नहीं बुझती, भीड़ के शोर में चलते चलते अपनी ही आवाज कहीं खो जाती है, हर चेहरा मुस्कुराता दिखता है पर भीतर कोई चुपचाप टूट रहा होता है, कोई रोटी का प्यासा है, कोई मोहब्बत का, कोई बस एक अपने का, मन ढूंढता एक मीठी सी बूंद जो माथे पर हाथ रखकर कह दे मैं हूं, तुम अकेले नहीं हो, मगर अक्सर शाम ढल जाती है और वो बूंद नहीं आती। बिल्कुल सही कहा। फिर नजर उठती है आसमान की ओर जहां सूरज रोज जलता है, अपने हिस्से की आग सहकर दुनिया को उजाला देता है, तब दिल रो पड़ता है कि शायद जीवन का अर्थ यही है, अपने दर्द को सीने में रखकर भी किसी और के अंधेरे में दीपक बन जाना। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि सबसे ज्यादा रोशनी बांटते हैं जो अक्सर उनकी तन्हाइयों का हाल कोई नहीं पूछता। क्या बात कह दी आपने, मेरी आंखें नम हो गई हैं, गला रुंध गया है। सचमुच यही होता है कि जो दूसरों की चिंता और फिक्र करता है उसके लिए आप समझ गए हैं मैं क्या कहना चाहती हूं, वो आपने कह दिया है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज सुरीला सफर प्रोग्राम की पोस्ट 12 बजे के बाद आई है, रोज की तरह हम तो पोस्ट का सुबह 10 बजे से इंतजार कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को पोस्ट 10 बजे के करीब आ जाती है, आज बहुत देर कर दी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर के अंदर दर्द भरे उदासी के सॉन्ग शायद सुनने को मिलने वाले हैं। ऐसी बात नहीं, आज हम कुछ दर्शन पर बात कर रहे हैं, जिंदगी का दर्शन जिसे आप भी पसंद करते हैं, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सूर्य केवल आकाशीय पिंड नहीं है बल्कि अनंत ऊर्जा, प्रकाश, जीवन और त्याग का सकारात्मक प्रतीक है। सूर्य निरंतर गतिमान और कर्मशील है, इसे आलस्य त्याग कर निरंतर कर्म करने और ऊर्जावान बने रहने की प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। ये निराशा के काले बादलों को चीर कर रोशनी और प्रकाश रूपी किरणों को विस्तारित कर आशा का संचार कर देता है। जी बिल्कुल, आशा का संचार तो आपने भी कर दिया, इतने कम समय में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हर सफर में हमारे साथ हैं, और क्या चाहिए। आपका ये जो है ना मैं हूं ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम करता है, दवा का। और जब हमारे श्रोता हमारे साथ हैं तो रे का प्रयोग भी तो श्रोता रे बने रहना है ना। चलिए तो हमारे सवालों का जवाब दीजिए फटाफट कि रे का प्रयोग और किन किन गीतों में हुआ है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिख भेजा है, हम पढ़ेंगे जल्द ही। वहीं हमारा दूसरा सवाल है कि रे का ये काव्यात्मक रूप कब कब गीतों में इस्तेमाल किया जाता है। आप अपने हिसाब से जवाब दीजिए, आप क्या सोचते हैं गीतकार कब रे का प्रयोग करता है, जैसे मैंने कहा श्रोता रे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था दिल ने फिर याद किया। जी एल रावल के बोल थे और सोनिक ओमी का संगीत। कितना गहरा और दर्द भरा गीत था। जब हम किसी को पुकारते हैं और कोई नहीं आता तो जी जान से हम पुकार लगा देते हैं, आ जा रे आ जा रे आ जा रे, है ना। बस यही है रे का प्रयोग, जो आपको बताना है कि गीतकार ने किन किन अर्थों में किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में किसी भी शब्द का चयन नहीं करना है क्योंकि रे जैसे संबोधन परक शब्दों से ही संबंधित गीत बजाए जाएंगे, लेकिन रेगिस्तान तो अपने आप में ही सूखा होता है और इसीलिए उसे मरुस्थल कहा जाता है। ऐसे में सहारा का रेगिस्तान, थार रेगिस्तान जैसे रेगिस्तानी इलाकों का नाम सुना है, किंतु मन का रेगिस्तान प्यासा हो यह तो संभव है, लेकिन एक तो रेगिस्तान वैसे ही सूखा, दूसरे सूखे में और सूखा। बात कुछ समझ में नहीं आई भाई। जहां सूखा होता है वहां भूख प्यास के लिए धरती ही नहीं, अभी तो हर जीव ही एक बूंद के लिए तरसते हैं। लेकिन अब भी ये तो कहावत प्रचलित है कि जहां कोई नहीं वहां रेड़ का ही पेड़ प्रधान हो जाया करता है। फिर भी क्या बात है, बहुत गहरे में चले गए आप तो। देखिए, हम जब हमारा मन रेगिस्तान हो जाता है यानी सूखा हो जाता है तो हम मिठास को तरसते हैं, एक बूंद मिल जाए प्यार की, एक बूंद पानी की, एक बूंद जिसे हम कह सकते हैं, और वो बूंद हमें सुरीला सफर में मिल रही है ना। हम भले ही हमारा मन रेगिस्तान है लेकिन आपकी प्यार की बूंद, या यूं कहें कि हमारी तरफ से जो आपको प्यार मिल रहा है वो बूंद काफ़ी नहीं है क्या हमारे जीने के लिए, सोचिएगा। एक श्रोता लिखते हैं कि देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। अरे आना तो था ही, आप कहें और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। मैं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर पोस्ट है आपकी, और एक श्रोता लिखते हैं कि विशेष रूप से ये कहना है मुझे कि कल शाम को 5:30 बजे से रात 9:30 बजे तक आपने बहुत मस्त गीत सुनवाए। अच्छा, कल आप सुन रही थी, बहुत आभार और शुक्रिया आप सबकी अथक मेहनत को सलाम। बहुत शुक्रिया आपको भी कि आप भी तन मन धन लगाकर हमें सुनते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज छोटी सी इबारत और अच्छा अंदाज आपने दे दिया रे शब्द के गाने, अब ये सोचने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े शायद, पर आप हैं तो हम लोग तुक्का लगाना बेकार ही मानेंगे। आप कहाँ कहाँ से अनसुने गाने खोज खोज के लाती हैं, हम लोग अवाक रह जाते हैं। आपको पसंद है यही हमारे लिए काफी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम तो दिलचस्प पहेली जैसा लग रहा है। आपके संकेत के अनुसार आज के सभी गीतों में रे शब्द का प्रयोग हुआ है। हिंदी गीतों में रे बहुत ही आम है, इसलिए कई संभावनाएं हो सकती हैं। आपने बहुत सारे गीत लिखे हैं, मन रे तू काहे न पिए, धीर धरे ओरे पिया, रे कबीरा, नैना रे, सजन रे, चलत मुसाफिर मोहलिया रे। क्या बात है, बहुत खूब। मुझे लगता है कि आपकी इबारत का मुख्य संदेश गीतों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब मन उदास हो, जीवन में आशा की छोटी सी किरण तलाशनी हो, सूरज का उदाहरण देकर आपने यही बताया कि जीवन का सार संघर्ष के बावजूद प्रकाश बांटना है। बिल्कुल। आप लोगों के विचार लगातार हम तक पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या करें, समय का ध्यान भी हमें रखना होता है। बहुत सुंदर विचार आपने लिखे हैं, मन का रेगिस्तान भी एक दिन खिल जाएगा, सब्र की बारिश से हर जख्म सिल जाएगा, तो खुद को कमजोर समझना छोड़ दे, तेरे भीतर का सूरज भी एक दिन मिल जाएगा। क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पीतल की मोरी गागरी, दिल्ली से मोल मंगाई रे, दो बूंद पानी का। अच्छा, इस गीत में रेगिस्तान है, पानी के लिए कश्मकश भी है, प्यास भी है, और रे शब्द भी आ रहा है, तो पूर्ण रूप से ये गीत शामिल होना चाहिए। आपकी लिस्ट में गीत शामिल हो गया है, और क्या चाहिए। देखिए ना, आप कितना गहरा उतर कर इस गीत को उठा लाए हैं कहीं से। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज थोड़े समय के लिए मन उदास हो गया था क्योंकि रोजाना सुहाना सफर की, सुरीला सफर की पोस्ट 8 से 10 घंटे पहले आ जाती है। आज 12 बजे के बाद सुहाना सफर की पोस्ट आई, जो पढ़कर मन प्रफुल्लित तो हो गया। मेरा मन अगर उदास हो जाता है तो मैं हमारे घर से नजदीक लाखोटा तालाब के पार्क में खुली हवा में टहलने चला जाता हूँ। वहाँ रेडियो बजता रहता है, FM रेडियो बजता रहता है, और मैं मधुर गाने सुनता हूँ, मन को शांति मिलती है, मन प्रफुल्लित हो जाता है।

वाणिज्यराम को आपने सुना, फिल्म का नाम था गुड्डी और गुलजार साहब के बोल थे वसंत देसाई का संगीत था। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आपकी आवाज में एक खनक है, आप मुस्कुराते हुए गीतों को लेकर आती हैं तो हमें अच्छा लगता है। आज की इबारत कुछ अलग सी बड़ी प्यारी लग रही है, बस हम थोड़े बिजी हैं पर आपके साथ रहेंगे, बिल्कुल रहिएगा। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर की पोस्ट के इंतजार का मन प्यासा बन गया था, मानो दिल का रेगिस्तान बन गया था, अब पोस्ट आ गई है तो आपने कुछ गाने लिखे हैं जो हमने पूछे थे। मन रे बिल्कुल बूझ मेरा क्या नाव रे, क्या बात है, मेघा रे बदरा छाए रे, खाई है रे हमने कसम, जा जा रे वाह और बोले रे पपीहरा, तो आपकी पसंद हमसे मिल गई है। आजा रे प्यार पुकारे, ये अगला गीत अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना ही था, दिल पुकारे आ रे ओ माझी रे पंछी रे, क्या बात है ओ साथी रे तेरे बिना क्या जीना, ऐसे करके सखीरी सुन बोले पपिया उस पार। आपने बहुत सारे गीत लिखे हैं, बहुत शानदार आपने गीत मालिका तैयार की है जो रे पर आधारित है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज मेरे मन से जुड़ा हुआ टॉपिक है और आपने लिखा है कि बहुत सारे गाने हैं जो रे पर आधारित है। मेरे मन से जुड़ा टॉपिक है, आज तो रेगिस्तान कभी मन हो जाता है लेकिन जीना है तो हंस के जीना है, इसी फंडे पर मैं हमेशा जीती हूँ चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए और मैं मुश्किलों का सामना करती हूँ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मन रे तू काहे न धीर दे रे, ये गाना आपकी लिस्ट में है, बिल्कुल। एक श्रोता ने लिखा है कि वाह आज के कार्यक्रम का शीर्षक ही दिल को छू गया है, जहां आपने रे का संबोधन वाले गीत चुने हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज चंदा रे कभी तो जमी पे आ बैठेंगे बात करेंगे, बिल्कुल आपने ए हरिहरन की आवाज़ में ये गीत पसंद किया है, नई फिल्म से गीत है, बहुत सुंदर गीत आपने चुना है चंदा रे चंदा रे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं ओ माझी रे अपना किनारा नदिया करे धरा, अच्छा ओ साथी रे तेरे बिना क्या जीना, चंदा रे दिल से रे दिल से रे, बिल्कुल सही आपका चुनाव भी बहुत सही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सूरज रे जलते रहना चंदा रे मेरी मोरी पतियां ले जा, वाह जा जा रे जा बालम वाह, ओ बसंती पवन पागल ना जा रे ना जा, जरा सा झूम लू मैं ना रे बाबा ना, क्या बात है बहुत नया गाना आपने चुना है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैम आपकी स्माइल कितनी प्यारी है, अरे वाह आपको दिख रही हूँ मैं हंसते हुए शुक्रिया मेहरबानी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ओ मेरे सोना रे ये गाना तो मेरी लिस्ट में नहीं था, क्यों भाई क्यों नहीं था, ये गाना तो बहुत ही पॉपुलर है और सभी को पसंद आता है। चलिए कोई बात नहीं, आपकी लिस्ट में जो गाने थे वो तो लिखिए जनाब। एक श्रोता लिखते हैं माई री चंदा रे आओ रे ओ रे पिया, ये गाने नदिया चले चले रे धारा, रात का समा झूमे चंद्रमा मन मेरा नाचे रे, वाह क्या बात है कहाँ पकड़ा है आपने रे को, बहुत सुंदर। और वहीं और भी श्रोताओं ने बहुत सारी चीज़ें लिखी है, रे मन सुरमेगा ओ रे ताल मिले नदी के जल में, यह तो हमने भी गीत चुना था फिर हमने इसे हटाया। पिया तो से नैना लागे रे, क्या बात है रे माँ तेरे मेरे नैना सावन भादो। और वहीं आप लिखते हैं तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के रे, अच्छा इसमें भी आप सुन रहे हैं, और यानी आज आपने रे जिनमें रे है और मन की प्यास उदासी उम्मीद की बात है, मंदाकिनी जी आज आपने वो गाने सुनकर हमें बहुत आनंदित किया है, ऐसा हमारे श्रोता लिख रहे हैं। अब आपने हमारे पहले सवाल का जवाब तो दे दिया, और भी बहुत सारे श्रोता अपनी पसंद के गीत लिख रहे हैं जहां रे का प्रयोग हुआ है, लेकिन आपने इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया कि रे का ये काव्यात्मक रूप कब कब किन किन गीतों में इस्तेमाल किया गया है। गीतों का नाम तो आपने लिख दिया है लेकिन कब इस्तेमाल किया गया, क्यों इस्तेमाल किया गया, इसका छोटा सा बताइए ना बात। अगला गीत हमने चुना है सलिल चौधरी के संगीत निर्देशन में, शैलेंद्र का लिखा हुआ, आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है पूनम की रात। साथी रे सुनिए आप। साथी रे ये रे हमारी जान ले लेता है ना,

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आपको हार्दिक नमस्कार और अक्षर रे का जो आज स्पेशल प्रोग्राम है वो बहुत ही शानदार लग रहा है। आपने फिल्म आ का गीत आजा रे अब मेरा दिल पुकारा रो रो के गम भी हारा ये गीत पसंद किया है और लिखा है कि इसमें रे का इस्तेमाल बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, ये गाना भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर नया गाना है। आप एक श्रोता हमारे सवाल का जवाब देते हैं दूसरे सवाल का कि रे शब्द का काव्यात्मक आविष्करण खुशी उदासी आशा निराशा चैतन्य वैराग्य अभिमान प्यार स्नेह के अनुभव में अपने आप बखूबी हो जाता है गीतों के माध्यम से, गीतकारों के माध्यम से। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेघारे मेघारे ये गाना आ जाए तो इतनी गर्मी में थोड़ी ठंडक मिल जाए। हाँ, आज तो आपको ये गाना नहीं मिलेगा लेकिन हो सकता है अगले किसी और कार्यक्रम में हम आपके लिए गाना लेकर आए। तो हमारे दूसरे सवाल का जवाब भी आपने दिया कि रे का ये काव्यात्मक रूप कब कब गीतों में इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि जब कोई गीतकार किसी अमूर्त भावना जैसे कि मन है, सूरज है, चांद है को व्यक्ति के रूप में अपने खास प्रेमी के रूप में, महबूब के रूप में, अपनेपन के रूप में देखता है, तब वो रे लगाकर उसे संबोधित करता है ताकि वो जो बात, वो जो प्रार्थना, वो जो इल्तजा, वो जो प्रेम की बौछार, वो जो भी संदेश देना चाहता है वो रे के माध्यम से और मजबूत रूप से उस व्यक्ति तक, उस इंसान तक पहुंच जाता है। जैसे सूरज रे जलते रहना है ना, रे का प्रयोग। तो हमारे दूसरे सवाल का जवाब भी आपने बहुत अच्छा दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए हम लेकर आए हैं रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में अनजान का लिखा हुआ, जसपाल सिंह की आवाज, फिल्म का नाम श्याम तेरे कितने नाम।

0: से मन का बंधन सच्चा, मन से मन का बंधन सच्चा, बाकी बंधन झूठे कभी अपना साथ न छू।
1: जी हाँ, कभी अपना साथ न छूटे। प्यारे श्रोताओं रे, बने रहना इस सुरीले सफर में हमारे साथ, कभी अपना साथ न छूटे। लेकिन अब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है इस सफर को और लंबा करने का, तो बस यहीं थम जाते हैं इस कार्यक्रम से, यानी सुरीला सफर से। अब मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत, फिर मिलूंगी किसी और कार्यक्रम में। नमस्कार।

दोस्तों, जिस तरह हमारा जनजीवन पर्यावरण से प्रभावित होता है, उसी तरह हमारे कार्यकलापों से पर्यावरण प्रभावित होता है। लकड़ी के लिए जब हम पेड़ काटते हैं तो भूल जाते हैं कि धीरे धीरे पूरे जंगल समाप्त हो रहे हैं। जंगल समाप्त होने से वन्य प्राणी कम हो रहे हैं, जलाशय सूख रहे हैं, कुछ जंगली जीवों की तो पूरी की पूरी प्रजाति ही नष्ट हो रही है। गाँव के भीतर कई शहरों में भी वन्य प्राणियों के प्रवेश का ये बहुत बड़ा कारण है। इसलिए सबसे पहले पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई जाए, नए नए पौधे लगाए जाएं।

दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, थल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण शामिल हैं। नदियों में गंदगी फेंकना, घर के कचरे को खुले में फेंकना, तेज आवाज में लाउडस्पीकर का प्रयोग करना, कारखानों का धुआं, इसके अलावा बहुत सारा ई कचरा, ये सब जिम्मेदार हैं पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने में। आइए त्रिवेणी तट पर विचार करें, जितना संभव हो प्रदूषण न फैलाएं। पर्यावरण को बचाने के लिए हरियाली के बीज रोपें। लहलहाएंगे जब आपके रोपे पेड़ पौधे, तो आपका मन भी खुशियों से झूम उठेगा।

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिल्का मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद

0: के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
0: भारत के 3 दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewsOn AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास की एक नई युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
5: मेट्रो के लिए 60 न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष JP नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जलटमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
6: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारायकाल में अगले दो दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
7: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने IPL 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति हैं और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति हैं। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता, बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ, आवाज लता मंगेशकर की, और ये फिल्म है बारिश।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम है चंगेज खां, आवाज लता मंगेशकर की, गीत के बोल कमर जलालाबादी ने लिखे हैं और धुन बनाई है हंसराज बहल ने।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था चंगेज खां। आइए सुनते हैं एस एन त्रिपाठी के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की बोल। आवाजें हैं गीता दत्त और मन्ना डे की। फिल्म का नाम है जन्म जन्म के फेरे।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं। क्यों? क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
2: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
2: खत लिख दे, दिल उनको दे आए।
3: यह आवाज़ आशा भोंसले की और फिल्म का नाम है मेरा सलाम। शिवान रिज़वी की रचना है और हाफिज खान का संगीत।

किशोर कुमार की आवाज में हम आपको फिल्म पेइंग गेस्ट का गीत सुनवा रहे हैं। शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी हैं और संगीतकार सचिन देव बर्मन हैं।

0: तुम्हारा नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा।
1: और आइए अब सुनते हैं दत्ताराम का संगीत, हसरत जयपुरी की रचना, लता मंगेशकर और मन्ना डे की युगल स्वर। फिल्म का नाम है कैदी नंबर 911।

लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है हिल स्टेशन, गायिका हैं लता मंगेशकर, बोल हैं SH बिहारी के और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

0: मनचाही गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें। इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।

0: गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
0: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
1: तो प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मंचा है गीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हमें खत लिखा है, आप हैं अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर और तन्वी गौहर। ये खत हमें मिला है अमरावती कल्याण नगर से रमेश किल्लेकर, शकुंतला किल्लेकर, आराध्या किल्लेकर और माही किल्लेकर का। और ये खत हरियाणा से सेक्टर 18 जगाधरी से लिखा है विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी ने। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म महबूब की मेहंदी का गीत। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं। शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा। ये खत हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय प्रसिद्धि प्रतिभा गोंडाने का। और कोटवा नारायणपुर से आप हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। आप सभी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत। किशोर कुमार की आवाज़ है, फिल्म का नाम है अभिमान, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत SD बर्मन का।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं आप सबकी पसंद पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत। आइए सुनते हैं अगला गाना। फिल्म का नाम है अमरदीप। गाने वाले कलाकार मोहम्मद रफी और आशा भोंसले। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीत दिया है सी रामचंद्र ने। सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम, सावित्री साहू ने और दत्तरेंगी भाटापारा से ये हैं हीरामणि वर्मा। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये दो गाना।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे हैं। वरुण जौलका से महेंद्र सरकते, विजया सरकते, मिलिंद सरकते, और ये खत है आपने लिखा है गुजरात से नूर मोहम्मद लखाणी, जुबैदा खातून लखाणी, विहान लखाणी ने। भामेश्वर से सुनना चाहते हैं सिराज, हिना, रुबीना और इनके परिवार वाले। इसी गाने को सुनना चाहते हैं महेंद्र सरकते और उनके परिवार वाले। आप सभी सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म कटी पतंग का गीत। गीत रचना आनंद बख्शी की है और तर्ज राहुल देव बर्मन की।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था कटी पतंग। और अब आप सुनना चाहते हैं रवि के संगीत निर्देशन में हसन कमाल का लिखा गीत, आवाज सलमा आगा की और फिल्म का नाम निकाहा। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे हैं। ककराला बदायूं से डॉक्टर मसरूर खान, मुसर्रफ राज खान, अमजद अंसारी, दीपक वाल्मीकि और इनके परिवार वाले इसी गाने को सुनना चाहते हैं। शेगांव बुलडाणा महाराष्ट्र से संतोष एस काले, तेजस एस काले, लोकेश एस काले और इनके परिवार वाले। ये खत हमें मिला है अंबेडकर सागर मध्य प्रदेश से राम सखी परमानंद, सौरभ गौरव, किशोरी बोस, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू, टुनटुन और इनके परिवार वालों का। और आप हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफाबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, मोताला से कुमार प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, कलड़ा रिसोर्ट से आप हैं सानवी सरवत और इनके परिवार वाले। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत, आवाज़ सलमा आगा की और ये फिल्म है निकाह।

0: रवि के संगीत निर्देशन में अभी आपने हसल कमाल का लिखा ये गीत सुना। आवाज सलमा आगा की थी और फिल्म का नाम था निकाह। इस गाने के साथ ही आज का फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत अब समाप्त होता है।
1: मनचाहे गीत।
2: मनचाहेगी
0: और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक गुलाब की पंखुड़ियां। लेखक सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब। आज आप इस नाटक का पहला भाग सुनेंगे।
1: नाचो।
2: नहीं, नहीं।
1: मैं कहता हूं तुम्हें आज भरे दरबार में नाचना होगा।
2: खुदा के लिए
1: कोई रहम नहीं, नाचो।
2: नहीं, नहीं, नहीं। इन मुगल शहजादियों से भला ये कैसे हो सकता कि ये आज लाल किले के इस भरे दरबार में नाचे।
1: अब दिल्ली के तख्त पर मेरा कब्जा है, बादशाह मैं हूं। तुम सब मुगल शहजादियों और बेगमात को आज मेरे सामने भरे दरबार में नाचना होगा।
2: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।
1: मैं कहता हूं नाचो।
2: नहीं।
1: गुलाम, इनके कोड़े लगाओ और भरे दरबार में नचाओ।
3: ये गुलाम कादिर रोहेला का मुगल शहजादियों और बेगमात पर कितना जुल्म है।
4: हाँ।
3: आलम शाह सानी ने इन्हें पाला पोसा और ये उसी की आंखें फोड़कर आज हरम की बेगमात को दरबार में नचा रहा है।
4: ये सब मंसूर अली की तगा और अंग्रेजों की साजिश से हुआ है।
3: अंग्रेज जब हिंदुस्तान को हड़पना चाहते हैं।
4: नहीं, जब तक हिंदू मुस्लिम सिख और मराठे बादशाह के साथ हैं ऐसा नहीं होगा।
3: तुम ठीक कहते हो, आज ये सब गुलाब की ऐसी पंखुड़ियां हैं जो गुलाब के इस फूल की हिफाजत के लिए मैदान जंग में आ गए हैं।
4: हाँ, ये गुलाब की पंखुड़ियां नहीं बल्कि तलवार की धार है जो विदेशी ताकत को काट कर रख देंगी।

0: गुल से लिपटी हुई तितली को गिराकर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा।
1: मंजूर अली
2: जी। आलम पना,
1: आज कितने दिन हो गए इन अंग्रेजों से लोहा लेते, लेकिन ये लोग भी गजब के चालबाज हैं। बिहार पर दोबारा हमला भी किया, लेकिन उस जनरल कार्निक ने फिर हमारे कुछ लोगों को अपनी तरफ मिलाकर हमें मात दे दी। इतने फर्माबरदार बहादुरों के होते हुए भी कुछ गद्दार लोग इन गोरों के जाल में फंस ही जाते हैं और बाई से शिकस्त बन जाते हैं।
2: आलम पना, वाकई इनकी जासूसी भी बेमिसाल है। इस पर भी ताज्जुब है कि ये लोग फतेहयाब होने के बाद भी हुजूर के साये में ही पनाह लेते हैं, खुद को जहां पनाह की रियाया तस्लीम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपना जाल फैलाने से बाज नहीं आते। अब यही कार्निक
1: कैसा भीगी बिल्ली बनकर हमारे हुजूर में पेश हुआ, जमी बोस करता हुआ कंपनी की तरफ से नजर पेश की और शाही फौज के खिलाफ जंग करने के लिए मुआफी की दरख्वास्त की,
2: और हुजूरे वाला ने उसे मुआफ भी कर दिया। लेकिन इनकी खास मंशा सिर्फ यही थी कि आलम पनाह उनके बनाए बंगाल के नवाब मीर कासिम की शाही फरमान के जरिए तरक्की फरमा दे और इनके इरादों पर नकाब पड़ा रहे।
1: हाँ मंजूर अली, लेकिन हमने भी इनके साथ पटना जाना इसलिए कबूल कर लिया था कि इन लोगों के अंदरूनी हालात व ताकत का सही अंदाजा हो सके, और इसमें हमें कामयाबी भी हासिल हुई।
2: जी हाँ आलम परवर, आपकी बार पूरी तैयारी के साथ इन लोगों को शिकस्त फाश देनी चाहिए।
1: इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, अब इनकी हरकतों से तंग आ चुके हैं हम।
2: जी हाँ जहां पना, हमारे जासूस बराबर ऐसी खबरें ला रहे हैं।
1: नवाब शुजा के पास मीर कासिम ने खत भी भेजा है कि शायद उसे जल्द ही बंगाल छोड़ना पड़े, क्योंकि अंग्रेज कंपनी उसे हटाकर मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बनाने की फिराक में है।
2: जहां पना, अगर ऐसा हुआ तो हमारी ताकत और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मीर कासिम की सिपाह भी हमारे साथ हो लेगी।
1: ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या सूरत बनती है, लेकिन बरसात गुजरने से पेशतर हमला करना मुमकिन नहीं होगा। हाँ मंजूर
2: जी। आलम पना,
1: उस अंग्रेज लड़की के बारे में कुछ?
2: जी आली मकाम, उसी के बारे में हुजूर से गुजारिश करने के लिए आया था।
1: अंग्रेजी रक्स और मुसीकी तो हमें कतई पसंद नहीं आई, मगर वो कमसिन अंग्रेज लड़की, उसे हमारे रूबरू पेश किया जाए।
2: जो हुक्म आली जा।
1: तस्लीमात, क्या नाम है तुम्हारा?
3: मेरा नाम एमिली है, योर मैजिस्टी।
1: ये क्या अल्फाज बोलती हो तुम?
3: जी, योर मैजिस्टी।
1: हाँ, ये हमें अच्छा नहीं लगता। तुम हमें जहां पनाह या आलम पनाह कहो।
3: आलम पनाह, आलम पनाह।
1: बिल्कुल ठीक, तुम तो हिंदुस्तानी जुबान अच्छी तरह जानती हो।
3: जी जी हाँ, जान पाना, यहाँ बचपन से रही हूँ। तो आलम पनाह, आपने हमें पसंद किया या नहीं?
1: जरूर जरूर, हमने तुम्हें बहुत पसंद किया है।
3: ओ, हमारा अच्छा

0: यहाँ बचपन से रही हूँ। तो एलम पनाह, आपने हमें पसंद किया या नहीं?
1: जरूर जरूर, हमने तुम्हें बहुत पसंद किया है।
0: ओ, हमारा अच्छा

0: पता नहीं करता।
1: तो तुम कभी कभी इधर उधर घूम सकती हो, यहाँ जब तक चाहो रह सकती हो।
0: ओ जय पाना, आप कितनी अच्छा है, कितना खूबसूरत है आप।
1: हाँ, हमें भी तुम अच्छी लगती हो। तुम जब चाहो आ जा सकती हो, लेकिन सिर्फ हमें बताकर।
0: ओ शुक्रिया आलिम पिना, आप कितना अच्छा है, कितना ग्रेट है, बहुत बहुत बड़ा दिल है आपका।
1: नवाब शुजा, अब तो नवाब मीर कासिम अली भी हमारे साथ शरीक हो गए हैं।
2: जी हाँ जहांपनाह, इन चालबाज अंग्रेजों से किसी भी नवाब की नहीं पट सकती। ये तो बंगाल में भी ऐसा नवाब चाहते हैं जो इनके इशारों पे नाचे।
1: अब मीर जाफर को फिर मसनद नशी कर दिया और कासिम को बंगाल से खदेड़ दिया।
2: जी हाँ आलमपनाह, अंग्रेज तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर पूरी तौर से हावी हो जाना चाहते हैं।
1: यही नहीं शुजा, इनके मंसूबे तो पूरे हिंद को हड़प लेने के मालूम होते हैं, लेकिन लेकिन हम इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी फौज में गोसाई हिम्मत बहादुर और उमराव गोसाई तो हैं ही, इनायत खान रोहिला भी शामिल हो गया है, मीर कासिम मई सिपाही आन पहुंचा है।
2: जी हां जहांपनाह, और बनारस के राजा बलवंत सिंह भी मैं अपनी पलटन के हमारी इमदाद के लिए आ गए हैं। जर्मन कप्तान सैमरे भी अपने तोपखाने को एकदम मुस्तैदी से तैयार कर रहा है।
1: नवाब
2: जहांपनाह,
1: अगरचे शिकस्त दर शिकस्त होती रही है, ताहम हमारे फर्माबरदार सिपहदारान का अभी भी हौसला बुलंद है। हमारी सिपह वाकई दुनिया के लिए एक मिसाल है। देखो देखो, जिस तरह ये गुलाब का फूल पंखुड़ियों की वजह से इतना दिलकश बना है, उसी तरह हमारी फौजों में भी हर कौम और मजहब के बहादुर मिलकर एक कुल की शक्ल में काम करते हैं। इसी पर हिंदुस्तान को फख्र है।
2: जी हां आली मकाम, इसमें कोई शक नहीं है।
1: पंखुड़ियां गिरती हैं, मुरझाती हैं, लेकिन नए गुल और भी खूबसूरती से जहूर में आते हैं। चंद गद्दार मुरझाई पंखुड़ियों की तरह भटक जाते हैं, यही बदनसीबी है। इसके बावजूद कई राजा, नवाब और अमीर नई पंखुड़ियों की तरह हमारी इमदाद के लिए आन पहुंचे हैं। इस दफा अंग्रेजों पर पूरी ताकत से हमला करना है, ताकि हिंदुस्तान से इनका नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाए।
2: जी हां आलमपनाह, हुजूर के इकबाल से इस दफा हमारे जासूस भी बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। नवाब मुनरुद्दौला का जासूसी दस्ता खबर लाया है कि मेजर हेक्टर मुनरो की फौज में कुल 6-7 हजार सिपाही हैं और सिर्फ 20 तोपें।
1: फिर तो हमारी इतनी बड़ी फौज और 100 से ज्यादा तोपों के मुकाबले में उनका ठहर पाना नामुमकिन है। हम जल्द से जल्द इन सरकशों को सबक सिखाना चाहते हैं, हिंदुस्तान से इनका नामो निशान मिटाना चाहते हैं।
2: जी अली कद्र, हमें कप्तान सैमरे ने बताया है कि हमारी 133 तोपें बिल्कुल सही हालत में हैं, और उधर मीर कासिम और उमराव गोसाई के जासूसों ने भी काबिले तारीफ इंतजाम किया है। उन्होंने अंग्रेजी फौज में कुछ ऐसे लोग छोड़ रखे हैं जो ऐन वक्त पर वहां के अफसरों और सिपाहियों को हमारी तरफ मिल जाने को उकसा रहे हैं।
1: वाह, बहुत खूब, कुछ कामयाबी हासिल हुई।
2: जी हां सरकार, हमें पुख्ता खबर मिली है कि करीब 70-80 छोटे बड़े अफसर और नायक और करीब 1000 सिपाहियों की पलटन ऐन वक्त पर हमसे आन मिलेंगी।
1: वाह वाह, ये तो अहम खुशखबरी है। अब हम शर्तिया फतेयाब होंगे, इन 7-7 अंग्रेजों को मुल्क से निकाल बाहर करेंगे।
2: बेशक आलमपनाह, बेशक इस बार हम यकीनन कामयाब होंगे और इन 7-7 अंग्रेजों को मुल्क से बाहर निकाल देंगे। लेकिन जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो एक अहम मामला और हुजूर के इल्म में?
1: जरूर।

0: बाप बोलो बोलो।
1: अली कत्र, वो अंग्रेज लड़की जिसको हुजूर ने पनाह दी थी, उसका रवैया इन दिनों कुछ अजीब सा नजर आ रहा है।
0: तुम्हारा मतलब एमली से है? क्या हुआ?
1: हुजूर, वो शुरू के कुछ महीनों में तो काफी संजीदगी और बुर्दवारी से,
0: और अब क्या हुआ उसको?
1: हुजूर आला, पिछले एक माह से उसकी हरकतें काफी हैरत अंगेज हो चली हैं। वो शाही फौज के खेमों में मुख्तलिफ सिपादारान हुक्काम वगैरह से अक्सर बड़ी बेतकल्लुफी से मिलती रहती है।
0: नवाब शुजा, वो भोली लड़की जरा चुलबुली जरूर है, फिर इन अंग्रेजों की तहजीब में औरतों को काफी आजादी है।
1: वो तो वजह है जहां पना, लेकिन हाल ही में मेरे कुछ खास हरकारों ने खबर दी है कि ये खेमों से दूर जाकर अंग्रेज घुड़सवारों से भी गुफ्तगू करने लगी है।
0: ये तो बहुत संगीन मामला है।
1: जी हां अली मकाम, जब से हम लोग बक्सर के नजदीक पहुंचे हैं, उसकी सरगर्मियां और भी बढ़ गई हैं।
0: इस वक्त वो कहां है?
1: वो इस वक्त शाही हरम के खेमे में है, यहां से तकरीबन 4-5 कोस।
0: उफ नवाब शुजा, इधर सामने मेजर मुनरो अंग्रेजी सिपह के साथ आगे बढ़ रहा है, उधर ये लड़की न जाने क्या क्या गुल खिला रही होगी।
1: आलमपना, मैंने ख्वाजा सराओं और कुछ चुनिंदा नायकों को ताकीद कर दी है कि उस लड़की पे कड़ी नजर रखें, मगर हुजूर पता नहीं कि इससे पेशतर क्या किया हो उसने।
0: मगर हमें इसकी खबर पहले क्यों नहीं दी गई?
1: जब तक कुछ पुख्ता सबूत न मिले, आलम पनाह को जहमत देना मुनासिब न होता, और इसके अलावा हुजूर इस जगह के लिए कूच भी कर चुके थे।
0: शुजा, ऐसे मशकूक शख्स को फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, बाद तफ्तीश असलियत का पता लग जाता।
1: हुजूर, मैंने आपके खौफ के मारे ये जुर्रत करना मुनासिब न समझा।
2: हुजूर, बेगम साहिबा बारियाबी की इजाजत चाहती हैं।
0: कौन? सकीना बेगम? यहां? फौरन भेजो।
2: जी जहां पना।
3: आलम पना, गुस्ताखी मुआफ फरमाए।
0: हाँ हाँ, बोलो बेगम, यहाँ क्यों कर आना हुआ हरम से मैदान जंग में?
3: आलीजा, मैंने एमिली को गिरफ्तार करने की जुर्रत की है। वो कुछ गोरे घुड़सवारों से गुफ्तगू कर रही थी, कुछ कागजात भी।
0: उफ सकीना, घुड़सवारों को भी गिरफ्तार कराया या नहीं?
3: पहले सिर्फ दो थे, भागते भागते एक को गिरफ्तार कर लिया, दूसरा कुछ कागजात लेकर भाग रहा था तो हमारे जवानों ने उसका पीछा किया, मगर आगे जाकर 20-25 गोरे सवार और मिले और बंदूकों के फायर करते हुए सब भाग निकले। वक्त की नजाकत देखकर मैं खुद चली आई।
0: दूसरा सवार पकड़ा नहीं जा सका?
3: जी नहीं आलमपना।
0: वो कमीनी कहाँ है?
3: जी, बराबर वाले खेमे में ख्वाजा सरा मंजूर अली की हिरासत में है।
0: नवाब शुजाउद्दौला को बुलाओ।
1: जहांपना, जहांपना ने याद फरमाया।
0: हाँ नवाब शुजा, तुम्हारा शुबा ठीक मालूम होता है। उस बदसाद को सकीना बेगम ने गिरफ्तार तो कर लिया है, एक आध कागज भी बरामद हुआ है, मगर दो में से एक घुड़सवार भाग निकला, कुछ कागजात भी ले भागा। अब उस सराम खोर एमिली को कोड़े मार मार कर कुल तफसील मालूम करो और हमें बताओ। बराबर के खेमे में है वो बदसाद।
1: जी आलीजा, हुक्म की तामील होगी।
0: बेगम, तुम बहुत थक गई हो, आराम कर लो। इस मामले की तहकीकात हो जाए तो अपने खेमे की तरफ वापस चली जाना, यहां ठहरना खतरे से खाली नहीं।
3: जी नहीं आलमपना, मुझे आराम की कतई जरूरत नहीं। फिर जहां हुजूर का कयाम हो, वहां मुझे भला क्या खतरा हो सकता है?
0: नहीं बेगम, तुम्हारी जल्द से जल्द वापसी ही लाजिम है।
3: जैसी आलमपना की मर्जी।
1: आलमपना, मैंने तहकीकात कर ली है, अफसोस है कि बहुत खौफनाक सूरत बन गई है। एमिली ने बामुश्किल तमाम कबूल किया कि वो अंग्रेजी जासूस है। उस कागज में अंग्रेजी सिपाही के कुछ लोगों के नाम हैं, जो हमसे मिल जाने के लिए तैयार थे, मगर इससे पेशतर वो हजारों नामों की फेरिश्ते मेजर मुनरो को भेज चुकी है। कोड़ों के मार से वो लहूलुहान हो गई, तब कहीं उसने जाकर
0: उस कमबख्त कमीनी को हाथियों से कुचलवा दो।
4: शुजा,
0: शुजा, ये हाँ। ये क्या है?
1: ओह, जहां पना, ये तो अंग्रेजों की तोपें। पता नहीं एक एक धमाके में कितने लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा होगा।
0: उफ नवाब, तो क्या हमारे जासूसों की कुल मेहनत बेकार गई? क्या वो हजारों को मार डालेंगे?
1: हुजूर, मालूम तो ऐसा ही होता है। धमाके पे धमाके हो रहे हैं, हजारों की मौत के पैगाम हैं ये धमाके। हुजूर, हमारे सिपाह में न जाने कौन कौन गद्दारी पे आमादा होगा।
0: शुजा, फिर भी हमें पस्त हिम्मत नहीं होना चाहिए। सकीना बेगम की वापसी का इंतजाम कर दो और फौरन जंग के लिए कूच का ऐलान किया जाए, और उससे पेशतर उस अंग्रेज जादी को हाथियों से कुचलवा दिया जाए।

0: नवाब मुनीरुद्दौला, समझ में नहीं आता कि अभी भी हमारी गर्दिश और दुश्वारियों का दौर क्यों खत्म नहीं होता।
1: आलमपना, वक्त सबका बदलता है।
0: बक्सर की शिकस्त का कुछ और जायजा मिला?
1: जी हाँ, वही तफसील अर्ज करना चाहता था। आलमपना, हमारे करीब 2000 बहादुर मारे गए। हमारी तमाम तोपों पर मुनरों ने कब्जा कर लिया। सिपाहियों में मुर्तजा खां, मियाँ ईसा, यासीन वगैरह मारे गए।
0: ओह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ।
1: नवाब शुजाउद्दौला पूरे खानदान के साथ बरेली की तरफ चले गए हैं और नवाब मीर कासिम रोहेलखंड, हमारी बहुत सी सिपाह घायल हो गई है और बाकी भाग निकली है।
0: नवाब मुनीर, इस बक्सर की जंग ने तो हमारे हौसले पस्त कर दिए। अब कोई सूरत नहीं अंग्रेजों से लोहा लेने की। इतनी मुकम्मल तैयारी के बाद ऐसी शिकस्त फाश। सुना है कप्तान सेमरे भी बरेली की तरफ भाग गया है।
1: जी हाँ अली मकाम, सबको अपनी अपनी जान की पड़ी है। अवध का इंतजाम तो अंग्रेज कप्तानों ने संभाल लिया है, वो भी बड़े जुल्म ढा रहे हैं रियाया पर।
0: तो फिर हमारी हालत बहुत ही नाजुक है इस वक्त। ताहम ये समझ में नहीं आता कि जनरल कार्निक ने हमसे मुलाकात की दरख्वास्त क्यों की है। अंग्रेज कंपनी का गवर्नर हमसे सुलह चाहता है। हमने उसे मुलाकात के लिए इजाजत का परवाना भिजवा दिया है।
1: सुना है हुजूरे वाला, ये अंग्रेज नवाब शुजाउद्दौला से भी सुलह की कोशिश कर रहा है।
0: अंग्रेजों की चालबाजियां समझ में नहीं आती नवाब मुनीर।
1: बेशक आलीजा,

0: जयपना, मुझे आपकी राया इंग्लिश कंपनी के गवर्नर क्लाइव साहब ने आपके हुजूर में पेश होने का हुक्म दिया है। हम आपसे सुलह करना चाहते हैं, ये नजर कबूल करें।
1: शुक्रिया। अंग्रेज कंपनी क्या उम्मीद रखती है हमसे?
0: उम्मीद? नहीं कुछ नहीं, सिर्फ हुजूर को इलाहाबाद और खोड़ा के जिले देना चाहती है। जयपनाह का हिफाजत करना हमारा काम होगा और आपकी वफादार अंग्रेज रियाय की तरफ से एक अफसर आपके पास रहेगा।
1: अफसर? वो अफसर क्या करेगा?
0: वो आपका खिदमत करेगा। अगर कोई दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाएगा तो अंग्रेजी फौज बुला लेगा और योर मैजेस्टी का मदद करेगा।
1: अच्छा अच्छा, इसके बदले में हमारी वफादार रियाय अंग्रेज कंपनी क्या चाहती है?
0: योर मैजेस्टी कुछ नहीं, बस एक फरमान, ओनली वन, शाही फरमान।
1: फरमान? कैसा फरमान?
0: जापना, बंगाल की दीवानी का फरमान।
1: बंगाल की दीवानी का फरमान? लेकिन बंगाल में तो तुमने मीर जाफर को नवाब बनाया है, फिर हमारे फरमान से क्या मकसद है?
0: योर मैजेस्टी, नवाब और शहंशाह में जमीन आसमान का फर्क होता है। सारा मुल्क का असली मालिक तो आप ही है। आपका फरमान हमारे लिए बहुत इज्जत का बाइस होगा। इसके लिए हुजूर का रियाया कंपनी हुजूर को 26 लाख रुपया सालाना खिराज अदा करती रहेगी।
1: लेकिन अंग्रेज कंपनी हमें दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीनी में भी मदद करेगी या नहीं?
0: जरूर योर मैजेस्टी, लॉर्ड क्लाइव साहब ने भी यही कहला के भेजा है, वो जरूर मदद करेंगे।
1: ठीक है ठीक है, हमें मंजूर है। तुम अपनी तरफ से दस्तावेज तैयार कर लो, हम भी दीवानी का फरमान बहुत जल्द जारी कर देंगे।
0: शुक्रिया योर मैजेस्टी, खुल हमको इजाजत बख्शे।
1: इजाजत दी जाती है।

0: लो नवाब मुनीर, ये क्लाइव का जवाब भी आ गया। वो हमें दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीनी में मदद करने के वायदे से फिर गया है। यही तो एक अहम शर्त थी सुलह की, आज 5 साल बाद भी पूरी नहीं हुई।
1: जी आलमपना, इधर इस अंग्रेज कमांडर बार करके दिनों दिन दिमाग बिगड़ते जा रहे हैं। हमारे मुलाजिमों से बदसलूकी से पेश आता है, कहता है हम तुम्हारे बादशाह को 26 लाख रुपए वजीफा देते हैं।
0: अच्छा कमांडर तैनात किया हमारी हिफाजत को, एहसान फरामोशों ने 26 लाख सालाना देकर हमें खरीद लिया है। बंगाल की दीवानी से करोड़ों रुपए हासिल कर रहे हैं, उसका कोई एहसान नहीं।
1: हुजूर, वो कहता है कि हमारी इजाजत के बगैर कोई शाही मुलाजिम इलाहाबाद से बाहर नहीं जाएगा।
0: गोया हम शहनशाह नहीं, इस कमीने कमांडर के कैदी हो गए।
1: लेकिन जब आलम पना के हुजूर में पेश होता है तो वो मेमना बन जाता है, जमी बोस करेगा, योर मैजेस्टी की रट लगाया जाता है।
0: मगर ये कमबख्त मेमने की खाल में भेड़िया है, भेड़िया।
1: अलीजा, अब तो मराठों के जवाब का इंतजार है। सैफुद्दीन खां को कई महीने हो गए माधोजी सिंधिया के पास गए हुए।
0: देखो क्या होता है, अब तो हमें जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचने की तमन्ना है। साबता खां किले पर काबिज है और उसका रवैया दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है।
1: जी आली कदर, वो
2: आलम पना, सैफुद्दीन ने पैगाम भिजवाया है कि मराठों ने हुजूर के शरीक दौलत होकर मदद की रजामंदी दे दी है। सिंधिया की फौजें रवाना हो चुकी हैं और यहाँ पहुँचने ही वाली हैं। उन्हीं की मदद से सैफुद्दीन मोहम्मद खान ने दिल्ली पहुँचकर जामा मस्जिद से हुजूर के शहंशाह होने का ऐलान भी कर दिया है।
0: वाह वाह वाह, ये तो अहम खुशखबरी है। मंजूर, सब सरदारान और उमरा से कह दो कि कूच की तैयारी करें।

0: जहां पना अब दिल्ली दूर नहीं।
1: ये कौन सा मुकाम है मंजूर?
0: आलम पना, ये मौजा धनौली है। यहां से शाहदरा करीब 4 मील है।
1: ओहो, तब तो दिल्ली आन पहुंचे। अरे, ये इतनी शानो शौकत से किसका जुलूस चला आता है? मंजूर, जरा पता लगाओ।
0: आलम पना, ये आली जा वली अहद शाहजादे और बुजुर्ग बेगमे हुजूर के इस्तकबाल को आते हैं। जाब्ता खान हुजूर के खौफ से किला छोड़कर भाग गया है और उसकी सिपह भी सिर पर पैर रखकर भाग रही है।
1: वाह वाह, बहुत खूब।
0: और आलम पना, सारा इंतजाम मुकम्मल है। अब हुजूर का जुलूस शाहदरा से दिल्ली दरवाजे होकर लाल किले में दाखिल होगा।
1: लगता है मंजूर, आज हमारी मुरादें पूरी हुई और उम्मीदें भर आई।
0: हुजूर, वली अहद ने बताया है कि जाब्ता खां फौजें जमा कर रहा है।
1: वो है कहां? कहां तैयारी कर रहा है?
0: जी, वो नजीबाबाद है।
1: ठीक है, दिल्ली में तख्त नशीनी के फौरन बाद हम उस पर चढ़ाई करेंगे और बगावत की सजा देंगे। हमने माधोजी सिंधिया से भी मशवरा कर लिया है, वो भी हमें पूरी इमदाद देने को रजामंद है।

गुलाब की पंखुड़ियाँ। अभी आप सुरेंद्र कांत के लिखे इस नाटक का पहला भाग सुन रहे थे। निर्देशक मुमताज शकेब। आपको बता दें कि इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे के फिल्मी गपशप। आज सुनिए पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया, जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।
3: होया था नस नस में अब ये जग गया, लहू मुलग गया।
2: डांस के स्टेज ने टेरेंस के अंदर वो ऊर्जा भर दी जो आज भी उन्हें हर वक्त म्यूजिक की बीट्स पर

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं। तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हैं, करियर नहीं बना सकते इसमें।
1: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
0: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
1: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी, तो फिर क्या किया आपने?
2: मैं

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया। टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: शुक्रिया अमरकान जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: टेरेंस, ये स्वागत मैं सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, हमारे वो तमाम लाखों करोड़ों सुनने वाले कर रहे हैं जो आपके फैन भी हैं। कितने लोग आपके ऐसे लोग दीवाने हैं जिनको डांस का डी भी नहीं मालूम लेकिन वो टेरेंस के दीवाने हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो श्रोताओं हैं और जो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने क्या किया, क्या किया कि इतना प्यार मुझे मिला है। मैं बहुत शुक्रगुजार अपने अपने आप को फील करवाता हूँ, और बहुत ही बहुत मैं कभी कभी ओवरवेल्म हो जाता हूँ कि यार ये कैसे हो गया और क्यों हो रहा है। मैंने कोई ऐसा बड़ा काम किया नहीं कि मैं इस प्यार का हकदार बनूं। सो
1: मैं आपको बताऊँ, ये बात मैं जानता हूँ कि क्यों हैं आप इसके हकदार। उसका कारण सिर्फ आपका डांस नहीं है, आपकी शख्सियत है, आपका स्वभाव है, आपकी विनम्रता है, आपका प्यार बांटने का सलीका है।
0: शुक्रिया।
1: ये इंसान को बहुत लोकप्रिय भी बनाता है, प्यारा भी बनाता है, और जिंदगी में काफी ऊंचाई तक ले जाता है। और अभी तो आपके लिए बहुत से आसमान बाकी हैं, बहुत से आसमान छूने हैं आपको।
0: वो तो जरूर है। और अगर दर्शक और श्रोताओं का अगर प्यार ऐसा मिला तो जरूर बहुत सारे जो मकाम जो मैं अपने लिए बनाए रखा हूँ इस उम्र में भी शायद वो मुकम्मल हो जाए। जी,
1: तो चलिए, आपने उम्र की बात की है तो श्रोताओं तक ये बात पहुंचा देते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, और ये पहुंचेगी आपकी जन्म तारीख से। हाँ। जन्म तारीख मैं आपकी जानना चाहूंगा, और वो भी इस बात के साथ कि आपका जन्म कब कहाँ हुआ।
0: मेरा जन्म हुआ मुंबई में, और मैं आठवां बच्चा हूँ मेरे माँ बाप का। मेरे माँ बाप का नाम है जेवियर और मीडिया लुइस। डैडी मैंगलोर से हैं ओरिजिनली, लेकिन मुंबई में वो 10 साल की उम्र में आए और काम करने लगे, और मम्मी मुंबई से ही हैं। तो हम सभी 8 भाई बहन मुंबई में ही पले पड़े हैं। मेरा जन्म हुआ 10 तारीख को, 10 अप्रैल 1975। तो मेरी उम्र उसके हिसाब से आज 2020 में 45 साल की हो जाती है।
1: तो देखिए साहब, 45 साल के जवान, या यूं कह लीजिए नौजवान युवा डांसर के साथ मैं इस समय बैठा बात कर रहा हूँ। तो टेरेंस, आप मुझे ये बताएं कि जो बचपन का ये वक्त था मुंबई में, जब आपका जन्म हुआ मुंबई में, कहाँ हुआ, कैसे आपका बचपन बीता। हाँ। और ये डांस का जो एक जुनून आपके अंदर है, ये आपको कब महसूस हुआ कि मेरे अंदर ये चीज पैदा हो रही है।
0: तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। मेरा जन्म हुआ मुंबई में, एक हम रहते थे एक छोटे से बस्ती में, चौल में, हरिनिवास चौल था, पठान चौल भी था, दो नाम थे उसके, और बड़ी बसी बस्ती थी। हमारे घर के दरवाजे नहीं हुआ करते थे, सिर्फ पर्दे हुआ करते थे।
1: अच्छा, अच्छा।
0: तो बहुत प्यार मिला, और इट वॉज अ

0: कॉस्मोपॉलिटन, हिंदूज भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई सिर्फ एक थे नेबर्स, यू नो, अदरवाइज इट वेरी कॉस्मोपॉलिटन जो ऐसा वाला फील था. किसी के भी घर में आना जाना, टीवी नहीं हुआ करता था तभी, सिर्फ रेडियो हुआ करता था
1: उस जमाने में, तो
0: था नहीं. और यू नो, लोग बोलते भी हैं कि यार आपने इतने मतलब इतनी चीज़ें सही हैं, आप कहाँ थे और कहाँ आए हैं. लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं उस परिस्थिति में जन्म लिया था मैंने, तो मुझे पता ही नहीं कि इससे अच्छा भी हो सकता है. मुझे माँ बाप का प्यार बहुत बेशुमार मिला और लोगों का प्यार बहुत ज़बरदस्त मिला, और यही वजह थी, ये प्यार जो मुझे मिला ये मेरे डांस की वजह से मिला. और जब मुझे वो मिला, वो बेशुमार मिला, मेरे यू नो इर्द गिर्द जो यू नो नेबर्स थे या जो मेरे समाज के जो लोग थे, वो मुझे बहुत ही एक ऊंची नज़र से देखते, क्योंकि मैं गाता था, एक्टिंग करता था, कॉपी करता था जो भी दिखता था टीवी पे या फिल्मों में, या डांस करता था. तो किसी की भी शादी होती तो मुझे बुला कहते थे, आजा बुला बुला उसको, बुला उसको बुलाओ, ये नाचेगा हमारे लिए.
1: तो क्यों ना अभी मैं भी कहूँ कि आज टेरेस आए, अभी टेरेस नाचेंगे तो नहीं, लेकिन गाना तो सुना सकते हैं.
0: अरे वो जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ. लेकिन बस मुझे स्टेज पर का बहुत बड़ा लगाव हुआ था, क्योंकि मैं 6 साल का था जब मैं अपने पहले स्कूल में मेरी भर्ती हुई थी. नया स्कूल था मेरा, बांद्रा में मेरा स्कूल था, सेंट ट्रीजस हाई स्कूल. तो मैं रहता था अंधेरी में, लेकिन क्योंकि मेरी माँ बांद्रा में रहती थी पहले, ओके, शादी होने के पहले, तो हमें भर्ती किया गया था एक कॉन्वेंट स्कूल में, सेंट ट्रीजस हाई स्कूल. हम 4 भाई वहीं पर पढ़े. तो वो स्कूल में 6 साल की उम्र में मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, और आई थिंक सीनियर के जी में, नॉट इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड, 5 साल का था. तो टीचर आई और उन्होंने कहा कि अच्छा बच्चे लोग, कौन हिस्सा लेना चाहेगा सिंगिंग कंपटीशन में. किसी का हाथ नहीं उठा, मेरा हाथ उठा. और मेरे में बचपन से वो यू नो ऑलवेज थिंक कि पार्टिसिपेट करना है, सब कुछ करना है, क्योंकि मैं एक खुश यू नो एनवायरनमेंट में पला पड़ा. यू नो बहुत सारा तनाव था, आर्थिक स्थिति बहुत बहुत कठिन थी, डैडी के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन प्यार बहुत था, लोगों का प्यार बहुत था. और कभी कभी बच्चों के लिए उनको कुछ पता नहीं कि कितना क्या अमीर है क्या गरीब है उनके. आई थिंक आई डिडंट रियलाइज दैट, आई वाज जस्ट हैप्पी. और मैं हर एक चीज में पार्टिसिपेट करना चाहता था. फिर दूसरी टीचर आई, बोला कि डांसिंग में कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है, मेरा हाथ उठ गया. तो ऐसे करते करते मैंने 8 जो भी कॉन्टेस्ट थे, ड्रॉइंग, सिंगिंग, एलिक्यूशन, पार्टिसिपेट कर दिया. बड़ी बहन जो थी वो मेरी देखभाल करती थी, मैंने उनको बता दिया कि मैंने ये कर दिया. उन्होंने बोला अच्छा, लेकिन अभी मैं कैसे सिखाऊं, मुझे तो ये सब आता नहीं है. तो मैंने कहा मैं कुछ भी कर लूंगा. तो मैंने कुछ भी कर लिया जो मुझे आता था, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ शायद कर लिया. तो मुझे पहला नंबर लग गया. ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि वो पहली बार मैंने वो कोशिश की और वो सफल हुआ. और फिर जो तालियों की गड़गड़ाहट मैंने सुनी और जो मुझे पुरस्कार मिले, यू नो, जब 2 महीने बाद प्रिंसिपल ने यू नो सर्टिफिकेट सब साथ में इकट्ठा, एक एनुअल डे होता है तो सभी सर्टिफिकेट साथ में मिलते हैं उस दिन पर, तो मेरा नाम बार बार लिया जा रहा था. तो एलिक्यूशन, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सब में मैंने भाग लिया था, मैथमेटिक्स में सब में लिया था. तो वो जो खुशी, वो जो हाई, जो नशा मैंने फील किया, वो मेरे जहन से आज तक उतरा नहीं है. तो मैं मौका ढूंढता हूँ कि कब मुझे स्टेज पर कोई बुलाएगा कि मैं अपना फन या जो भी मेरा टैलेंट है मैं दिखाऊंगा, लोग मुझे वाहवाही देंगे. तो शायद उसकी लालच में मैं स्टेज का दीवाना हो गया.
1: अरे इतनी चीजें याद हैं आपको बचपन की, तो वो गाना भी याद होगा जो आपने गाया था उस समय. चलिए गाइए, नहीं गाना तो बताइए.
0: तो वो अंग्रेजी गाना था, ओके, बोनियम, ओके,
1: बोनियम का, ओके,
0: बोनियम 1975 में. तो एक गाना था, ब्राउन गर्ल इन द रिंग ट्रा ला ला ला ला. सो वो वाला गाना था, उसके लिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था. फिर हिंदी गाना जो गाना गाया था मैंने, वो पिक्चर थी एक यू नो हिंदी फिल्म की थी, जो शायद मेरे शादी का ख्याल,
1: सौतन.
0: तो वो पिक्चर मैंने, वो रेडियो पे चल रहा था 80s में, तो मैंने वो गा दिया, तो वो मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया. तो ऐसे यू नो, फिर अजीब दास्तां है. अजीब दास्तां मेरी बहनें रेडियो पे सुन के वो पुस्तक में लिखती थी, क्योंकि लिरिक्स सबको चाहिए था, तो वो लिखती थी. तो मेरी बहन की राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो मैं वो दोनों, वो हर गाना जो आता था, वो हमारे पास टेप रिकॉर्डर भी नहीं था, सिर्फ रेडियो, तो वो हम 2-3 बार सुनते थे रात, ताकि वो यू नो वो लव्स जो बोले गए हैं वो सही सुने हैं कि नहीं. तो वो भी गाते थे, हम भी गाते थे, तो हमारा टाइम पास ऐसे ही होता था घर में. तो वही याद हो जाते थे. तो ऐसे बोलते बोलते मैं अजीब दास्तां के लिए मैंने बहुत बार यू नो पुरस्कार बहुत बार मिला है, और वो गाना ऐसा है कि सबको बहुत प्यारा लगता है. लगता है, तब मेरी आवाज यू नो एक छोटे बालक की तरह था, बहुत ही स्वीट, बहुत ही पतली, एंड इट वॉज सूटिंग दैट सॉन्ग। फिर बाकी जाके आगे बहुत अलग अलग गाने गाए, बट कभी ट्रेन नहीं हुआ था, और डांस का शौक बहुत कभूत चढ़ गया था, और बहुत यू नो वाहवाही मिल रही थी, तो मैं उस लाइन में घुस गया, डांस की लाइन।

0: ये दास्तान तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी अजीब है
1: लेकिन मेरी माँ की नजर से बहुत ही अजीब हूँ
0: लेकिन हमारे
1: मैंने कुछ
0: तो...
1: भी मैंने कोई भी चीज जिंदगी में जो जो नो जो रेगुलर चीज होती है जो सब बच्चे करते हैं मैंने कभी नहीं किया। जो चीज लोग नहीं कर रहे मुझे वही करना है।
0: लेकिन हमारे लिए अजीब नहीं, हमारे लिए बड़ी दिलचस्प है
1: क्योंकि आप आर्टिस्ट वाले लोग हैं ना।
0: हाँ।
1: आप हमारे जैसे लोग हैं, आप समझते हैं, लेकिन हमारे जो माँ बाप है वो मिडिल क्लास है। सिंपल पढ़ाई करो, जाओ गवर्नमेंट की नौकरी लेके आओ और यू नो सुखी रहो। तो उनके लिए ये सब चीजें अमीरों का शौक है, सिंगिंग डांसिंग। मुझे बहुत मार नहीं पड़ती थी लेकिन मेरी माँ बोलती थी मत कर, चाहे तुम फर्स्ट में, मुझे नहीं चाहिए ये सब, तुम सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। और पढ़ाई में भी मैं होशियार था। तो फिर मैंने बोला कि ये क्या बात हुई, तो मैं बहुत झगड़ता था कि नहीं मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा। और मैं आपको लिख के देता हूं कि मैं अपना नंबर जो पहला आया है उससे ज्यादा लेकर आऊंगा। लेकिन आप मुझे रोक नहीं सकती। तो मैं बहुत थोड़ा यू नो जिद्दी भी था तो, और रिजल्ट भी लेकर आता था। पढ़ाई में मेरा बहुत बहुत होशियार था। फिर मेरी टीचरों ने मेरी माँ को डांटा एक बार कि आप क्यों ना बोल रही हैं, पढ़ाई में भी अच्छा करता है वो और हमारी स्कूल की शान है ये। तो फिर मेरी माँ चुप हो गई वहां से फिर बोला अगर तू कुछ भी हुआ फिर मेरे पर नहीं आना चाहिए। सर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
0: बाकी के भाई बहन कोई शौक नहीं था डांस या इसका?
1: आई थिंक शायद होता भी तो आई थिंक वो इतने यू नो आई थिंक उनमें शायद कॉन्फिडेंस नहीं था या मुझ में ना बचपन से लेके क्योंकि मैं वो जीत गया तो वो नशा चढ़ गया तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। फिर तो इसकी वजह से वो आगे बढ़ गया। तो मैं कहूँगा कि मैं थोड़ा लकी हो गया। वो एक तुक्का ना एक लॉटरी पहले ही लग गई तो उसकी वजह से वो ना एक कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है जब अपने आप पर विश्वास होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। चाहे आप लड़खड़ाएं और चाहे आप उसकी दूसरी बार हार भी जाए, कई बार हारा भी उसके बाद, लेकिन वो एक फील होता है कि हाँ मैंने ये कर लिया है। एक बार आपने स्टेज पर चढ़ गया ना आप तो वो डर जो होता है ना
0: वो निकल जाता है।
1: तो मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा, लेकिन जो डर होता है यू नो स्टेज पर चढ़कर बात करना या एलिक्यूशन देना या डिबेट करना है, तो ये चीजें बहुत लोगों को डर की वजह से लोग आते नहीं है सामने। बहुत सारे अरमान है लेकिन वो लोगों से डरते हैं। वो डर मेरा चला गया तो वो स्टेज पर जो डर होता है ऊपर चढ़ के लोगों को देखकर वो अपने आप को यू नो एकदम यू नो जो भी है आपके अंदर जो टैलेंट जो फन है वो बताना, कभी कभी लोगों में बहुत कुछ टैलेंट है लेकिन वो डर जाते हैं लोगों को देखकर कि उनके विचार क्या होंगे, वो जजमेंट क्या होगा, अगर वो सेल्फ जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो बहुत होता है। तो मैं शायद उसमें बच गया तो

0: टेरेंस, अब थोड़ी सी हमें एक लीप लेनी पड़ेगी, एक थोड़ी सी छलांग लेनी पड़ेगी और हम उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं कि जहां पर आपने ये तय कर लिया कि अब मुझे डांस को ही अपना करियर बनाना है। जब आपने ये तय किया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था और आपकी अपनी क्या कोशिश थी इस फील्ड में जाने के लिए?
1: हम मध्यम वर्ग के लोग थे तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो, मेरी जिम्मेदारी निकल जाती है। मेरे डैडी बहुत क्लियर थे क्योंकि उनके डैडी ने उनको आई थिंक 10 साल की उम्र में बोला था कि अब मेरा काम हो गया है तो मेरे डैडी ने 5 साल और बढ़ा दिए और बोला कि 15 साल 10वीं तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद पढ़ना है नहीं पढ़ना है आपकी मर्जी, मैं पैसे नहीं दे सकता तुम्हारे कॉलेज की फीस के लिए कुछ भी, लिए अब अपना अपना करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे उन सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया और कहीं ना कहीं बीच में मुझे डांस का, क्योंकि मेरा डांस का लगाव बहुत ज़्यादा था, लोग जानते थे कि मैं डांस करता हूँ, तो मेरे एक दोस्त ने, उसकी 2-3 बच्चे थे जो ट्यूशन देती थी, उनको डांस सीखना था तो उनको मैंने डांस सिखाना शुरू किया, बहुत पैसे मिलने लगे और वो पैसे मेरे कॉलेज फीस को, यू नो, कॉलेज फीस और सभी जो यू नो चाहिए जिंदगी को गुजारने के लिए, उससे ज्यादा मैंने बहुत कुछ पाया तो मेरी लॉटरी लग गई।
0: यानी ये उस समय आपकी उम्र कुछ 16-17 साल
1: होगी? 17 साल की थी।
0: यानी उस उम्र से आप डांस सिखा रहे हैं?
1: और 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था, तो 10वीं में ही मैंने मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन का देना चालू कर दिया।
0: वाह वाह वाह।
1: तो हमारे घर में हमारी बहनें थी, मेरी 4 बहनें थी, मेरे 3 भाई थे, वो भी ट्यूशन दिया करते थे तो जब भी उनका उनके पास टाइम नहीं होता था तो उन लोगों ने मुझे बच्चे जो उनका एक्सेस थे उन्होंने कहा आप ले लो, यू नो, ये आप पढ़ा दो और ये आपकी जो भी फीस है ये आपके लिए।
0: अब जैसे मैं कह रहा था आपकी दास्तान के बारे में दिलचस्प, मुझे यहाँ कहना पड़ेगा कि बड़ी प्रेरक दास्तान है।
1: अच्छा।
0: इससे जो प्रेरणा हमारे सुनने वालों को मिलेगी कि जीवन संघर्ष का नाम है और संघर्ष कब शुरू होता है और कब खत्म होता है ये ना आप जानते हैं ना कोई और जानता है, लेकिन उस संघर्ष का जो फल मिलता है उसको कहते हैं टेरेंस लुईस।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो टेरेंस, मैं यहाँ ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये जो दौर था आपका, जो संघर्ष का जो दौर था, इस समय आप, चलो आप डांस सिखा रहे थे लेकिन उस समय अपने आप को भी तैयार कर रहे थे यार, सोचा था आपने कि मुझे क्या करना है?
1: एग्जैक्टली, क्योंकि देखो मैं पढ़ाई में होशियार था तो मैंने साइंस लिया था, मुझे डॉक्टर बनना था तो मेरा 88% निकल गया था, फिर मैं 3 मार्क्स की वजह से मुझे मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं मिली, मुझे डोनेशन देना पड़ा था और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, तो फिर मैंने माइक्रोबायो और बायोकेमिस्ट्री किया ग्रेजुएशन के लिए, फिर वहां से छोड़ के मैं होटल मैनेजमेंट किया और मेरी डांस की ट्यूशन मैं देता गया क्योंकि पैसे अच्छे रहे थे। जब मैंने सब फिनिश कर दिया, मेरा ग्रेजुएशन फिनिश कर दिया और फिर मैंने होटल मैनेजमेंट भी फिनिश किया 3 साल का और मुझे नौकरी भी मिल गई थी कैंपस इंटरव्यू से, लेकिन तब तक मेरा इतना बड़ा मतलब मैं घर घर जाके इतना कमा रहा था कि जो पैसे मिल रहे थे कैंपस इंटरव्यूज के द्वारा, मतलब जो नौकरी लगने के बाद जो पैसे मिलने वाले थे उससे मुझे 10 गुना और पैसे ऑलरेडी मिल रहे थे घर घर जाके सिखाने। मैंने अपने परिवार वालों को बोला कि मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इसमें और अच्छा मेहनत करूं तो मैं शायद सफल हो जाऊंगा। मेरे माँ बाप को डर था कि ये जो नौकरी है घर घर जाके, ये इसमें कोई, मैं, हम लोग क्या बोलेंगे समाज को, तू इतना पढ़ा लिखा है, तू इतना होशियार बच्चा था, तू डॉक्टर बनने वाला था और फिर तू माइक्रोबायो बायोस्ट्रीमिया, फिर तुमने होटल मैनेजमेंट किया है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके तुम अभी डांसर बन रहे हो, तो वो उनके लिए तौहीन की बात थी क्योंकि हमारे परिवार में डांस के एक एक लग्जरी है, ये ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते हैं इसमें, तो वो मेरे पेरेंट्स का मानना था, मेरे पिता और माता का, और मेरे भाई बहन भी जो साथ हैं वो सभी एक मतलब इधर टीचर है या फार्मेसी में है या इंजीनियर है मेरे भाई या बैंकर है, तो वो सभी एक बहुत ही स्ट्रीमलाइंड जॉब में है, मैं थोड़ा हटके सोच रहा हूँ, तो उन्होंने सब ने ना कर दी, मैंने बोला कि नहीं आपकी मर्जी नहीं चलेगी, मुझे जो करना है करना है, वैसे भी मैं आपसे ज़्यादा कमा रहा हूँ तो मैंने ठान लिया है कि मैं ये नौकरी नहीं लूंगा। तो

0: मेरे दो मेरे भाई बहन, तुमने तू गिरेगा, तू समझ नहीं पा रहा है कि ये फिक्स नहीं है। आज तुम्हारे जो लोग तुमको काम दे रहे हैं घर घर में, वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, बोलेंगे अभी ख़त्म, तो तुम क्या करोगे? ऐसे क्यों दूसरे आएंगे? ऐसे अगर तुम्हारी बॉडी को इंजर हो गया तो तुम क्या करोगे? ये सब बहुत ही सेंसिबल सवाल थे,
1: हर तरह से
0: हर तरह से
1: तोड़ने की कोशिश थी।
0: और मेरे सर के ऊपर मंडरा रहे थे 10 लोग कि नहीं ये मत करना, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, क्योंकि वो सब बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, उनके पास एक फिक्स्ड करियर है।
1: देखिए एक बात होती है टेरेंस, मैं बताऊं, मिडिल क्लास आदमी बड़ा डरपोक होता है।
0: करेक्ट।
1: वो हर चीज से डरता है।
0: हाँ।
1: क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहता, उसके पास जो रहता है वो खोने के लिए।
0: हाँ।
1: वो इतना होता है कि अगर वो खो गया तो वो सर्वाइवल का सवाल खड़ा होता है।
0: हाँ, अगर आप कलाकार फैमिली में बॉर्न हुए हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लोग सपोर्ट मिलता है। लेकिन हमारे मेरे डैडी तो मजदूर हैं, उनको सिर्फ वो पढ़े लिखे भी नहीं है, तो उनके लिए सिर्फ पढ़ा लिख कर मेरा बच्चा आगे जाए वो
1: ये बहुत बड़ी बात है ना। और देखिए हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा उनका नाम रोशन करे, आगे बढ़े। हर बाप की सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि उसका बेटा उससे आगे जाए। बस आपने 2 कदम भी आगे बढ़ा दिए तो आपके पिताजी तो खुश हो गए,
0: खुश हो
1: तो खुशी मिल गई।
0: हाँ, लेकिन वही वही चिंता थी कि अरे तू तो डॉक्टर बनने वाला था, फिर तूने माइक्रोबायो बायोलॉजिस्ट में किया, फिर तूने होटल मैनेजमेंट किया, तू फर्स्ट भी आया यहाँ पर, तो फायदा क्या इतना पढ़ के, तू इतना पढ़ता है तू फर्स्ट लेके आता है, नौकरी भी तुझे हाथ में मिल गया, लेकिन तू ये नहीं करना चाहता है, ये क्या बात हुई? तो मेरे डैडी को समझ में आता कि मैं ऐसा कैसा इंसान हूँ। और
1: फाइनली फिर आपके मदर फादर खुश हुए कि नहीं?
0: नहीं, वो बाद में बहुत सालों के बाद खुश हुए, बहुत सालों के बाद जब उन्होंने देखा कि वो भी, मतलब 7-8 साल बहुत, जब मैं फिर मैं जब एक्चुअली मैंने इंस्टीट्यूट खोला, फिर मैंने बोला कि मैं घर घर नहीं जाऊंगा, मैं अपना खुद का क्लास शुरू करूंगा, लोगों को मेरे पास आना चाहिए, मैं क्यों जाऊं घर घर। तो वो भी था ना कि अगर मुझे अपने आप का एक नाम बनाना है तो मैं घर घर नहीं जाऊंगा, लोग मेरे पास आना चाहिए। तो मैंने एक स्टूडियो लिया, पैसे खर्च किए, जो भी इकट्ठा किए थे, पूरा मेरी पूरी जवानी जो मुझे पता नहीं कहाँ गई, मैंने दोस्तों के साथ कभी वक्त ही नहीं बिठाया, मैं सिर्फ काम करता गया और जो भी पैसा है अपने करियर में लगा दिया। और वो फिर ठप हो गया क्योंकि लोग आए नहीं, क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि लोगों को, अगर मैं किसी के घर पर जा रहा हूँ तो वो उनकी सहूलियत होती है ना कि मैं उनके घर पर आ रहा हूँ, तो उनके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है।
1: एक और बात होती है टेरेंस, कलाकार जो होता है वो कलाकार होता है, बिजनेसमैन नहीं होता,
0: नहीं होता। तो वो अकल बाद में फिर जो जमीन पर उतरा, मैं उड़ रहा था कि मेरा ऐसा होगा। मैं सच में ना, जो मैं 21-22 साल का था, मैं मेरे सपने, हाँ मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये होगा, फिर मैं बड़ा शो करूंगा, फिर लोग मेरे पास आएंगे, देखेंगे कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। और तो ये बड़े बड़े मेरे ख्याली पुलाव चलते रहते मेरे दिमाग में, फिर मेरी एक बड़ी फिल्म आएगी, लोग मेरे पास आएंगे और बोले कि मेरी फिल्म करो, तो मेरा दिमाग सपनों में रहता था।

0: अच्छा टेरेस, आप मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि मैंने जवानी में पूरा अपना इस तरह से वक्त निकाल दिया, रिलैक्स करने के लिए क्या करते थे? रेडियो पे जो गाने बचपन में सुना करते थे, वो गाने कब तक आपका पीछा करते रहे? मैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी वो गाने जरूर होंगे कहीं ना कहीं आपके जहन में, लेकिन जब भी रिलैक्स करने का मूड होता रहा होगा तो किस तरह के गाने सुना करते थे? गानों की जो अगर आपसे फेहरिस्त पूछी जाए तो किस तरह के गाने होते थे? किस मूड में किस तरह का गाना आप सुना करते थे? जहां अभी मान लीजिए कि घर में बैठे हैं और माँ और पिताजी से बहस हुई है कि नहीं नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना, तुम हम इतना पढ़े लिखे हो, और उसके बाद अल्टीमेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज होके या थोड़ी सी उदासी में घर से निकले, तो कहीं कोई गाना पीछा करता था विविध भारती का?
1: बहुत सारे गाने थे सर, क्योंकि मैं ट्रेन से ट्रैवल करता था,
0: लोकल ट्रेन
1: और मुझे, सॉरी ये कहना नहीं चाहिए रेडियो पे, लेकिन मुझे
0: हैंड हेल्ड पकड़ के
1: मुझे गर्मी बहुत जल्दी होती है, तो मुझे हवा चाहिए, तो वो हवा यू नो, और मेरे बाल लंबे हुआ करते थे, तो मुझे बहुत मजा आता था कि मैं एक हाथ
0: पकड़
1: कई बार
0: दरवाजे पे लटक जाऊं।
1: आई एम टेलिंग यू, मैं सच कह रहा हूँ कि कई बार पता नहीं किसने मुझे बचाया है, फिसलते फिसलते मैं बचा हूँ। तो ये मेरे 5 साल ऐसे ही गवाए हैं, और मैं उसके बाद भी ट्रेन में ही ट्रैवल करता था क्योंकि वो फटाफट हुआ करता था।
0: दोस्तों ये जो टेरेंस जो कुछ कह रहे हैं ये सिर्फ सुनिए, इसे सिर्फ सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना है। इस पर अमल बिल्कुल नहीं करना है आपको, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। मुंबई में हर दिन कई कई बच्चों की जान इससे जाती है, कई अपने जीवन में अपाहिज हो जाते हैं, तो इसको सिर्फ सुनिए और कान दूसरे कान से निकाल दीजिए। अब आगे बढ़ते
1: हैं। नहीं, सही कहा आपने। तो क्या है कि मैं गाने सुनता था और मेरा जरिया था कि जब भी मैं उदास या जब भी मैं अपने आप को खुश करना चाहता था, या मैं जनरली मैं उदास नहीं रहता हूँ, मैं ऑलवेज हसमुख रहा करता था, मैं वो गाने सुनता था या वो गाने गाता था, सुनता भी नहीं था, गाता था, जो मेरे दिल को हल्का करे। लाइक मैं बताऊँ कि एक गाना है देवानंद सर का, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और फिक्र को धुएं में उड़ा। ये ऐसा गाना मुझे दिल के बहुत करीब है। मैं

0: तो ये गीत तो हमने सुन लिया,
1: हाँ।
0: जिंदगी के जो कश्मकश रहती है उनको किस तरह से आपने दूर किया। मैं जानता हूँ सिगरेट विगरेट तो आप नहीं पीते हैं और पीना भी नहीं चाहिए किसी तरह के नशे से, बिल्कुल अपने आप को बचा के रखना चाहिए।
1: नहीं, ऑल्सो अगर आपने लाइफ का नशा पिया ना, और जो लाइफ में मजा है और जो जिज्ञासा में मजा है, लाइफ को खोजने में मजा है, वो कभी आपने अगर चख लिया तो सब नशे फीके पड़ जाते हैं।
0: और फिर आप तो पहले ही से वो स्टेज वाले नशे में धुत थे, आज भी है।
1: तो ऐसा मैं ये भी कहूंगा कि मैंने 35 साल की उम्र में, 35 की उम्र में मैंने बिना शराब की बूंद चख ली, फिर मैंने लोग सिगरेट पीते थे, टिकने क्या है, तब तक मुझे कोई थे ही नहीं, मतलब मन पूरा मेरा ध्यान डांस में था। और देखा क्या इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं महसूस पड़ रहा है, लेकिन कि जो नशा लाइफ में है और जीने में है उससे बहुत कम है, तो कभी वो लत या लगाव लगाई नहीं।

0: अच्छा टेरेंस, अब हम उस पर आते हैं जब आपका जो काम था वो टोटली कमर्शियल हो गया, अदर देन इंस्टीट्यूट डांसिंग क्लासेस के अलावा फिल्मों में कहीं ना कहीं अंदर आपकी इच्छा तो रही होगी कि मैं भी बड़े पर्दे पे नजर आऊं, मैं भी डांस करूं। अब अगर मैं सच्ची बात करूं, ईमानदारी की बात करूं, तो आप चेहरा मोहरा फिजिक हर तरह से एक अच्छा खासा हीरो मटेरियल आप रहे हैं, आज भी हैं।
1: शुक्रिया।
0: है ना, तो ऐसा नहीं सोचा आपने कभी कि मैं हीरो ट्राई करूं?
1: देखिए आज के तारीख में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बच्चों को, क्या कहाँ जाना है, कास्टिंग कहाँ होती है। मेरे ज़माने में मुझे कोई समझ नहीं थी और कोई यू नो गॉडफादर नहीं है या कोई समझाने वाला नहीं है कि अच्छा ऐसा करो। तो यू नो कई हद तक मैं यू नो सोचा रहा कि ये शायद मुझे कौन लेगा, मुझे कौन काम देगा।
0: लेकिन आप चाहते थे हीरो बनना?
1: हीरो नहीं, मुझे थिएटर का बहुत शौक था।
0: अच्छा।
1: और मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था, लेकिन और कुछ म्यूजिक वीडियोस भी मिले, जैसे शान का एक गाना रीमिक्स, तभी रीमिक्स का गाना बहुत चलता था, शान ने गाया था, माना जनाब ने पुकारा नहीं, उन्होंने एक गाना रीमिक्स किया था।
0: हाँ।
1: उसके मेन किरदार जो मेन मॉडल जो मॉडलिंग जो मेन कैरेक्टर है वो मैं प्ले कर रहा था। तो ऐसे बहुत सारे म्यूजिक वीडियोज मैंने किए बड़े बड़े यू नो जाने माने डायरेक्टर के साथ, लेकिन कभी वो ब्रेक कैसे मिलना चाहिए, किसके साथ बात करना चाहिए, कहाँ जाऊँ, वो मुझे समझ नहीं थी। और भागदौड़ थी कि पैसे जमा करने हैं और अपनी परिस्थिति आर्थिक स्थिति जो है उसको कैसे मैं यू नो अच्छा बनाऊँ, वो इसी में लगा पड़ा रहता था। और यू नो ऑलवेज अपने आप को प्रूव करना था कि अगर मैं इसमें ध्यान नहीं दूंगा तो कोई और अच्छा करके जाएगा और ये जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। तो कभी कोई सपोर्ट ना कोई बनाने वाला कि अच्छा ठीक है यू नो तू इसमें अभी थोड़ा ट्राई कर ले, कोई था नहीं। तो कोई नाराजगी भी नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई गिले नहीं है, जो था सही था, अगर होना था तो हो जाता। अब जाके मैं थोड़े मैं समझता हूँ कि मेरी स्थिति जो है अच्छी है, तो अब जाके मैं बहुत सारे ऐसे काम कर रहा हूँ और जो ऐसे काम मिल रहे हैं जो एक्टिंग के यू नो माध्यम में है, और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं मुझे एक जरिया मिल रहा है फिर से उस उमंग को जीने का। लेकिन उस वक्त में मुझे कोई दिशा दिखाने वाला नहीं था और ना ही मेरे जहन में ये था कि मैं बन जाऊँगा। मुझे लगा कि यार जो फैमिलीज आती थी ट्रेडिशनल फैमिलीज आती थी उन्हीं के बच्चे सपूत जो हैं वो आगे बढ़ते थे, तो वो कभी वो जो अरमा भी था वो वहीं के वगैरह

0: मैंने बोला कि ये शायद इससे ज्यादा नहीं होगा, तो मैंने अपने आप को सीमित किया, किसी की गलती नहीं है। मैंने
1: फिर आपको एक कोरियोग्राफर की हैसियत से काम कैसे मिला? क्या आपने किसी को असिस्ट किया? बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स के नाम रहे हैं।
0: तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया, क्योंकि 17 साल की उम्र में मैंने डांस सिखाना शुरू कर दिया, और जब आप डांस सिखाना शुरू करते हैं और फिर 18 या 19 साल में मैंने कॉलेज के फंक्शंस में कोरियोग्राफ भी करने लगा, तो मेरा नाम लोगों में सुनने में आया था कि हाँ ये कोरियोग्राफ करता है, स्कूल कॉलेज फंक्शन सब दूसरे कॉलेजेस को भी कोरियोग्राफ करता है। तो जो दूसरे कोरियोग्राफर्स थे वो मुखर जाते थे मुझे यूज़ करने, क्योंकि ये तो कोरियोग्राफर है, ये तो अपना काम देख के निकल जाएगा कहीं, तो वो डर जाते थे। मैं अगर चाहूँ भी तो उनके साथ काम करूँ, बोलते नहीं क्योंकि तुम तो कोरियोग्राफर हो, तुम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डर होता है ना कि कहीं वो टेरिटोरियल हो जाता है। तो फिर मैं कभी गया नहीं किसी के साथ, किसी के अंडर काम नहीं किया। और फिल्मी जो मुझे मिली, पहली फिल्म जो थी, एक छोटा सा कोरियोग्राफी का सेक्शन था, लगान में वॉल्स का सेक्शन था, वो भी मेरे नसीब में ऐसा हुआ कि रीना दत्ता जो आमिर की पहली बीवी थी वो प्रोड्यूसर थी उस फिल्म की, तो उनको चाहिए था एक ऐसा कोरियोग्राफर जो वॉल्स, जो टेक्निकल वॉल्स है, वो कोरियोग्राफ करके दिखाए,
1: वो जो अंग्रेज लड़की डांस करती है, वो वाला डांस सेक्शन,
0: वो वाला। हाँ, तो मैं रीना को बोला कि वो मेरी स्टूडेंट रहती थी, क्योंकि वो आती थी सीखने के लिए। मैं अभी फिटनेस में भी चला गया था, डांस और फिटनेस का दौर चल रहा था, तो मैंने अपना हाथ फिटनेस में भी डाल दिया और मैं औरतों को वेट लॉस करवाता था।
1: उस पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी पहले इसको
0: हाँ। तो रीना मेरी वेट लॉस वाली स्टूडेंट थी, वो मेरे पास आई थी वेट लॉस करने के लिए। मैं उसका पर्सनल ट्रेनर बना और उन्हें मुझे ये प्रस्ताव पेश किया कि मैं चाहती हूँ कि आप ये गाना कोरियोग्राफ करें, ये जो थोड़ा सेक्शन है, और बस वॉल्स करना है, आपको तो आता ही होगा, आप तो ईसाई धर्म के हो। तो मैंने कहा कि ईसाई धर्म का ये मतलब नहीं कि मुझे वॉल्स आता हो। ये तो तुम करते हो तुम्हारे पार्टीज में से। मैं नहीं, मुझे नहीं आता ये सब, ये तो एक अलग स्टाइल है। नहीं, ये तुम पाना चाहिए, क्योंकि हमारे फिल्मी कोरियोग्राफर्स नहीं कर पाएंगे, और जिस तरीके से तुम चलते हो, जो तुम्हारी ट्रेनिंग है, लगता है कि तुम कर पाओगे ऐसे, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। फिर एक बार तुम आमिर से मिल लो। मैं आमिर से मिला, आशुतोष जी से मिला, और उन्होंने मुझे और भी डरा दिया कि उन्होंने कि नहीं, वॉल्स तो हमें चाहिए, लेकिन हमें ना वो 18th century, क्योंकि हमारी फिल्म 18वीं सदी में
1: कहानी है,
0: तो 18वीं सदी की जो वॉल्स हुआ करती थी, वियनीज वॉल्स, वो हमें चाहिए,
1: बताइए।
0: तो मैं तो वहीं पर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। पहले तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि मैं कैसे शूट करते हैं, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है।
1: मैं यही जानना चाह रहा था आपसे, माफ कीजिए बीच में रोक रहा हूँ, कि आप कोरियोग्राफी करते थे
0: स्कूल्स
1: में और कॉलेजेस में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग होती है, उसके नुएंसेस अलग होते हैं,
0: एकदम अलग,
1: उसकी ट्रिक्स अलग होती है, वो तो आप जानते नहीं थे। फिर आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया, ये सवाल पे मैं आने वाला था, आप खुद ही आ गए, तो आप दोनों चीजों को जोड़ के बताइएगा।
0: जरूर। तो फिर मैंने मेरा एक उसूल है कि जो चीज़ आपको नहीं पता वो सीधा सामने बोल दो, सच बोलो, क्योंकि सच बोलोगे तो सब कुछ ना कुछ हल मिलेगा। तो मैंने सीधा रीना को बता दिया कि मुझे कुछ नहीं आता, और ना ही मुझे फिल्म, मैंने कभी फिल्म कोरियोग्राफ किया है। तो मैंने रीना को रूम में बता दिया कि ऐसा ऐसा है। रीना ने मुझे फिर से रूम में बैठा दिया आमिर और आशुतोष के साथ, और उन्होंने बोला कि देखो इसको कुछ भी नहीं आता, आप लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, करेंगे। तो आशुतोष ने बोला क्या है अब बताओ। आशुतोष सर वॉज सो नाइस टू मी, ही सेज डरने की बात नहीं है, तुम बहुत डरे हुए हो, अब डरो मत। इट वॉज सो स्वीट, क्योंकि मैं बहुत, आई थिंक वॉज ओनली 24 ईयर्स, सर मैं नहीं करना, मैं बोल रहा मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना है। सर क्यों डरे हो, आपको आता है, मैं सीख लूंगा, लेकिन सर मुझे पता ही नहीं फिल्मों में कैसे शूट किया जाता है ऐसे, वो हमारी जिम्मेदारी। और हमारे पास अनिल जी है, अनिल मेहता जी है, वो कैमरा मैन है, सबसे सीनियर्स, हम संभाल लेंगे, आप हमें कोरियोग्राफी और डांस दिखाओ, कैसे इसको शूट करना है वो हमारी जिम्मेदारी। अरे ठीक है। आमिर ने भी बोला कि आप डरो मत, आप करो, यू विल बी फाइन। तो फिर मैंने वो स्टाइल सीखा। मैं एक सलोमी रॉय कपूर की एक मोहतरमा थी जो सिद्धार्थ रॉय कपूर की माँ है। हाँ, तो वो सिर्फ वो जानती थी वो पर्टिकुलर स्टाइल। तो मैं उनके घर गया, नेपियन सी रोड का घर था मलबा हिल में, मैं गया, उनको बोला कि मुझे सीखना है, और उन्होंने ठीक है मैं सिखाऊंगी। तो मैंने भर्ती किया अपने आप को, सीखा, फिर मैंने वही चीज़ कोरियोग्राफी में डाली। गाना ARM का गाना था, वो मैंने लिया, कोरियोग्राफ किया, फिर बुझ गया। वहाँ पे उन्होंने मुझे अनिल मेहता सर के साथ ही कमरे में बिठा दिया, और अनिल मेहता को मैंने साफ साफ कहा, सर मुझे कुछ नहीं आता कैमरा के बारे में, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँगा सेट में, मैं क्या, मुझे एक्शन भी बोलना नहीं आता कि कब एक्शन बोलूँ कब नहीं, कब नगाड़े को बोलूँ कि रोल साउंड, ये मैंने सुना है लेकिन एक्सपीरियंस

0: नहीं है सिंह, कोई बात नहीं मैं समझाता हूँ। फिर उन्होंने मुझे 2 दिन के बाद एक बुक दिया, इट्स कॉल्ड द 5 C's ऑफ कैमरा। अगर कोई भी डांस के दीवाने हैं या कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये एक्चुअली कोरियोग्राफी के बारे में नहीं बताता लेकिन कैमरा के बारे में बताता है, और ये क्या बोलते हैं ना ग्रंथ है। अगर आपको कैमरा के बारे में सीखना है, दिस इज द बुक फॉर टू गो फॉर द 5 C's ऑफ कैमरा। तो अभी मुझे पढ़ाई लिखने में बहुत शौक है, तो मैं वो बुक को रातों रात खा गया सब कुछ, और मैंने नोट्स लिख दिए कि जो मुझे समझ में नहीं आया मैंने नोट्स कर दिए। मैंने अनिमिता सर को बता दिया कि ये मैं समझ गया, ये नहीं समझा, आप मुझे बताइए। सर आप 2 दिन मेरे साथ आइए और देखिए क्या हो रहा है। मैंने देखा, समझ गया, और मैं बहुत फटाफट समझ जाता हूँ। तो वो मेरी मतलब मैं समझता हूँ कि मैं अगर मुझे कोई दिखाया तो मैं फटाफट समझ जाता हूँ। तो मैं सेट पर रह के मैं सीख गया, और फिर मेरी 3rd दिन मेरी शूट लग गई, और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं
1: एक तो और बड़े इतनी बड़ी फिल्म थी
0: हाँ।
1: बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी आमिर की और आशुतोष की भी, और फिर हिस्ट्री भी बनी।
0: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म फिल्म बन रही है।
1: लेकिन उसके बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई होगी और जब उससे टेरेंस का नाम जोड़ा तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
0: एक्चुअली मैं कहूंगा कि मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया है सर, लेकिन बहुत इज्जत मिली। तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मर्चेंट ने, उनका बहुत ज्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जोड़ा गया था।
1: जाहिर सी बात है ना।
0: लेकिन एक्चुअली बोलूं वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर्स है, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने, मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूं। लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गए थे, वो लोगों के नजर में अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया है, ये मेरी खुशनसीबी थी, लेकिन ये ये नहीं है। और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूँ कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया।

आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का पहला भाग। तकनीकी सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित विविध भारती कार्यक्रम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये गर्जनडी, सिंघरा, भरदा, पलहड़ा, धर्मपुर, गौरा, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के वाड्रफनगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये करमडीहा, मेंढारी, गोवर्धनपुर, भगवानपुर, कुंदीकला, जामदोहर, अखोरा, बदौली, जवा खाण के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये सकालो, किशुनपुर, गंगरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ोली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, कुमडेवा, लक्ष्मणगढ़, कुदरबसवार, केदमा, जगन्नाथपुर, ढोढ़ा गांव, कठबुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडी, दातीढाप, गढ़गांव, बैडाण, चोरकी पानी, कंडराजा, पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा,

0: ही कुदवारी सलिहा भाटा बांधापारा लालडी झुनकीडी जुनवानी कुकरी कादर फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के करतला में हाथियों की कुल संख्या 8 है। ये चारमार मधवानी जोगीपाली बड़मार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 53 है। ये छर्रा टांगर बंगूरसिया जुनवानी कशडोल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानक मार टाइगर रिजर्व के अचानक मार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये ताल दादर पकरीद नवागांव कोठारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़ अमलोर ताराजह डडई पानी बुडार सिंहार छिंदौला लूठापारा नारीपानी डूमर घाट कोदोमाली मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोड़।
2: ये था प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट एफएम 107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या की 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले सुनिए हमारे केंद्र से आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं, आपसे थोड़ी देर बाद संध्या 5:10 पर सुनिएगा पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम। महिलाओं का कार्यक्रम वनिता विहार का समय होगा संध्या 5:30 पर, जिसमें आपस के बात का विषय होगा नारी की समझदारी, सुरक्षित भोजन की जिम्मेदारी, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। चर्चा पर रहेगा घरेलू हिंसा के प्रति आवाज उठाएं, न घबराएं, न संकोच करें। और साथ में क्रम रसोई घर से स्मार्ट टिफिन और क्रिक रेसिपीज। श्रोताओं, संध्या 6:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे और छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से संध्या 6:10 पर। कार्यक्रम फिल्म संगीत का समय होगा संध्या 6:20 पर। 6:45 पर रिले होगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचार कार्यक्रम फिल्म संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे संध्या 7:00। कृषक बंधुओं का कार्यक्रम किसान मणि का समय होगा संध्या 7:20 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा नमो ड्रोन दीदी और आधुनिक खेती। आज की नसीहत में फूलों की खेती किसानों के लिए समृद्धि का रास्ता। इसके अलावा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। घर फिल्म गीत हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 8:20 पर और 8:30 पर सुनेगा कार्यक्रम फिल्म संगीत समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा रात्रि 8:45 पर और रात्रि 9:00 आप बने रहेंगे विविध भारती के संग। हम आपको याद दिला दें श्रोताओं, 9:25 पर सुनिएगा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर युवा शक्ति थीम पर विशेष कार्यक्रम। रात्रि 10:00 सुनिएगा कार्यक्रम विविध संगीत और शास्त्रीय संगीत का समय होगा सूर्यामिनी का। ये 10:30 पर हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार ये क्रमशः रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 11:00 और 11:05 पर। ये थे हमारे केंद्र से आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण में बस इतना ही।

0: डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी @90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: FM 107 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम। कार्यक्रम का आरंभ लीजिए, सुनिए अलीसा चिनाई की आवाज में विद्यू और अलीसा की लिखी हुई गीत, विद्यू के संगीत निर्देशन में।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए जुनून की आवाज में सबीर जफर की लिखी हुई गीत, सलमान अहमद के संगीत निर्देशन में।

पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम में आइए सुनते हैं सोनू निगम और साथियों की आवाज में अजय झिंगरन के लिखे हुए गीत रवि पवार के संगीत निर्देशन में।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: इसी के साथ पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम अप संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या की 5:23 हुए हैं। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम वनिता बिहार।

वनिता विहार सुनने वाली सभी बहनों को रश्मि शरण का प्यार भरा नमस्कार। मानसून के इंतजार में चाय के कप के साथ हम और आप बातें करेंगे, कुछ खट्टी मीठी, और साथ में सुनेंगे कुछ मनपसंद गीत। दिन भर के जिम्मेदारियों के बाद यह पल है कुछ अपने लिए निकालने का, कुछ पल सुकून से बिताने का, अपने आप को फिर से तरोताजा करने का। क्योंकि जब हमारा मन शांत होता है तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं, अपने काम को सही ढंग से कर सकते हैं। वैसे तो बहनों, हमारे ऊपर कई तरह की जिम्मेदारी होती है, लेकिन सबसे जरूरी है स्वास्थ्य, हमारा भी और घर के अन्य सदस्यों का भी। हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है हमारे भोजन के ऊपर। कहा भी गया है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और साथ में तन भी। जिस तरह से जंक फूड का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, ज़्यादातर खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही है, फल सब्जी कुछ भी अछूते नहीं है, ऐसे में हमारी मुश्किल बढ़ जाती है कि हम क्या खाएं क्या नहीं। यह तो संभव नहीं है कि हर कोई अपना भोजन खुद उगाए, हमें बाजार से खरीदना ही होता है। यहाँ पर दिखानी होगी हमारी समझदारी, क्योंकि सुरक्षित भोजन की जिम्मेदारी भी हमारी है। परिवार के स्वास्थ्य और पोषण में महिलाओं की भूमिका सबसे अहम होती है। सुरक्षित और पौष्टिक भोजन चुनना, उसे सही तरीके से पकाना और उसका रख रखाव करना ही परिवार को बीमारियों से बचाता है। और सबसे अच्छा विकल्प है कि हम स्थानीय फल और सब्जी का चुनाव करें, उसमें अतिरिक्त रासायनिक पदार्थ के उपयोग की संभावना कम हो जाती है। मौसमी फल का चुनाव करें, उसमें भी पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व रहते हैं, क्योंकि जिस फल को प्रिजर्व किया जाता है उसमें ज़्यादा रासायनिक पदार्थों की मिलने की संभावना बढ़ जाती है। हमारे क्षेत्र में जिस अनाज की पैदावार होती है उसका चुनाव करने से हमारी सेहत भी अच्छी रहती है, क्योंकि वातावरण के हिसाब से हमारा पाचन भी काम करता है। भोजन पकाते समय साफ सफाई का भी ध्यान रखना जरूरी है। भोजन पकाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। सब्जियों और फलों को भी अच्छी तरह धोकर उपयोग में लाएं। भोजन पकाने वाली जगह, बर्तन, चाकू सभी को अच्छी तरह से साफ रखना जरूरी है। रसोई में उपयोग आने वाले कपड़ों को भी हमेशा धोते रहें, क्योंकि उनमें सबसे ज़्यादा कीटाणु रहते हैं। इन सब के साथ ही भोजन के पोषक तत्व को भी बचाए रखना है। किस चीज़ को हम किस तरह पकाते हैं इस पर भी इसकी पौष्टिकता निर्भर करती है। बहुत तेज आंच पर भोजन पकाने पर उसकी पौष्टिकता नष्ट हो सकती है। सब्जियों को अगर हम भाप में पकाएं तो उसकी पौष्टिकता बनी रहती है। बहनों, तेल मसाले भी हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, लेकिन उनका ध्यान भी रखना चाहिए, उनका चयन भी हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए। अगर ये ज़्यादा हो जाते हैं तो भी नुकसान पहुँचाते हैं। भोजन को ठीक से रखना भी ज़रूरी है। बचे हुए भोजन को सही तापक्रम पर जरूर रखें। बार बार खाने को गर्म नहीं करना चाहिए, इससे उनका पोषण नष्ट हो जाता है। साथ ही हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि डब्बा बंद खाने की एक्सपायरी हमेशा चेक कर लें। सही भोजन का चुनाव बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को सुनिश्चित करता है, साथ ही परिवार के सदस्यों को स्वस्थ रहने में मदद करता है। कुपोषण, मोटापा, शुगर जैसी कई बीमारियों से दूर रखता है। हम भोजन की बर्बादी को भी रोक सकते हैं। बहनों, भोजन हमें सुरक्षा प्रदान करता है और हमें स्वस्थ जीवन प्रदान करता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम खाने की बर्बादी को भी रोकें और अपने भोजन का सम्मान करें। हम जो भी खाते हैं उसे प्रेम से खाएं, तभी हमारे स्वास्थ्य पर उसका अनुकूल असर होता है। बहनों, ये थी आज हमारे आपस की बात। अभी वक्त है एक गीत सुनने का, आइए सुनते हैं ये गीत।

0: मैनू इस गीत के बाद अभी वक्त है भेंटवार्ता का। आज विषय है खाद्य संरक्षण स्वास्थ्य जीवन का आधार। वार्ताकार है निर्मला उजीर, भेंटकर्ता रश्मि शरण। आइए सुनते हैं भेंटवार्ता। विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को भोजन मिलना एक आवश्यकता है और देश के प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि सभी लोगों तक भोजन की पहुंच हो, और सरकार का ये भी कर्तव्य है कि देश के सभी व्यक्ति तक भोजन की पहुंच सुनिश्चित किया जाए, इसकी व्यवस्था करें। और साथ ही भोजन संरक्षण भी बहुत जरूरी है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा एक सार्वजनिक स्वास्थ्य अनिवार्यता है और मौलिक अधिकार है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस एक वैश्विक अभियान है, जिसका मकसद लोगों को खराब खानपान और उसके चलते होने वाली समस्याओं से अवगत कराना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार खराब खाने के कारण एक दिन में कई लाख लोग बीमार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं, जो कि चिंता का विषय है। इसलिए हर वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, और आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं, खाद्य सुरक्षा के बारे में। और आज हमारे साथ हैं निर्मला उजीर जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: सबसे पहले तो निर्मला जी, हम यही जानना चाहते हैं कि खाद्य संरक्षण से हमारा क्या तात्पर्य है।
1: खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी लोगों को पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिल सके।
0: जी,
1: इसलिए ये कि जैसे अनाज, दाल और अन्य खाद्य पदार्थों को सूखी और साफ जगह पर रखना चाहिए, ताकि वो खराब ना हो,
0: क्योंकि हमारे किसान भाई जो हैं बहुत मेहनत से उस उगाते हैं, तो ये भी सुनिश्चित करना है कि अनाज का जो भंडारण है वो भी सही तरीके से हो।
1: जी, जैसे कि उसको हम सुखाकर और सूखी जगह पे स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे खाने की चीज है, जरूरत के हिसाब से हमको खाना बनाना है। और जब कभी थोड़ा बहुत जैसे बच जाता है, उसको हम नमी जगह में जैसे फ्रिज वगैरह में स्टोर करके रख सकते हैं,
0: ठंडी जगहों पे।
1: और जैसे जरूरत के अनुसार ही हमें भोजन लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए।
0: तो खाद्य संरक्षण से हम ये मान के चले कि हमें भोजन को किस तरह से सुरक्षित रखना है, इसके हम उपाय कर सकते हैं।
1: भोजन बनाते समय और खाते समय भी हमें साफ सफाई रखना जरूरी होता है, जिससे खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहे। और जैसे पानी और मिट्टी का भी सही उपयोग हम लंबे समय तक खाद्य उत्पादन के लिए और सुरक्षा के लिए भी कर सकते हैं।
0: जी, और किन उपायों का सहारा लिया जा सकता है?
1: जैसे कि घर में जैसे छोटे चीज है, जैसे कि अनाज है, पापड़ है, पापड़ को हम सुखा करके, दाल है, दाल को भी सुखा करके डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे अचार वगैरह है, तो अचार वगैरह को नमक, जैसे खट्टा है तो, अगर मीठा है तो उसमें हम थोड़ा सा चीनी डालें तो वो लंबे समय तक हमारे लिए सुरक्षित रहेगा।
0: जी,
1: खाने में मतलब संतुलित रहेगी हमारे लिए।
0: जी, और मतलब कहने का तात्पर्य है कि हम किस तरह भोजन की बर्बादी रोक सकते हैं, उसके लिए हम क्या क्या उपाय करें?
1: पहले जैसे मैं बोली कि हमको जितना भोजन चाहिए उतना ही हमको बनाना चाहिए, और हर व्यक्ति को मतलब पर्याप्त भोजन भी मिलना चाहिए, है ना। जैसे हमारे पास अगर ज्यादा भोजन कभी बना भी लिए तो उसको जरूरतमंद को भी दे देना चाहिए, इससे हम भोजन को जो सुरक्षा है उस बचाव कर सकते हैं।
0: और भोजन की पौष्टिकता का कितना महत्व है खाद्य सुरक्षा में या खाद्य संरक्षण में? क्योंकि सिर्फ भोजन ही नहीं, उसका पौष्टिक होना भी जरूरी है, और उसकी पौष्टिकता को हम किस तरह बनाए रख सकते हैं?
1: जैसे पौष्टिक भोजन मिलने से बच्चों का विकास सही से होता है और बीमारियां कम होती है। जब लोगों को अच्छा भोजन मिलता है तो उसको भोजन की चिंता नहीं रहती और वे शिक्षा और काम पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं, है ना। और भोजन की सूखा, बाढ़, महामारी या युद्ध जैसी परिस्थितियों में हम खाद्य सुरक्षा लोगों को भोजन उपलब्ध कराने में भी हमारी मदद करती है।
0: मतलब अगर किसी भी तरह की परिस्थिति हो, उसमें सभी लोगों तक भोजन पहुंचाना भी खाद्य संरक्षण के तहत ही आएगा।
1: जी,
0: और बच्चों के कुपोषण की बात करें तो उसमें कितना महत्व है कि खाद्य संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि पौष्टिक भोजन बच्चों की विशेष जरूरत है।
1: जी, तो उसमें हम बच्चों को जैसे अनाज है, दाल है, सूखी मतलब जो सूखी सब्जी है जैसे कि फल है, दूध है, ये हमारे मतलब स्वास्थ्य के लिए और कुपोषण से बच्चों को बचाने के लिए बहुत जरूरी होती है। इसमें हम फल भी ऐड कर सकते हैं,
0: जी
1: शामिल कर सकते हैं।
0: और फल की बात आई है तो कई बार हमारे पास कुछ सब्जियां या फल ज्यादा हो जाते हैं, तो उनको हम किस तरह से संचय करके रख सकते हैं?
1: जैसे हमारे पास अभी तो नमी बना के घर में जैसे उसको रख सकते हैं,
0: या
1: जैसे
0: फिर जेली जैम जैसी चीजें?
1: जी जैसे कि फ्रिज है तो फ्रिज में हम फल को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे टमाटर है, जैसे वो फल में आता है, सब्जी में आता है, तो उसको हम हमारे पास ज्यादा है तो उसको हम जैम बना करके स्टोर करके रख
0: सॉस बना
1: सकते हैं, सॉस
0: सकते
1: बना करके स्टोर करके रख सकते हैं, तो ये हम खाद्य को सुरक्षा रख सकते हैं,
0: जिससे उसकी बर्बादी रुक जाए।
1: जिसकी उसी बर्बादी ना हो और हमारा यूज हो जाए।
0: जी, और हमारी सरकार सुनिश्चित करती है कि सभी लोगों तक भोजन की उपलब्धता हो, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं?
1: सरकार द्वारा सभी लोगों के लिए भोजन पहुंच सेवा का मतलब बनाया गया है, जैसे कि
0: सभी
1: मध्यम
0: जरूरतमंदों को
1: सभी
0: अन्न
1: जरूरतमंदों
0: की।
1: को, जैसे कि मध्यम वर्गीय है उनके लिए जैसे पीडीएस, जिसको हम कोटा या राशन दुकान, जिसमें मध्यम वर्गीय लोगों के लिए उसमें
0: उचित मूल्य
1: उचित
0: पे।
1: मूल्य की दुकान से मतलब खाद्यान्न मिल सके।
0: जी बिल्कुल। और इस तरह से सरकार भी अब सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक लोगों को भोजन की पहुंच सुनिश्चित रहे। खाद्य संरक्षण के ऊपर आप हमारे स्टूडियो में आए और इस विषय पर हमसे बात की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू, आप लोग, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
0: बहनों, अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, विषय था खाद्य संरक्षण, स्वस्थ जीवन का आधार। निर्मला उजीर से रश्मि शरण की बातचीत। बहनों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी सुरक्षा हमारी खुद की जिम्मेदारी है और अपने लिए हमें खुद आवाज़ उठाना चाहिए। आज भी कई महिलाओं को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है और वो इसे चुपचाप सहने की बजाय इसके लिए आवाज़ उठाएं। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारी सुरक्षा और सम्मान का हमें पहले ध्यान रखना चाहिए। हमारे देश में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी चिकित्सा और सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए कई मजबूत व्यवस्थाएं और हेल्पलाइन उपलब्ध हैं। कानूनी रूप से घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम आपको शारीरिक, मानसिक, यौन और आर्थिक शोषण के खिलाफ पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। पूरे भारत में आपातकालीन सहायता के लिए 181 पर डायल कर सकते हैं, साथ ही पुलिस सहायता के लिए 112 डायल करें। घरेलू हिंसा की शिकायत कोई भी कर सकता है। घरेलू हिंसा किया जा चुका हो या किया जाने वाला हो या फिर किया जा रहा हो, तत्काल इसकी सूचना कोई भी व्यक्ति अपने नज़दीकी संरक्षण अधिकारी को दे सकता है, जिसके लिए सूचना देने वाले पर किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं तय की जाती। साथ ही इस प्रकार के प्रकरणों पर तत्काल कार्रवाई भी की जाती है। बहनों, अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें और घरेलू हिंसा के प्रति आवाज़ उठाएं, ना घबराएं और ना ही संकोच करें। अभी वक्त है एक और गीत सुनने का।

बहनों, सुबह की भागदौड़ में बच्चों और ऑफिस जाने वालों के लिए जल्दी, पौष्टिक और स्मार्ट टिफिन तैयार करना बहुत ही आसान है। बस जरूरत है हमें थोड़ी तैयारी की। स्मार्ट टिफिन का तात्पर्य है रात की बची हुई चीज़ों का सही इस्तेमाल या एक साथ कई पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर को शामिल करना। और इस तरह से हम जल्दी टिफिन तैयार भी कर सकते हैं जो पोषण से भरपूर होता है। तो हम बना सकते हैं प्रोटीन पैक पनीर आलू पराठा। और इसके लिए जो हमें सामग्री चाहिए उसकी तैयारी हम रात को भी करके रख सकते हैं। उबला हुआ आलू, कद्दूकस किया हुआ पनीर, बारीक कटा हरा प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और गेहूं का आटा। अगर हम आलू को रात को उबाल कर रख लें तो सुबह इसकी तैयारी में हमें बहुत कम समय लगेगा। आटे को गूंद लें और सभी चीज़ों को आलू के साथ मिलाकर स्वाद अनुसार मसाले को मिला लीजिए और पराठा सेक लीजिए। है ना एकदम आसान।

0: और इसका लाभ यह है कि यह बच्चों के पेट को देर तक भरा रखता है और भरपूर प्रोटीन भी देता है। इसी तरह से हम सूजी और बेसन का इंस्टेंट उत्तपम भी बना सकते हैं, और इसके लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो है आधा कप सूजी, 2 चम्मच बेसन, दही, नमक, कटी हुई सब्जियाँ, इसमें हम शामिल कर सकते हैं अपनी मनपसंद सब्जियों को, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर, मटर, जो भी हमारे पास उपलब्ध हो या जो भी हमें पसंद हो, और थोड़ा सा 1 चुटकी खाने का मीठा सोडा उसको फर्मेंट करने के लिए। और इससे बनाना भी बहुत आसान है। सूजी और बेसन को दही के साथ मिलाकर 10 मिनट के लिए भीगने दें। तवे पर थोड़ा घी या तेल लगाकर इसे चीले की तरह फैलाएं और ऊपर से ढेर सारी सब्जियां डालकर दोनों ओर से सेक लें। तो फटाफट हमारा चीला तैयार है, और इस चीले के साथ ही वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो आपके साथ हम फिर आएंगे ढेर सारी बातों के साथ। अभी अनुमति दीजिए आपकी बहन रश्मि शरण को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम वनिता विहार। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है FM 107 MHz पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या के 6 बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने कहा कि हर घर और हर खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के

स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम 500 ग्राम 1 से 5 किलो 15 और 20 किलो हैं। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला टीम को भी बधाई दी है। मौसम विभाग ने केरलम और माही में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या की 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण, एक नज़र कल के कार्यक्रमों के विषय में। श्रोताओं, कल सुबह 6 बजे सुनिएगा हिंदी में समाचार कार्यक्रम चिंतन 6:05 पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना 6:10 पर। कृषि चर्चा 6:30 पर और रामचरित मानस भाग 35 6:40 पर। देशगान 6:50 पर। संस्कृत और हिंदी में समाचार होंगे सुबह 6:55 पर और 7 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा। 7:10 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी। कार्यक्रम चित्रपट संगीत का समय होगा सुबह 7:30 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 7:50 पर। समाचार प्रभात सुबह 8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। पंद्रह मिनट पर बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा का समय होगा सुबह 8:30 पर और 9 बजे आप सुनेंगे विविध भारती कार्यक्रम 9:10 पर। पराकाष्ठ श्रृंखला का 5वां भाग प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ 9:25 पर आप सुनेंगे विविध भारती कार्यक्रम। 9:55 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे और सुगम संगीत का समय होगा सुबह 10:10 पर। कार्यक्रम आपकी फरमाइश ये आप सुनेंगे सुबह 10:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम 11 बजे और प्रादेशिक समाचार 11:55 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले होगा। विविध भारती कार्यक्रम 12 बजे से शाम 5 बजे तक रोज की तरह प्रायोजित कार्यक्रम शाम 5 बजे हमर हाथी हमर गोट का प्रसारण होगा और भजन संध्या का समय होगा संध्या 5:10 पर। कार्यक्रम चित्रपट संगीत 5:30 पर हिंदी में समाचार सुनेंगे संध्या 6 बजे और जिले की चिट्ठी 6:05 पर। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार 6:10 पर। कार्यक्रम फिल्म संगीत 6:20 पर। कार्यक्रम कानून की बात संध्या 6:30 पर। प्रादेशिक समाचार 6:45 पर। कार्यक्रम फिल्म संगीत संध्या 7 बजे। कृषक बंधुओं का कार्यक्रम चौपाल 7:20 पर। कार्यक्रम गैर फिल्म गीत 8:20 पर। कार्यक्रम फिल्म संगीत 8:30 पर। समाचार संध्या रात्रि 8:45 पर। 9:25 पर आप सुनेंगे विविध भारती कार्यक्रम। कार्यक्रम फिल्म संगीत रात्रि 10 बजे और सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर वंचितों को वरीयता थीम पर विशेष कार्यक्रम ये आप सुनेंगे 9:25 पर और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम।

सूर्यामणि सुनिएगा। हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे 11:05 पर, अंग्रेजी में समाचार। ये थे हमारे केंद्र से कल के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण में बस इतना ही।

FM 100.7 MHz पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या की 6:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से प्रसारित छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: जयपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग अभिषेक के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। सुशासन तिहार में मुख्यमंत्री आज गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के निमधा गांव और शक्ति जिला के ठठारी गांव में लगाई जन चौपाल। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति काली 7 जून के रायपुर के एक दिनी प्रवास में रही और भारतीय जनता पार्टी डहर ले पूरा प्रदेश में 21,00,000 पौधा रोपे के बड़का अभियान शुरू करे गए है। अब समाचार विस्तार ले। सुशासन तिहार में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के निमधा गांव पहुंचिन और ग्रामीण मनले भेंट करेन। ओमनले बिजली पानी राशन रद्दा दवाई पानी शिक्षा और आवास जैसन जरूरी सुविधा के बारे में विस्तार ले चर्चा करेन। ए मौका में मुख्यमंत्री ग्रामीण मन के मांग ऊपर जिला में नर्सिंग कॉलेज निमधा गांव में मिनी स्टेडियम और मंगल भवन पर राशि स्वीकृत करे के घोषणा करेन। यही गोट बात के दौरान राजस्व विभाग ले जुड़े एक शिकायत सामने आईस जेमा मुख्यमंत्री संबंधित राजस्व निरीक्षक ला कड़ा चेतावनी देवत हुए साफ कहिन कि जनता के समस्या ला बेरा में निराकृत करो नहीं तो कड़ा कार्रवाई पर तैयार रहो। मुख्यमंत्री बताइन कि प्रदेश में जल्दीच सीएम हेल्पलाइन शुरू करे जाही जेखर माध्यम ले लोगन मन टोल फ्री नंबर ईमेल और व्हाट्सएप ले घलो अपन शिकायत दर्ज करा सकी। मुख्यमंत्री आज शक्ति जिला के ठठारी गांव में घलो जन चौपाल लगाइन। ए गांव में ग्रामीण मन के मांग ऊपर मुख्यमंत्री सहकारी बैंक खोले के घोषणा करेन। लोक निर्माण मंत्री अरुण साव रायपुर जगदलपुर रद्दा में केसकाल घाट 4 लेन बाईपास रूट के निरीक्षण करेन। ओमन निर्माण एजेंसी ला बेरा में गुणवत्ता के संग काम ला पूरा करे के निर्देश दिन। 11 किलोमीटर ले ज्यादा लंबा ये रद्दा ला 308 करोड़ रुपया के लागत ले बनाए जावत है। ये बाईपास में 2 ठिन बड़का और 2 ठिन मध्यम पुल घलो बनी। श्री साव केसकाल ले सलना तक रद्दा ला मजबूत करे बर चलत काम के निरीक्षण घलो करेन। श्री साव अपन कोंडागांव प्रवास के दौरान जिला मुख्यालय में विभागीय अधिकारी मनसक बैठका करेन और आने आने विकास काम के समीक्षा करेन। बैठका में ओमन जिला के 3 नगरी निकाय कोंडागांव केसकाल और फरस गांव में वर्षा ले पहली सबो तैयारी पूरा करने के निर्देश दिन और पीए के पानी के गुणवत्ता ला बनाए रखे बर सरलक जांच करे बर घलो कहिन। श्री साव आज अपन जगदलपुर प्रवास के दौरान निर्माणाधीन नालंदा परिसर के संगे संग आने आने विकास काम के निरीक्षण करिन और अधिकारी मन ले सबो कामला बेरा में पूरा करे के निर्देश दिन। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति काली 7 जून के रायपुर के एक दिनी प्रवास में रही। वह रायपुर में रखे गए पिछड़ा वर्ग संगठन के सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल होई। एकर अलावा अधिकारी मन के 1 ठिन बैठका में घलो शामिल होई। ये बैठका में मुख्य सचिव के संग राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रमुख सचिव घलो मौजूद रही। अपन प्रवास के दौरान ओमन राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संग शिष्टाचार भेंट करी। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णा गौर घलो रायपुर पहुंचे थे। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक साहू बताइन कि श्रीमती गौर प्रदेश पदाधिकारी मन संग बैठका करी और संगठन पिछड़ा वर्ग के समाज के सशक्तिकरण और अवैया कार्यक्रम मन के बारे में मार्गदर्शन देही। भारतीय जनता पार्टी डहर ले पर्यावरण ला बचाए और संवारे बर एक बड़का पौधारोपण अभियान के शुरुआत करे गए है। एकर तहत पूरा प्रदेश में 21,00,000 पौधा रोपे के लक्ष्य रखे गए है। भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी बताइन कि प्रदेश के सबो बूथ में खचित पौधा रोपे के काम करे जाही। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश डहले प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी के प्रसारण काली संजा 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। एक कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के सबो आकाशवाणी केंद्र एक संग रिले करी। एदारी के अंक में आप मन बिलासपुर जिला के बारे में जानकारी सुनिया। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
2: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमर समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमर फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमर यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगू बढ़वो बाचे समाचार कोती। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी CGPSC के मुख्य लिखित परीक्षा आज ले शुरू हो गए है। ये परीक्षा 9 जून तक चली। परीक्षा दो पाली में होत है। पहली पाली बिहनिया 9 बजे ले मझनिया 12 बजे तक और दूसरिया पाली मझनिया 2 बजे ले संझा 5 बजे तक होही। परीक्षा पर 5 ठन केंद्र बनाए गए है, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर और जगदलपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सदस्य डॉक्टर प्रवीण वर्मा और कलेक्टर गौरव सिंह ह रायपुर में परीक्षा केंद्र के निरीक्षण करें और व्यवस्था के जायजा लेन। सुनैया मल्ला बता दें कि CGPSC के प्रारंभिक परीक्षा 22 फरवरी के आयोजित करेगे रहीस। धमतरी जिला में भारतीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड यानी NCCF और छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण गृह निगम को तिले 30,000 मीट्रिक टन के अतकहा अनाज भंडारण क्षमता विकसित करे जावत है। केंद्र सरकार के विश्व के सबले बड़े अनाज भंडारण योजना और रेलवे माल गोदाम के तहत जिला में बड़का स्तर में अब्बड़ अकन गोदाम बनाए जावत है। एक बार धमतरी जिला के 4 ठन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति ल चुने गए है। एमा अवरी, कोसमर्रा, पोटिया डी आमदी और कोलियारी शामिल है। ये चारों समिति मन में 2,500 मीट्रिक टन क्षमता के नवा आधुनिक गोदाम बनत है। एकरे संग राज्य भंडारण निगम कोतिले धमतरी और कुरुद में 10,000 मीट्रिक टन क्षमता के दो बड़का गोदाम के निर्माण चलत है। एकर अलावा कुर्रा स्थित समिति में घलो नवा गोदाम बने के काम चालू हो गए है। उहे धमतरी केंद्रीय बड़ी रेल लाइन परियोजना में रेलवे स्टेशन के संगे संग माल गोदाम के निर्माण के काम घलो तेजी ले चलत है। सुनिया मल्ला बता दन की सरकार ह ए रबी मौसम में जिला के किसनहा मल्ले 60,54,00,000 रुपया के चना बिसाए है। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण यानी रेरा ह प्रोजेक्ट के कॉमन एरिया ला रहैया या उहां के समिति ला नहीं सौंपे के मामला में 595 बिल्डर मन ला कारण बताओ नोटिस जारी करे है। रेरा अधिनियम के तहत घर के कब्जा दे के बाद या ओ प्रोजेक्ट में एक निश्चित संख्या में घर बुक होए के बाद वहां के कॉमन एरिया ला हस्तांतरित करना जरूरी है। रेरा ह 15 दिन में ये नोटिस के जवाब मांगे है। जवाब नहीं दे के स्थिति में बिल्डर मन ऊपर रेरा अधिनियम में मामला दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करे जाही। पद्म पुरस्कार पर नामांकन के प्रक्रिया जुलाई तक जारी रही। गृह मंत्रालय है बताई से कि पद्म पुरस्कार पर नामांकन और अनुशंसा जेन है 15 मार्च ले शुरू हो रहीस एमा केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल ऊपर ऑनलाइन ही स्वीकार करे जाही। सुनिया मल्ला बता दन कि पद्म पुरस्कार जेमा पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल है एमन है देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुए नेशनल म्यू थाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ 7 स्वर्ण पदक समेत 17 मेडल जीते हैं। इस चैंपियनशिप में 26 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 900 खिलाड़ी मन भाग लेन जेमा छत्तीसगढ़ ले सदस्यीय दल शामिल होइन। छत्तीसगढ़ के 7 जिला में ग्रामीण परिवार मन के आय बढ़ाए बर एकीकृत आजीविका कार्यक्रम शुरू करे जाही। मुख्य सचिव विकासशील है इस संबंध में अधिकारी मन ला विस्तृत कार्य योजना तैयार करे के निर्देश दिन है। ये कार्यक्रम बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिला में शुरू करे जाही। और आखिरी में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। सुशासन तिहार में मुख्यमंत्री है आज गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के निमधा गांव और शक्ति जिला के ठठारी गांव में लगाई जन चौपाल। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति है काली 7 जून के रायपुर के एक दिनी प्रवास में रही। और भारतीय जनता पार्टी डहर ले पूरा प्रदेश में 21,00,000 पौधा रोपे के बड़का अभियान शुरू करे गए है। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
3: फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या की 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए बप्पी लहरी और आशा भोसले की आवाजों में हिंदी वर्ग की लिखी हुई गीत। बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में फिल्म का नाम है प्रेम प्रतिज्ञा।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ, जरूर। आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
0: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
0: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।

0: नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
1: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था?
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका 2 स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे और उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो, ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली,

0: तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखा जी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी। और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में, तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है। और ये जो वंदे मातरम है यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था। और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे। और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा, एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था। जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में, जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। पूरे देश में इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन के स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
1: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

श्रोताओं कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए प्रेम कैदी इस फिल्म का गीत एसपी बाल सुब्रमण्यम और साधना सरगम की आवाजों में। समीर की लिखी हुई गीत को संगीत से सजाया है आनंद मिलिंद ने।

एसपी बालसुब्रमण्यम और साधना सरगम के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:45 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। घर सूर्य घर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
7: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
9: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
10: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
9: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
10: आकाशवाणी से।
7: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
11: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार।

0: समाचार। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ग्राम निमधा और सक्ती जिले के ठेठारी गांव में जन चौपाल लगाई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति कल रायपुर में सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल होंगी। सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है और प्रदेश के विभिन्न स्थानों में अगले 5 दिनों तक आंधी तूफान और गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ग्राम निमधा पहुंचे और ग्रामीणों से रूबरू हुए। उन्होंने ग्रामीणों से बिजली, पानी, राशन, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर जिले में नर्सिंग कॉलेज, ग्राम निमधा में मिनी स्टेडियम और मंगल भवन के लिए राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। जनसंवाद के दौरान राजस्व विभाग से जुड़ी शिकायत सामने आने पर मुख्यमंत्री ने संबंधित राजस्व निरीक्षकों को कड़ी चेतावनी देते हुए स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं का समय पर निराकरण करें, अन्यथा कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में जल्द ही सीएम हेल्पलाइन शुरू की जाएगी, जिसके माध्यम से नागरिक टोल फ्री नंबर, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने आज सक्ती जिले के ठेठारी गांव में भी जन चौपाल लगाई। इस गांव में ग्रामीणों की मांग पर मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंक खोलने का ऐलान किया। लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने रायपुर जगदलपुर मार्ग पर केशकाल घाट फोरलेन बाईपास रूट का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण एजेंसी को समय सीमा में गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए। 11 किलोमीटर से अधिक लंबे इस मार्ग का निर्माण 308 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इस बाईपास में 2 बड़े और 2 मध्यम पुल भी बनाए जाएंगे। श्री साव ने अपने कोंडागांव प्रवास के दौरान जिला मुख्यालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली और विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। श्री साव ने आज अपने जगदलपुर प्रवास के दौरान विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्य समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति कल 7 जून को रायपुर के एक दिवसीय प्रवास पर रहेंगी। वे रायपुर में आयोजित पिछड़ा वर्ग संगठन के सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल होंगी। इसके अलावा अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक भी लेंगी। इस बैठक में मुख्य सचिव के अलावा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रमुख सचिव भी मौजूद रहेंगे। साध्वी निरंजन ज्योति अपने प्रवास के दौरान रायपुर में राज्यपाल रमन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से शिष्टाचार भेंट भी करेंगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णा गौर भी कल रायपुर पहुंच रही हैं। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक साहू ने बताया कि श्रीमती गौर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होंगी और संगठनात्मक विषयों, पिछड़ा वर्ग समाज के सशक्तिकरण और आगामी कार्यक्रमों के संबंध में मार्गदर्शन करेंगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए एक बृहद पौधारोपण अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत पूरे प्रदेश में 21 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने बताया कि प्रदेश के सभी बूथों में अनिवार्य रूप से पौधारोपण का कार्य किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की जल प्रबंधन पहल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने सिंचाई दक्षता बढ़ाने और जल संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए राज्य में लागू कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन आधुनिकीकरण यानी MCAD मॉडल की प्रशंसा की है। मंत्रालय ने अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर इस मॉडल को अपनाने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे किसानों, जल संसाधन विभाग और सुशासन के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता का सम्मान बताया है। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के लिए एकीकृत आजीविका कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। मुख्य सचिव विकासशील ने इस संबंध में अधिकारियों को विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ये कार्यक्रम बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिलों में शुरू किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रकृति का संरक्षण भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है और पर्यावरण की रक्षा सभी की जिम्मेदारी है। श्री चौधरी ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए औद्योगिक उत्सर्जन की ऑनलाइन निगरानी और फ्लाई ऐश प्रबंधन की व्यवस्था को मजबूत किया गया है। उन्होंने बताया कि नवा रायपुर में 20,000 से अधिक पीपल के पेड़ लगाकर इसे पीपल सिटी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा आज से शुरू हो गई है। ये परीक्षा 9 जून तक चलेगी। परीक्षा दो पालियों में हो रही है। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा के लिए प्रदेश में 5 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर और जगदलपुर शामिल हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की प्रक्रिया जुलाई तक जारी रहेगी। गृह मंत्रालय ने बताया है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं जो 15 मार्च से शुरू हुई हैं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। पद्म पुरस्कार जिनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल हैं देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई नेशनल यूथ म्यूथाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ ने 7 स्वर्ण पदक सहित 17 मेडल जीते हैं। इस चैंपियनशिप में 26 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 900 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ से 36 सदस्यीय दल इस चैंपियनशिप में शामिल हुआ। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में बिलासपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी कुछ दिनों में प्री मानसून गतिविधियों के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में आगामी 3 से 5 दिनों तक आंधी, तूफान और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। राज्य में 12 से 18 जून के बीच मानसून के दस्तक देने की संभावना है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज कवर्धा के नए हाईटेक बस स्टैंड का शुभारंभ किया। इस बस स्टैंड में पुलिस सहायता केंद्र भी स्थापित किया गया है। दुर्ग पुलिस ने अंतर्राज्यीय ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 9 आरोपियों को नागपुर से गिरफ्तार किया है। मौके से मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, सिम कार्ड सहित भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और करीब 23 लाख रूपये के आभूषण जब्त किए गए हैं। दुर्ग जिले के नंदनी थाना क्षेत्र के कोड़िया धान खरीदी केंद्र में आज आग लग गई। इस घटना में 100 क्विंटल से अधिक धान जलकर नष्ट हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर अभिजीत सिंह मौके पर पहुंचे और जांच के निर्देश दिए। रायपुर के जय स्तंभ चौक स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जोनल ऑफिस में आज आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने बताया कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। और विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में महासमुंद में कल संडे ऑन साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ग्राम निमधा और सक्ती जिले के ठेटारी गांव में जन चौपाल लगाई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति कल रायपुर में सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल होंगी। सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है और प्रदेश के विभिन्न स्थानों में अगले 5 दिनों तक आंधी तूफान और गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या के 7 बजने को है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। समीर की लिखी हुई गीत को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने। फिल्म का नाम है तेरे नाम।

0: आकाशवाणी F90।
1: नमस्ते, मैं हूँ राहुल नामदेव और आज मैं आपके बीच अपनी खुशी साझा करने आया हूँ। भारत में रेडियो प्रसारण को 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह सुनते ही मेरा मन गर्व से भर जाता है। हृदय की गहराइयों से आकाशवाणी रायगढ़ को बहुत बहुत बधाई। सोचिए, 90 साल पहले जब रेडियो ने पहली बार आवाज दी थी, तब न तो टेलीविजन था, न मोबाइल, न इंटरनेट। उस दिन से लेकर आज तक रेडियो ने हर सुबह की शुरुआत की, हर त्योहारों की रौनक बढ़ाई, हर आपदा में राहत का पैगाम दिया। यह सिर्फ एक प्रसारण माध्यम नहीं, बल्कि हर भारतीय की जिंदगी का एक सच्चा साथी रहा है। 90 वर्ष यानी लगभग 90 बरस, इतने लंबे समय तक बिना किसी थके, बिना किसी रुके लोगों के बीच बने रहना, यह बहुत बड़ी बात है। कभी आजादी की लड़ाई के संदेश, कभी सीमा पर वीर जवानों की हौसला अफजाई, तो कभी छत्तीसगढ़ की माटी के लोकगीत। रेडियो ने हमें सिखाया कि सच्ची ताकत आवाज में होती है, दिखावे में नहीं। एक बार फिर से बधाई। जय हिंद।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़। श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता।

0: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट।
0: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
0: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग
2: सखी सहेली,
0: बॉम्बे टॉकीज और
3: सेल्यूलॉइड के सितारे,
0: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
4: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
0: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
1: मन का सुकून दिल की आरती
0: सुरीली संदली।
5: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
6: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: कार्यक्रम फिल्म संगीत का अगला गीत ये सुनते हैं अनुराधा पाडवाल और कुमार सानू की आवाजों में। बोल हैं फैज अनवर के और संगीतकार हैं नदीम श्रवण। फिल्म का नाम है दिल है कि मानता नहीं।

अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। एफएम 100.7 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या के 7:20 होने को है। प्रस्तुत है कृषक बंधुओं का कार्यक्रम किसान वाणी।

0: कार्यक्रम किसान वाणी में आप जम्मू किसान भैया मन के स्वागत के संगे संग छोटे लाल के राम राम और किसान भैया देखा शनिचर के दिन कुल बात करे पर आ गए हैं आप मन के बीच में और संगवारी हो आज के बात में हम चर्चा करबो नमो ड्रोन दीदी और आधुनिक खेती। आज के नसीहत में फूलों की खेती किसानों के लिए समृद्धि का रास्ता चर्चा के विषय हरावे। आज के टिप में संगवारी हो खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत हम चर्चा करबो स्वस्थ मिट्टी बेहतर फसल के लिए उर्वरकों का संतुलित उपयोग। किसान मन पर प्रश्न कृषक प्रश्न मंच घलो हरावे और आज के किसान में संगवारी हो ग्राम संबलपुरी विकासखंड रायगढ़ के कृषक हावे रूप नारायण यादव। तो अभी के बखत बेर में खरीफ फसल धान के खेती में का बूता काम हुआ था से शुरुआती तैयारी किसे हुआ हावे उसने विषय पर जो मोर बातचीत हो सावे वोला सुनबो और भी संगवारी हो गीत गाना घलो हुई और भी जानकारी के गोटबाल घलो करबो। तो संगवारी हो गोटबाल शुरू करे के आगू आज के मौसम के जानकारी आप मन ला दे दो। तो संगवारी हो कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र बोई लदर रायगढ़ के मौसम वैज्ञानिक मन के मौसम वेधशाला यंत्र के मशीन मन ले आज के जो मौसम के जो जानकारी मिले हावे वो हरसने हावे संगवारी हो आज के अधिकतम तापमान 39 अंश सेंटीग्रेड आज के न्यूनतम तापमान कहिया तो 26 अंश सेंटीग्रेड बिहाने 7 बजे आर्द्रता रही 65%, मझन के 2 बजे आर्द्रता 38%, हवा की गति 2.7 किलोमीटर प्रति घंटा और हवा की दिशा उत्तर ले पश्चिम। तो संगवारी ये तो इस मौसम के गुड बात। आज के बात में संगवारी जैसे कि आप मतलब बताया हूँ कि नमो ड्रोन दीदी और आधुनिक खेती और संगवारी हो नमो ड्रोन दीदी योजना देखा भारत सरकार द्वारा ग्रामीण महिला मन पर और एमल्ला आर्थिक रूप ले बने ठिन्ना सशक्त बनाए के सेती और खेती पाती के क्षेत्र में नवा तकनीकला बढ़ावा लेहे पर शुरू करेगी हावे और यह एक महत्वपूर्ण पहल हर हावे और एकर अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह ला खेती पाती के उपयोग पर ड्रोन दिए जाते और ड्रोन ला किसे चलाए बढ़ावे ओकर प्रशिक्षण दिए जाते और नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए जितका भी जुड़े मुख्य बात हावे ऐसे प्रकार के हावे संगवारी हो। ये योजना के मुख्य उद्देश्य कहिया तो देश के लगभग 15,000 महिला स्वयं सहायता समूह ला ड्रोन उपलब्ध कराए के ऐसे ड्रोन बिसाए बर सरकार द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता दिए जाते बांचे रकम बर कृषि अवसंरचना वित्त पोषण सुविधा के माध्यम ले लोन के व्यवस्था घलोक उपलब्ध होते। ऐसे महिला स्व सहायता समूह माने कम से कम 2 सदस्य के चयन कर उमल्ला 15 दिन के प्रशिक्षण माने कि विशेष प्रशिक्षण कह ले वा विशेष रूप से ट्रेनिंग ये दिए जाते हैं। जो भी महिला मन प्रशिक्षण ला पाए बर हमें ये इच्छा रखें हावे कि हाँ भाई हम प्रशिक्षण पाबो हमला अपने प्रशिक्षण करना हावे तो मतलब ड्रोन के मदद ले किसान मन के खेत में नैनो उर्वरक और कीटनाशक के छिड़काव करे बर अपन सेवा किराए में दिए जा सकत हावे। ऐसे में संगवारी को कहा तो महिला मन के जो आय आमदनी हर हावे उमा उल्लेखनीय बढ़वार देखेगी हावे और संगवारी को आज के आधुनिक नवा खेती में ड्रोन के जबर महत्व हावे। ड्रोन की मदद ले हमन रासायनिक खातु और कीड़ा कीटनाशक के समान और सटीक छिड़काव कर सकत हन। ड्रोन के सहायता ले कम बखत बेर में बड़का क्षेत्र में बूता कामला उसराया जा सकत हावे और ड्रोन के खेती में उपयोग करे ले जितका भी लागत हर हावे और उत्पादन लागत जो लाग जाते हैं उमा कमी आ जाते हैं। ऐसे फसल के देख रेख पर रोग बीमारी कीड़ा कीट के चिन्हार के सेती ड्रोन के माध्यम ले हो जाते हैं और ड्रोन के उपयोग करे ले पानी रासायनिक खातु और कीटनाशक के बचत होते हैं। और संगवारी हो ड्रोन के मदद ले किसान मन के आय और उत्पादकता में बढ़वार होते अभिया हो नमो ड्रोन दीदी योजना ले महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण रोजगार ला भी बढ़ावा मिलते हैं और खेती में नवा तकनीक के प्रसार होते हैं। पर्यावरण अनुकूल और संसाधन संरक्षण वाला खेती नमो ड्रोन दीदी के माध्यम ले होते हैं। ऐसे और भी किसान मल्ला ड्रोन के सेवा किराए में उपलब्ध हो जाते हैं। असंगवारी हो नमो ड्रोन दीदी योजना नवा नवा खेती के दिशा में एक क्रांतिकारी कदम हावे। एहर महिला मल्ला आत्मनिर्भर बनात हावे, किसान मल्ला उन्नतशील बनात हावे, सटीक और लाभकारी तकनीक उपलब्ध कराते हैं। ड्रोन के उपयोग करके हमन और आगू बढ़ सका सन। चला सुना जाइए लोकगीत ला, श्रोता मन के गोड़ बात आवे संगवारी हो क्योंकर पाछू लोकगीत आप मन ला सुनाबो। तो चला सुना जाइए एक हमार श्रोता के गोड़ बात ला।
1: आकाशवाणी F90।
2: प्रणाम, मैं बलराम पटेल रेलुंगा से बोल रहा हूँ। आज भारत में रेडियो प्रसारण के 90 वर्ष पूरे होने का अवसर अत्यंत गौरवशाली है। इस स्वर्णिम उपलक्ष्य पर मैं आकाशवाणी रायगढ़ एवं पूरे राष्ट्रीय प्रसारण परिवार को हार्दिक बधाई देता हूँ। ललुंगा जैसे छोटे से कस्बे में बैठा मैं आज भी उस पुरानी यादों को संजोए हुए हूँ जब घर में रेडियो पर पहली बार सरगम बजी थी। रेडियो सिर्फ एक यंत्र नहीं, हमारा परिवार का एक अभिन्न अंग था। सुबह की प्रभात फेरी हो या दोपहर की भजन माला, रेडियो ने हमें अनगिनत सुखद पल दिए। इस माध्यम ने कभी हमें अकेला महसूस नहीं होने दिया। यही रेडियो है जिसने आज़ादी का संदेश दिया, युद्धों के में मोर्चों से खबरें पहुंचाई और बाढ़ सूखे में राहत के निर्देश दिए। 90 वर्षों की यह यात्रा किसी चमत्कार से कम नहीं बल्कि हर रेडियो कर्मी की मेहनत की कहानी है। मैं बलराम पटेल लैलुंगा की ओर से आप सभी उद्घोषकों, तकनीशियनों और कलाकारों का सिर झुकाकर आभार व्यक्त करता हूं। आकाशवाणी सदा सशक्त रहे। जय हिंद, जय भारत।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
4: 2 लाख क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: हाँ तो संगवादी हो, आप मन जो लोकगीत सुनत रहा होकर गायक कलाकार रहीन पवन चंद्राकर। चलो संगवारी, आज के किसान के गोटला सुना जाए। ग्राम संबलपुरी विकासखंड रायगढ़ के कृषक हमें रूप नारायण यादव, वर्तमान बखत बेर में खरीफ फसल धान के खेती में का तैयारी करे बर हावे, एकर बारे में जो मोर चर्चा हुई सावे वाला सुना जाए।
8: संगवारी हो, दुनिया के बने अकन देश में धान के उत्पादन मने किसान करते हैं और लगभग कहिया तो आधी आबादी उमन के चावल के उपयोग खाए बर करते हैं, चावल के उपयोग ला अपन भोजन में शामिल करते हैं। और संगवारी हो, हमर छत्तीसगढ़ प्रदेश धान के कटोरा के नाम ले हर जाने जाते हैं और हमारे यहाँ के बनेज किसान मन हमें जेमन धान के खेती में खास करके खरीफ मौसम में मुरझाए रहते हैं और बनेज किसान मन धान के खेती घलो करते हैं। नाना प्रकार के धान के किस्म हमर प्रदेश में होते और धान के खेती के तैयारी अक्ति तिहार हमारा आते और बाद में शुरू हो जाते हैं। तो धान के खेती के किसान हमारे बीच में बैठी हावे तो चला उमन

0: बात किया जाए भाई कि अभी देखा शुरुआती जो खेती में का का मतलब काम बुता करे बर पड़ते और कैसे एमन फिर 4 महीना 5 महीना अपन धान ला सहज से समेटते। तो सब ले आगू भैया, राम राम।
1: राम राम भैया।
0: आपके नाम बताए?
1: रूप नारायण यादव।
0: हाँ, कौन गांव है जी आपके?
1: संबलपुरी।
0: अच्छा, हाँ तो भैया जैसे कि मैं देखा तो तुम अभी पार वाला छोला था बने।
1: हाँ।
0: तो अभी का खेती पाती में कर रहा था? अभी
1: तैयारी कहा था।
0: हाँ?
1: अभी पार छोले चला थे।
0: हाँ,
1: हाँ? हाँ, बंद वन मनला जो घास हो जाते बड़े बड़े ओला। हाँ? अभी छोला ही चला थे और मुसवा सब बिल कर दे रहे थे।
0: हाँ?
1: वो मनला मुंजा था।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, और
0: जोताई तो करा।
1: हाँ, जोताई करवा डाले हैं ना अभी पानी गिरी सो में।
0: हाँ,
1: तो जोताई हो गई से घास वास मरते हैं।
0: हाँ,
1: हाँ ना।
0: और देखा वैज्ञानिक मन कहते कि मैं कीट कीड़ा के अंडा वगैरह रहते।
1: हाँ, हाँ, वो
0: तो
1: भी
0: मन
1: सिरा जाते हैं।
0: अभी जो चड़क घाम पाते।
1: हाँ, चड़क घाम पाते था।
0: अभी देखा ना बने घाम तो है।
1: हाँ, एकदम
0: गरम में
1: तरह के है।
0: और जैसे कि पार वाला अभी बांधे के भी बात देखा तो तुम्हारे पार एक दूठी टूटे दिखा थे तो वाला बांधिया की?
1: हाँ, बांधबो ना वाला।
0: अच्छा,
1: अभी बांधबो।
0: हाँ,
1: पानी गिरे के पहले।
0: हाँ, हाँ। और खाद वगैरह में?
1: हाँ, खाद वगैरह में अभी पाला था खातू तूला।
0: हाँ,
1: खातू के बीच चला थे
0: गोबर खातू डाला।
1: हाँ, गोबर खातू डाला था।
0: तो हर साल डाल सभी?
1: हाँ, हर साल डाल था।
0: है ना, तो गोबर खातू डाले में का फायदा होते आप मतलब?
1: मैं धान के उपज बढ़ते।
0: अच्छा।
1: हाँ, धान के उपज बढ़ते और वो वाला हमें तो थोड़े ये होते है ना वो तो मिलावट के बाद रासायनिक खाद। अभी ये गोबर खाद है ज्यादा फायदा करते है ना।
0: अच्छा अच्छा, स्वस्थ और ठिन्ना रहते।
1: हाँ, स्वस्थ और ठिन्ना रहते पौधा है
0: और लागत
1: रोग वोग नहीं लगे।
0: हाँ, लागत भी कम लगा थे।
1: हाँ, लागत भी कम रहते तो खुद के घर के रहते कहा है ना गाय गरुआ रखे हम
0: तेज
1: खादर हो जाते खातू हर।
0: हाँ, बने बात है रूप नारायण भैया आप मन बताया कि गोबर खातू तो हर साल डाले बर है।
1: हाँ,
0: काबर के हम जमीन लभी जी आके रखना है हम फायदा तो यही होते है उपजाऊ पाना हम सब जस के तस माठे रहे
1: जी
0: है ना। तो बने आप मन गोबर खातू के उपयोग कर रहे यार बने बने बात आवे।
1: हाँ,
0: और ये खातू हर रवि फसल में भी तुम्हारे काम आ जाये।
1: हाँ, रवि फसल में काम आ जाते।
0: हाँ,
1: फिर से रवि फसल लगाई है तो हमें भी हमें डाले वो नहीं लगे साल में के बाद डाल था।
0: अच्छा अच्छा। और धान की खेती अभी शुरुआत कर रहे हैं आप तो बीजा वगैरह के व्यवस्था?
1: बीजा वगैरह के व्यवस्था वहाँ लान था
0: सोसाइटी।
1: हाँ, सोसाइटी ले।
0: हाँ, बढ़िया
1: बीजा। हाँ, प्रमाणिक बीज लेके वो थान कहा।
0: हाँ हाँ, जागरूक किसान है आप तो।
1: हाँ,
0: हाँ। तो ओमा देखा कि दवाई भी आते उपचार करे बार।
1: हाँ,
0: तो बोला सांथा की नहीं सांथा।
1: हाँ, सांथन ना
0: थायराम दवाई रहते।
1: हाँ हाँ, सांथन
0: ओकर ले फायदा आप जाना था कहाँ होते।
1: हाँ,
0: जत का भी रोगा बीजा रहते ओमा ले रोग खत्म हो जाते।
1: हाँ,
0: और भी ओला सान दिया तो।
1: हाँ हाँ,
0: फफूंदी जनित जत का बीमारी होते।
1: हाँ,
0: अपर आत्मा की फसल है ओमा नहीं होगी।
1: हाँ,
0: तो आप मन साना था यार अच्छा बात हावे। और मुख्य रूप से अभी काका आप मन धान के बीजा लगा के विचार करे है?
1: धान में स्वर्णा है।
0: हाँ,
1: वो एचएमटी है।
0: एचएमटी के पैदावार बढ़िया होते आप मन क्या?
1: हाँ होते लेकिन थोड़ा रोग वोग लगते ज्यादा हमें।
0: अच्छा,
1: एचएमटी में।
0: हाँ, तो बने
1: तो खावर मतलब लगा था कहा तो।
0: अच्छा अच्छा, घर खाए।
1: हाँ, घर खाए बहुत।
0: हाँ,
1: एचएमटी लगा था।
0: हाँ, और एकर बीजा भी सोसाइटी लान था।
1: हाँ, सोसाइटी लान था एकर बीजा लभी।
0: और धान में जैसे तो छिड़कावा बोनी ले होते भैया और दूसरा थरहा लगाते हैं।
1: हाँ,
0: चिखला मचा के करते हैं।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: तो आप मन कौन से तौर तरीका अपना?
1: वो खुर्रा बुनथन।
0: अच्छा, खुर्रा बुआई।
1: हाँ, हाँ, और बाकी छूट जा रहे थे 2-4 एकड़ हर।
0: हाँ,
1: लहराम दे देते।
0: हाँ,
1: हाँ, हाँ, चिखला करके।
0: हाँ, हाँ,
1: बुनथन।
0: तो खुर्रा बुआई करने में क्या फायदा होते आप मन?
1: खुर्रा बुआई में बीजा तगड़ा होते मतलब धान के पौधा है रोग वोग नहीं लगे उसका। और
0: जल्दी हो जाते
1: जल्दी होते।
0: और जैसे थरहा वरहा जगवा था कि?
1: हाँ, थरहा भी जगवा था थोड़ा बहुत।
0: हाँ, तो थरहा लगत कम लगा देता आप मन फिर भी?
1: 2 एकड़ सही में।
0: अच्छा, और एचएमटी धान ला?
1: हाँ, एक एकड़ में।
0: अच्छा,
1: एक खाना वाना
0: लगा
1: खा अपन घर खाए बस
0: है ना। और ज्यादा करके बीमारी का होते आप मन के यहाँ?
1: ज्यादा करके बीमारी वही होते बाकी।
0: अच्छा,
1: बाकी लगते
0: हाँ,
1: कभी कभी बोंगी भी फूटते।
0: हाँ हाँ,
1: और इसे होते
0: तो एक उपचार करता कि नहीं?
1: हाँ, करता ना
0: बाकी के
1: छिड़काव।
0: बाकी बीमारी के हमारे यहाँ जैसे कई अपन के गांव में मतलब सियाना मन बता रहे हैं एक ठी डार कौन से पेड़ के डार आते
1: हाँ कर्रा डार
0: कर्रा डार
1: हाँ
0: कर्रा डार लगा देते तो बाकी नहीं हुए
1: हाँ नहीं वो पुराना वो रे है
0: हाँ तो नया बाकी बाकी मतलब जान डाली नहीं
1: ठुआ एक तो
0: हाँ हाँ
1: नहीं
0: ठुआ है
1: हाँ ठुआ है एक तो
0: हाँ तो बाकी वजह से कि पानी कम रखे पर पड़ते
1: हाँ बाकी पानी लगा एकदम कम रखना पड़ते
0: और जो ये बोले आप मान बोंगी फूट थे जो
1: हाँ
0: ओकर पर विचार
1: हाँ ओकर पर दवाई वही आते दवाई कृषि वैज्ञानिक वाला दवाई आते
0: ओला डाल था
1: ओला डाल था छिड़काव करता
0: है ना तो ठीक बात है अभी तो आप मन की तैयारी बढ़िया चला से
1: हाँ
0: है
1: हाँ,
0: ना खातू हाँ, भी डलगी से
1: हाँ
0: और पार मेड़ ये सब जतन डाले हैं
1: हाँ
0: बढ़िया बिला मतलब खोज खोज के मूंज भी डाले हैं
1: हाँ
0: है
1: हाँ,
0: तो कुल मिला के भैया आप मन के धान की खेती सफल हो ही मुला इसने लागा थे
1: हाँ
0: तो आप मतलब किसे लगा थे
1: हाँ
0: बढ़िया उत्पादन हो ही
1: हाँ बढ़िया उत्पादन हो ही जी
0: पर साल ज्यादा हो
1: हाँ पिछले साल ज्यादा हो ही
0: ठीक ठीक आप मन आके हम आज का बढ़िया बात बताया एक पर धन्यवाद
1: धन्यवाद आप मन ला भी
0: राम राम
1: जय जोहार
0: राम राम
1: राम राम।
0: हाँ तो संगवारी हो आज के किसान में रूपनारायण यादव जी के गुणवास लाभ मन सुनत रहा संगवारी हो कृषक प्रश्न मंच में हमारे आज के प्रश्न हावे वाटर हार्वेस्टिंग हमर बर काबर जरूरी हावे ये प्रश्न के उत्तर आप मन हमन ला लिख के भेजिया प्रश्न ला एक घाव बता देता हूँ आप मन ला वाटर हार्वेस्टिंग हमर बर काबर जरूरी हावे। अब चलो संगवारी कार्यक्रम धरिया जाए और पवन चंद्राकर के आवाज़ में अपन लोकगीत ला सुने रहा अब आज की नसीहत में चर्चा करबो फूलों की खेती किसानों के लिए समृद्धि का रास्ता। संगवारी ऐसे बात सच हावे कि फूल ले मानसिक विकास होते और मनखे मन में सौंदर्य के भाव हर जागते। संगवारी हो आज के व्यस्त जीवन में फूल के बाग बगीचा में नाना प्रकार के फूल ला उगा जगा के मन के शांति पाए जा सकत हावे। और संगवारी हो ये फूल के पौधा मल्ला क्यारी में गमला में परछी में टुकनी में बउगा में और डोली खेत में सरलता ले उगाए जा सकत हावे। अभी हो फूल के खेती करे पर नाना प्रकार ले पौधा तैयार करे जाते कुछ किस्म के पौधा ला आगू थरहा दे के तैयार करे जाते फिर पाछू ओला क्यारी में जगाए जाते और कई किस्म के बीजा ऐसने हावे संगवारी हो ये मतलब सीधा क्यारी में लगा लिए जाते। जेन फूल के पौधा के थरहा तैयार करे जाते ओकर बीजा आपका नान नान होते एमन के बने जतन कर थरहा तैयार करे जाते। और भैया हो फूल के खेती करे बर ऐसने भुइयां के चयन करे बर हावे जेमा ठीके ठाक मात्रा में जीवांश हो सिंचाई और पानी निकासी के बने सुविधा हो बलवासी दोमट भुइयां फूल के खेती पर सर्वोत्तम माने जाते। भुइयां ला लगभग 30 सेंटीमीटर तक गहिला खने बर हावे गोबर के खातू रासायनिक खातू जतका भुइयां के आकार हावे ओकर हिसाब ले मिश्राए बर हावे। ऐसे वर्षा के मौसम में जिनका थरहा दिए जात हावे ओ करला दूसर औ मौसम के तुलना में ज्यादा जतन करे बर हावे। संगवारी हो बीजा बोए बर और रोपाई बर थरहा दिए गए ठौर में 1 मीटर चौड़ा और अपन जरूरत के हिसाब ले जतका लंबा परिया क्यारी ला बनाए बर हावे। क्यारी ला सम साम कर 5 सेंटीमीटर के दूरिया में गहिला गार बना बना के ओमा 1 सेंटीमीटर के दूरिया में बीजा ला बोए बर हावे। और संगवारी हो बीजा बोए के बेर में ऐसे ध्यान रखे बर हावे कि बीजा 1 सेंटीमीटर ले ज्यादा गहिला में झन जा पाई ज्यादा गहलाई में चल दी संगवारी हो तो ओकर चलते नुकसान हो सकत हावे अंकुरण या फिर कह ले जामे में मुश्किल आ सकत है। पाछू हल्का रूप में माटी या फिर खातू के परत ढाक देहे बर हावे। अब बिहनिया संझा हजारा ले या फिर फव्वारा रूप में सिंचाई करे के काम हावे। पौधा मन लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंच हो जाते हैं तो और बेर में रोपाई करे बर हावे और ठौर में रोपाई क्यारी में निर्धारित दूरी में ही करे के काम हावे। सब ले आघू मौना प्रजाति 30 सेंटीमीटर तक ऊंचाई वाला जो पौधा में रहते वो मतलब 15 ले 30 सेंटीमीटर की दूरी में लगाए के काम हावे। फिर मंझोलन कद के प्रजाति के पौधा जेवन की ऊंचाई 30 ले 75 सेंटीमीटर तक होते उसने प्रजाति के पौधा जगाए बर हावे। और लंबा प्रजाति के जो पौधा मन हमें जेमन 75 सेंटीमीटर ले ज़्यादा ऊंचाई के एमन बाढ़ते हैं, ये मतलब 45 ले 50 सेंटीमीटर की दूरी में जगाए के काम आवे। फूल के खेती में संगवारी हो सिंचाई में कहिया तो वर्षा मौसम में सिंचाई के तो दरकार नहीं पड़े, जाड़ के मौसम में 7 ले 10 दिन और घाम के मौसम में 3 ले 5 दिन के अंतर में सिंचाई करे के काम आवे। ऐसे खातू के सही मात्रा भुइया जलवायु और पौधा के किस्म में निर्भर होते हैं। यूरिया कहिया 10 किलोग्राम जो रासायनिक खातु आवे ओकर मात्रा लग जाते हैं, सुपर फास्फेट 200 किलोग्राम और पोटास 75 किलोग्राम एमन के आपस में मिश्रण बना के 10 किलोग्राम मात्रा 1000 वर्ग मीटर के दर ले भुइया में मिश्रा के देहे के काम आवे। और रासायनिक खातु देहे खानी ये बात के ध्यान रखे बर हावे संगवारी हो कि भुइया में ठीक ठाक ओल माढ़े रहे। ऐसे यदि तरल खातू माने कि पानी असन खातू हमन देथन तो फूल मन के बढ़वार और बने फूल के उत्पादन पर यह बनेच उपयोगी माने गिरसावे। ऐसे गोबर के खातू ला पानी में घोल के उमर थोड़े मात्रा में नत्रजन वाला रासायनिक खातू मिश्रा देह ले लाभ होते। संगवारी हो मौसम के हिसाब ले फूल मन के वर्गीकरण घलो करे गिरसावे। वर्षा काल के फूल, जाड़ा मास के फूल और घाम मास के फूल। वर्षा काल के फूल के बीजाला अप्रैल मई के माह में थरहा दे दिया जाते और जून जुलाई में एकर पौधा ला क्यारी में या फिर गमला में जगाए के काम आवे। और मुख्य रूप में ये मौसम में गेंदा, गेलार्डिया, बालसम, जीनिया, पिटूनिया ये पौधा ला रोपाई करे जा सकत हवे। ऐसे जाड़ा माह के फूल के पौधा के बीजाला सितंबर में थरहा दिए जाते और अक्टूबर के आखिरी हफ्ता में क्यारी में या परिया में एमला रोप दिए जाते। एमन में फूल फरवरी मार्च माह तक लागते हैं। मुख्य रूप ले एस्टर, कार्न फ्लावर, स्वीट सुल्तान, वार्षिक गुलदावरी, डहेलिया, कार्नेशन, पिटूनिया के पौधा एमला लगाया जा सकत हवे। और घाम माह के पौधा के बीजा 15 जनवरी ले 15 फरवरी तक बोए जाते और फरवरी माह के आखिरी तक पौधा मल्ला जगह काम आवे। एमन में अप्रैल ले जून माह तक फूल आते। एमन जीनिया, कोचिया, गेलार्डिया एक किस्म के फूल मन आते। संगवारी एस्टर, बर्बीना, फ्लास्टक, साल्विया, पेंजी, स्वीट विलियम, जीनिया ए पौधा मल्ला क्यारी में लगाए जाते। बगीचा में लगाए बर एजीरेटम, लाइनेरिया, बर्बीना, डाइमा फोटिका, स्वीट एलाइसम ए फूल के पौधा लगाया जा सकत हवे। ऐसे सुगंध पर कहिया तो स्वीट पी, स्वीट सुल्तान, पिटूनिया, स्टाक, बर्बीना ए मन हर हवे। ऐसे बाड़ा लगाए बर माने गुलदावरी और गोंदा मन वहाँ बने रहते। तो संगवारी हो फूल के खेती करके बने समृद्धि पाया जा सकते, बने आय आमदनी हो सकत हवे। चला सुना जाए सुगर अगन के लोकगीत ला, फिर आज के टीपंग लहरियाबो।

0: डेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हाँ तो संगवारी हो, संदेश के आगू आप मन धुरवा राम मरकाम और दुखिया भाई के आवाज में लोगी तरह सुनत रहा। संगवारी हो, आज के टिप में स्वस्थ मिट्टी, बेहतर फसल के लिए उर्वरकों का संतुलित उपयोग चर्चा के विषय रहावे और खेत बचाओ अभियान के तहत ये सब गुड बात हमन करत हन। और संगवारी हो, उर्वरक माने कि रासायनिक खातु के सम मात्रा में उपयोग खेती पाती के सफलता के महत्वपूर्ण आधार हावे। यदि किसान हर अपन जरूरत के हिसाब ले सही मात्रा में उर्वरक के प्रयोग करे जाते तो माटी के उपजाऊपना जस के तस मढ़े रहते, फसल के उत्पादन घलोक बढ़ते और खेती के लागत घलोक कम होते। संगवारी हो, संतुलित उर्वरक उपयोग के महत्व कहिया तो माटी में पोषक तत्व के संतुलन माढ़े रहते बने रहते कहले बा, फसल मन के बढ़वार और विकास सुघर होते, उत्पादन और फसल के गुणवत्ता में घलो बढ़वार होते। सम उर्वरक उपयोग ले माटी के अपन बरस तक उपजाऊपना हर सुरक्षित रहते और पर्यावरण प्रदूषण घलोक कम होते। संगवारी हो, उर्वरक माने कि रासायनिक खातु जो हरावे के सम उपयोग के उपाय में कहिया तो डोरी खेत के जो माटी में रहावे उमर के जांच करा के का पोषक तत्व मन के स्थिति परिस्थिति ला जाने के काम हावे। परीक्षण रिपोर्ट के हिसाब ले जो भी रसायन मन के कमी हावे, कमी बेसी होते उसने उर्वरक के मात्रा ला प्रयोग करे बर हावे। असंगवारी हो, NPK माने कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये रासायनिक खातु के सम मात्रा में उपयोग करे बर हावे और गोबर खातु, कंपोस्ट खातु, केंचुआ खातु, हरिहर खातु के प्रयोग करे बर हावे। ऐसने करे ले माटी के संरचना और जल धारण क्षमता हर सुधरते। जिंक, सल्फर, बोरान और आयरन जैसे तत्व के कमी होए ले जतका अनुशंसा करेगी सावे उतका मात्रा में ही हमला प्रयोग करे बढ़ावे। और संगवारी हो, बुआई के बखत में फसल के बढ़वार के अवस्था अनुसार ही रासायनिक खातु देहे के काम आवे। ऐसे नत्रजन राखड़ला दू भाग में माट के देहे ले ज़्यादा लाभ होते और राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, PSB जैसे जो जैविक खातु मन हावे ए मन के उपयोग करे ले हमला रासायनिक उर्वरक मन की आवश्यकता कम होते। संगवारियों, सम मात्रा में रासायनिक खातु के उपयोग ले जबर लाभ हावे। एक तो फसल के उपज में बढ़वार होते, उत्पादन लागत में कमी आते, माटी के स्वास्थ्य में सुधार आते, पौधा मन के रोग मन ले आओ प्रतिकूल स्थिति परिस्थिति ले लड़े के जो पौधा मन हावे वो मन के ताकत बाढ़ते। तो संगवारियों, स्वस्थ माटी और सुघर फसल पर माटी परीक्षण करा के सम और एकीकृत पोषण तत्व प्रबंधन अपनाए के बुता बड़ जरूरी हावे। रासायनिक खातु के संग जैविक खातु और जैव उर्वरक के समन्वित उपयोग किसान ला ज़्यादा उत्पादन और बने लाभ दिला सकत हावे। संगवारी हो, आज हावे देखा गोपीनाथ बोरदलई भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और असम के पहला मुख्यमंत्री, ओमन के जयंती हावे। ओमन ला असम में प्रेम भाव, माया भाव के ले लोकप्रिय कहे जाते। आज के ही तारीख माने 6 जून 1890 के राहा नाम के स्थान में एमन के जन्म हुए रही। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एमन सक्रिय नेता रहीन। महात्मा गांधी के अहिंसात्मक विचार ले एमन प्रभावित रहीन। असम और पूर्वोत्तर भारत पर एमन के जबर योगदान हावे। गोपीनाथ बोरदोलई हर 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के विरोध करीन जेकर कारण असम के भविष्य में बड़े प्रभाव पड़ीस। बोरदोलई जी के प्रयास ले असम और पूर्वोत्तर भारत ला स्वतंत्र भारत के हिस्सा बना के राखे में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में उमन शिक्षा स्वास्थ्य और प्रशासनिक संस्था के विकास में अब महत्वपूर्ण भूमिका निभाइन। ओमन के प्रयास ले उच्च शिक्षा और चिकित्सा संस्थान के स्थापना ला बढ़ावा मिलिस। आज भी ओमन ला आधुनिक असम के निर्माता गने जाते। तो अतेक महान मनसे मन के जन्म जयंती के मौका में ओमन ला सुमिरन के संग नमन हावे। चला सुना जाए सुघरगन के लोकगीत ला।

हाँ तो संगवारी हो, केदार यादव, साधना यादव के आवाज में आपन लोकगीत लो सुनत रहा। संगवारी हो, वाटर हार्वेस्टिंग अपनाए, भूजल स्तर बढ़ाए, चर्चा के विषय रहा है। और भैया देखा, पानी जीवन के आधार हावे। बाढ़त आबादी, अनियमित वर्षा और भूइया भीतर के अब्बड़ दोहन ले, जो भूइया भीतर के पानी के स्तर हरावे, वो हर सरसराद घटत जात हवे। इस समस्या के समाधान पर वर्षा जल संचयन माने कि वाटर हार्वेस्टिंग एक प्रभावी उपाय हवे। वर्षा जल संचयन ले भूइया भीतर के पानी के स्तर बाढ़ते, चुआ, हैंडपम्प और बोर एमा पानी के उपलब्धता बाढ़ते, सिंचाई पर पानी के कम होते तो हमन जो सकेल के रखे रहते हैं, पानी ला संरक्षण करके रखे रहते हैं, वो हर काम आते हैं। पानी संरक्षण

दुनिया भीतर जतका हमन पझरा सकत हन, पानी यानी भेज सकत हन, उतना ज़्यादा हमन ले काम ला बढ़ाए बर हवे। संगवारी हो, वाटर हार्वेस्टिंग माने भू जल संरक्षण तकनीक के सेती किसान मन ला सुझाव हावे कि डोली खेत के पार के मेड़ बंदी कराया जाए, डोली खेत ला बढ़िया तरिया सन बना के रखा जाए, जतका ज़्यादा हमन पानी भीतर भेज सकत हन भूमि भीतर में, उसका ज़्यादा एक हमन ला फायदा हुई। और देखा सिंचाई बर कहिया तो बरहा बना के नाला बना के जो हमन सिंचाई करत हन ओकर चलते हमर बनेच पानी के नुकसान होते। यदि टपक सिंचाई ड्रिप इरीगेशन जला कहते, फव्वारा सिंचाई माने कि स्प्रिंकलर के जो सिंचाई हरावे, ऐसे तौर तरीका ला हम सिंचाई में अपनाथन तो पानी के संरक्षण के प्रति यह हमार एक बढ़िया बूता हुई। और जतका ज़्यादा हो सकत है पानी के नुकसान नहीं हो पाए, और जतका वर्षा के पानी गिरत है और भूमि भीतर हवा जाए ऐसे हमला उपाय जतन करे बर हवे। और संगवारी हो, हर बूंद बचा के भविष्य हमन ल सुरक्षित बनाए बर हवे। बरखा जल संचयन अपनाए बर जरूरी हवे, ऐसे करे ले हमन ला काम लाभ मिली। एला सबले ज़्यादा हमन ला लाभ मिली कि वाटर हार्वेस्टिंग ले हमर भू जल स्तर हर बाढ़ी। तो संगवारी हो, जतका ज़्यादा हो सकत है पानी ला बचाए बर हवे। अभी आओ देखा, आज के मोबाइल फोन आज के बखत बेर मा हमर आवश्यकता बन गिस हवे। बिना मोबाइल के मनसे हर रह नहीं सकत है। बने जगह देखिया तो मोबाइल के माध्यम ले बड़ काम हुआ था हमें। असंगवारी हो, कई प्रकार के उपयोग हुआ था हमें मोबाइल, और कई प्रकार के दुरुपयोग भी हुआ था हमें। कई जगह गलत उपयोग हुआ था हमें, नाना प्रकार के समस्या कारण यह मोबाइल हर बनत जा था हमें। एक बार मोबाइल के उपयोग हम अल्लाह बनच सोच समझ के करे बर हावे। भैया हो, मोबाइल के दुरुपयोग ले होइया समस्या में कहिया तो एकर ले समय के बर्बादी होते, पढ़ाई और बूता काम में ध्यान कम लागते, आँखी में पीड़ा, आँखी के बीमारी, मूड के पीड़ा और नींद के समस्या ये मोबाइल के ज़्यादा मोबाइल देखेले हुआ थे। सब लग कहिया तो ये सब दुरुपयोग ले होए वाला प्रमुख समस्या है। नानी प्रकार के आप मन आप देखे तो भैया कि मोबाइल देखा थे तो आँखी और कमजोर होगी साहब, काकरो मूड पीला थे, कोई कोई ऐसे मन से मन हावे जे मतलब सुनाई नहीं दे थावे। और यहाँ तक संगवारी सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये था, ये हुआ थावे कि मोबाइल मिल जाता हावे तो मन से मन अपन नाता गोता के जतका भी मनसे मन हावे ओमन करा अलग थलग रह के बर्ताव भी ज़्यादा मोबाइल के उपयोग करे मन में घर कर जात हावे। संगवारी हो, मोबाइल के दुरुपयोग ले महचे के उपाय में कहिया तो मोबाइल के उपयोग जरूरी काम बुतावर करे के काम हावे। रोजेज स्क्रीन टाइम के समय सीमा निर्धारित करे बार हावे, कतका देर देखना हावे, कतका देर नहीं देखना हावे, ये सब बात ध्यान में रखे काम हावे। संगे संग लइका मन बर भी एठी नियम बनाए बर हावे। ऐसे खाए के बेर मा, सूते के बेर मा आघू मोबाइल के उपयोग हमला नहीं कर ले ठीक रहते। लइका मन मोबाइल उपयोग मा सियान मन के निगरानी जरूरी हावे। असंगवारी हो, मोबाइल के सही उपयोग जीवन ला बड़ आसान बनात हावे, और ओकर दुरुपयोग कहिया तो समय, स्वास्थ्य और भविष्य ला नुकसान पहुँचा सकत हावे। अब संगवारी हो, देखा गोठर हावे प्राकृतिक सुरक्षा स्वस्थ फसल की गारंटी, जैविक कीटनाशक। अब यह हो, जैविक कीटनाशक माने जीव जीनिस ले बने वाला जियत हावे वो सब जीनिस ले बने वाला एक ठीक कीटनाशक हावे ला प्राकृतिक स्रोत ले बनाया जाते। फसल ला हानिकारी कीड़ा कीट ले बचाए बर एहर हमर मदद करते। और देखा जैविक कीटनाशक हर पर्यावरण, माटी और मनखे मन के स्वास्थ्य पर सुरक्षित हावे। प्रमुख जैविक कीड़ा कीटनाशी में कहिया तो नीमास्त्र, जैसे कि नाम हर बतात हावे तो यह लीम पान फल ओकर और गौमूत्र ले तैयार करे जाते। ऐसे ब्रह्मास्त्र
नाना प्रकार के करू पांजत का हरावे।

लीम होइस, करंज होइस, धतूरा होइस, और भी हमारा प्रकृति में जो जो मिल जाता है और माखुर एकल तैयार करे जाते। और संगवारी हो बवेरिया बेसियाना एक कीड़ा में प्रभाविक जैविक फफूंद हरावे। ऐसे वर्टिसिलियम लेकानी रस सुयाल जतका कीड़ा मन के नियंत्रण में यह उपयोगी हावे। और भैया हो जैविक कीटनाशक में लाभ में कहिया तो एक पर्यावरण प्रदूषण कम होते, माटी के उपजाऊपना माढ़े रहते, लाभकारी कीड़ा कीट ल कम नुकसान होते, ऐसे उत्पादन के गुणवत्ता के सुघर होते। जैविक कीटनाशक अपनाए पर स्वच्छ फसल और स्वच्छ पर्यावरण हमल मिलते। तो जतका ज़्यादा हो सके थे संगवारी अपन तीर्थखार में जतका भी हमर उपयोगी रुखराही मन हावे, पेड़ मन हावे, लीम के तो लगभग लगभग गाँव गाँव में मिल जाते, तो ये मन ले हमन ला जैविक कीटनाशक तैयार करे बर हावे। एकर ले फायदा ये हुई कि हमार खेती पाती के लागत कम हुई और हमार जतका भी खाए खुए के जिनिस मन हावे, साग सब्जी ले लेवा, कुछ भी ले लेवा, भाजी पालक वगैरह ले लेवा, ओमा कीड़ा कीट ले बचाए पर हम जैविक कीटनाशक के उपयोग करत हन, तो ओकर चलते हमला लाभ ये हुई कि हमर शरीर के भीतर में जहर के अंसर नहीं जाए, सुघर हमला खाए बर मिली, सुरक्षित मिली। और मनसे मन ला भी आपन सुघर सुघर चीज़ खवाहा, हाट बाजार में बढ़िया जैविक जिनिस ला बेचिया, तो ओकर चलते मनेज मनसे मन के लाभ हुई, स्वास्थ्य लाभ में अघवाए रही। और संगवारी हो जैविक कीटनाशक ले कहिया तो नाना प्रकार के हमन ला फायदा हावे, जैसे कि स्वास्थ्य व रेहर बढ़िया हावे, लागत कम हुआ हावे, हमार पेड़ पौधा मतलब नुकसान भी नहीं करे। कई ठीक कीड़ा कीटनाशक ऐसे हमें जीवन ला हमन डाल देते हैं तो हमार पेड़ पौधा मन झुरमुरा जाते हैं, मुरझा जाते हैं। संगे संग लैका मन पर भी यह सुरक्षित हावे, घर के लैका मन भी यदि जैविक कीटनाशक के बजाय ऐसे रासायनिक कीटनाशक वगैरह मन ला कभू कार खेलर खाद भूलवाल ऐसे कभी मुँह में डाल देते तो अलहन एक्टिव हो जाते। तो ये बात ला राखे काम हावे संगवारी हो, जैविक कीटनाशक प्राकृतिक सुरक्षा स्वस्थ फसल की गारंटी है। चल अब लोकगीत ला सुना जाए, फिर गोड़ बात आगू बढ़ावो।

हाँ तो संगवारी हो देखा आप मन अभी श्रवण कुमार साहू संगवारी मन के आवाज में लोकगीत सुनत रहा। अब जाए के बेरा हो साबे जमो संगी संगवारी मन छोटे लाल के राम राम जय जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कृषक बंधुओं का कार्यक्रम किसान वाणी। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 8:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में निदा फाजली की लिखी हुई गीत, ललित सेन के संगीत निर्देशन में।

0: AIR at 90. ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

इसी के साथ कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत अब संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 8:30 होने को हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं सावन को आने दो इस फिल्म का गीत। येशु दास की आवाज में फारूक जामिल की लिखी हुई गीत को संगीत से सजाया है राजकमल ने।

0: आकाशवाणी F90।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं भारती यादव रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सर्वप्रथम आकाशवाणी को अपने गौरवशाली 90 वर्ष पूरे करने पर मेरी ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं। आकाशवाणी ने वर्षों से हम देश के कोने कोने तक समाचार, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाई है, चाहे समाचार हो या हवा महल या विविध भारती जैसे लोकप्रिय कार्यक्रम में न केवल लोगों का मनोरंजन किया बल्कि जागरूक भी बनाया है। गांव हो या शहर, हर वर्ग के लोगों तक आकाशवाणी की आवाज़ पहुंची है और उससे एक सूत्र से बांधने का कार्य किया है। मैं हृदय से आकाशवाणी का धन्यवाद करती हूं, जिसमें हमेशा विश्वसनीय व सच्ची जानकारी हम तक पहुंची। आज जिस ऐतिहासिक अवसर पर हम सभी आकाशवाणी के इस गौरवशाली सफर को नमन करते हैं और इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।
2: कार्यक्रम फिल्म संगीत में लीजिए सुनी कुमार सानू और साधना सरगम के आवाज में समीर की लिखी हुई गीत। आनंद मिलिंद के संगीत निर्देशन में फिल्म का नाम है शतरंज।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
0: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
5: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
0: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
5: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
6: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
7: इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। FM 107 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा, दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
2: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारकोदुरु गाँव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारकोदुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लेवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लेवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लेवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लेवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लेवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
4: खाड़ी देशों और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमेरिकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
5: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
6: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है. यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है. मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा. पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी.
1: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है. किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है. उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है. प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है. आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए. महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया. मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया. 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है. CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपनी आवेदन जमा कर सकेंगे. इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी. मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है. पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है. इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है. जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है. फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया. आशीष तानीपूटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है. प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया. उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है. गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है. फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया. भारत ने 6ठी बार ये खिताब अपने नाम किया है. अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है. भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है. पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है. न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं. कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं. केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली. ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है. और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की. देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की. केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया. इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की. कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं. कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा. जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता. भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया. इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ. नमस्कार.

फिल्म का नाम था घर। लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा था और आर डी बर्मन की तर्ज थी। आपके लिए प्रोग्राम में अगली पेशकश।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, तेरे घर के सामने फिल्म का नाम था। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा था, SD बर्मन की तर्ज थी। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपके लिए।

0: फिल्म था वक्त। आशा भोसले को आप सुन रहे थे। इस गीत में साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और रवि की तर्ज थी।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपके लिए।

लता मंगेशकर को और सखियों को आप सुन रहे थे मधुमती फिल्म के इस गीत में। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था और संगीतबद्ध किया था सलिल चौधरी ने।

0: प्रेम पर्वत इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। मीनू पुरुषोत्तम की आवाज में जानिसार अख्तर ने इसे लिखा था और जयदेव का संगीत
1: है। 9:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम युवा शक्ति।
2: This is Akashvani. In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, from women empowerment to women-led development. Participants are Professor Sushma Yadav and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator is Sonu Sood. Ye Akashvani hai. Prastut hai Vishesh Shrinkla. इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल महिला सशक्तिकरण का परिवर्तनकारी दशक। इसमें भाग ले रही हैं प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
3: In the 12 years of NDA government, Prime Minister Narendra Modi has consistently said women empowerment is one of the key priorities of this government, and the government's dream of upgrading women's development to women-led development has turned to reality thanks to the focused efforts of the government, be it education, health, financial inclusion, livelihood avenues, security, quality of life. The targeted schemes of the government have empowered and accorded respect and dignity to women as a powerful economic force, giving them confidence and opportunities to break new frontiers. To discuss this emergence of women as an integral and crucial part of nation building, we have with us two very special guests, Professor Sushma Yadav and senior journalist Aditi Tandon. So, Professor Sushma Yadav ji, we would like to start with you. हम आपसे जो आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है पिछले 12 वर्षों में एनडीए सरकार के इस कार्यकाल में, उसके ऊपर हम आपसे डिस्कशन करना चाहेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन योजना हो जिसमें 32 करोड़ महिलाओं से अधिक के बैंक अकाउंट खुले पहली बार, या फिर जो एक एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योरशिप का सपना पूरा करने वाला जो पीएम मुद्रा योजना थी, उसमें से 3 में से 2 जो लाभार्थी थी वो महिलाएं थी, और महिला एंटरप्रेन्योर्स को 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लोन्स प्राप्त हुए। सो ये स्कीम्स तो अच्छी थी ही, लेकिन जो इनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और जो महिलाओं के फेवर में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्या इसे आप एक बड़ी उपलब्धि मानती हैं? कैसे देखती हैं आप इनके महत्व को?
4: बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए विकसित भारत महिलाओं के बिना हो ही नहीं सकता, मैं ये बात याद दिलाना चाहती हूँ यहाँ। और विकसित भारत का मतलब उनके लिए है एक सशक्त, सक्षम और स्वावलंबी नारी समूह और नारी शक्ति। उनका मानना है कि जब तक महिलाएं इस विकास की यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगी, तब तक भारत विकसित नहीं बन सकता। और आप जानते हैं कि उनका इस समय सबसे बड़ा ध्येय, उद्देश्य और स्वप्न वो सब विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 है
3: जी।
4: उस यात्रा के लिए उन्होंने, और आप जानते हैं कि जो शक्ति है वो शक्ति मानसिक तो होती है, बौद्धिक तो होती है, पर आर्थिक सबसे अधिक होती है, जो दिखाई देती है। मानसिक और बौद्धिक शक्ति दिखाई नहीं देती है, लेकिन आर्थिक शक्ति तो स्पष्ट दिखाई देती है। इसलिए सबसे पहले वित्तीय समावेश की बात उन्होंने की है, और वित्तीय समावेश में जनधन खाते सबसे पहली योजना है, जिससे उन्होंने पूरे देश को ये अवसर दिया कि वह बैंकों के साथ जुड़ सके और बैंकों की जो वित्तीय सहायता है वो सबको उपलब्ध हो सके। और इसमें सबसे पीछे रहने वाली महिलाएं थी, इसलिए महिलाओं को उसमें शामिल किया। और ये आश्चर्य की, सुखद आश्चर्य की बात है कि अब वो 50% से अधिक खाते जो हैं वो महिलाओं के खुले हैं, क्योंकि शायद उन्हें ही बैंक तक जाने की झिझक भी थी
3: जी,
4: और बैंक तक जाने के लिए सुरक्षा चाहिए थी। तो जो लगभग 30 करोड़ से ज्यादा खाते खुले हैं उसमें अब तो 61% लेटेस्ट डाटा इज इट्स मोर देन 61% वुमेन। सो सबसे पहला जो मैं बात कर रही थी, जनधन खातों की सफलता, लेकिन वो वहीं नहीं रुके, क्योंकि सिर्फ जनधन खाते खुल जाएं वही नारी को सशक्त नहीं करेंगे। लखपति दीदी का सपना दिखाया, उसको पूरा किया, क्योंकि कितनी सारी जो लखपति दीदी बनी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, 3 करोड़ की पहले बात की थी, लेकिन 10 करोड़ महिलाएं उसमें जुड़ चुकी हैं। मात्र काशी सवा करोड़ महिलाएं हैं, तो सालाना 1,00,000 रुपया, देखिए पहले जमाने में हम सपना देखते थे कि लखपति बन जाएंगे तो क्या क्या करेंगे
3: जी।
4: और शहरों में चाहे वो अब उतना बड़ा सपना नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ कैश नहीं है उतना, लखपति बनना अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है। और वो महिला बन जाए तो लखपति दीदी का जो कंसेप्ट दिया, जो योजना दी, वह महिलाओं को करने वाली योजना है। और ये सिर्फ लखपति दीदी नहीं है, वह कमाने वाली बनती है, हुनर हाट की

0: सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें जिसका जिक्र अदिति कर रही थी, तो उसमें जिस तरह का विकास हुआ है अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में 4.2 लाख अकाउंट्स थे और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ये संख्या बढ़कर 4,53,00,000 अकाउंट हो गई है। टोटल डिपॉजिट्स 0.001 लाख करोड़ थे FY15 में, जो बढ़कर 3.33 लाख करोड़ रुपीज हो गए हैं FY25 में। सो ये फिगर्स मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो गर्ल चाइल्ड के लिए जो बात करी जाती है, उसको एक बहुत ही ऑन द ग्राउंड भी उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिस तरह की स्केलिंग हो रही है, ये आपको लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है?
1: बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आदित्य जी के साथ पूरी तरह सहमत हूँ कि जो लाइफ साइकिल अप्रोच हमको चाहिए थी ये वही है। और आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उस समय महिलाओं का लिंगानुपात, द जेंडर रेशियो वुमेन वाज प्रिकेरियस, इट हैड गोन डाउन टू बिलो 900, विच हैज नाउ ऑफ कोर्स बिकम 929, एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट और वाज बिकॉज ऑफ दैट। और उससे ये लाभ हुआ, ये लिंगानुपात तो बढ़ा ही बढ़ा। आप देखेंगे कि महिला नामांकन शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वह स्कूली शिक्षा हो चाहे वह उच्च शिक्षा हो, उच्च शिक्षा में भी महिला नामांकन 9.86 लाख से 34 लाख हो गया है, विच इज ए ह्यूज जंप। और मात्र इतना ही नहीं है, मैं फिर से याद दिलाऊंगी, जैसा अभी अदिति जी ने कहा कि आप JEE देख लीजिए, आप CBSE देख लीजिए, आप NEET देख लीजिए, आप BA MA PhD यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन एक बार देख लीजिए, स्पेशली ऑफ मेट्रोस, यू विल फाइंड वुमेन आउट नंबरिंग मेन in almost all achievements. They've yet to outnumber them in total enrollment, but they are outnumbering in success. And the STEM special, which is a special effort from the government, that we don't limit them to arts and humanities, science, technology, engineering, mathematics, management, and women in boards, they have to be there. And for digital empowerment of women, which I think is will empower them much more in the given times, वहाँ भी सरकार ने प्रयास किया है कि digital marketing, cyber security और सुरक्षा, नव्या योजना जो चलाई है 16 से 18 वर्ष की बच्चियों के लिए कि उनको ट्रेन किया जाए फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल मार्केटिंग, दोनों उनको तैयार करती हैं आने वाले समय के लिए और इस समय जिस प्रकार का वातावरण प्रगति के लिए आवश्यक है उसके लिए भी।
0: बिल्कुल,
1: मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी यहाँ कि स्वास्थ्य सुरक्षा स्वच्छता ये साइकिल के पहले पहिए हैं जहां से आरंभ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बार बार उज्ज्वला योजना के माध्यम से, जो अब 11 करोड़ महिलाओं तक पहुंच चुके LPG कनेक्शन, फिर जनौषधि केंद्रों के माध्यम से महिलाओं की बेसिक फैसिलिटीज के लिए, सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मोर एंड मोर वुमेन वर ब्रॉट टू हॉस्पिटल्स, इट्स मोर देन 7.3 करोड़ नाउ। फिर मातृवंदना योजना, जो PM मातृवंदना योजना है, मोर देन 20,000 करोड़ वुमेन वर एक्सेस्ट। और फिर मिशन इंद्रधनुष के तहत जिसमें बच्चे भी हैं माताएं भी हैं, वुड बी मदर्स आर देयर
0: फॉर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ऑल्सो लॉट ऑफ एफर्ट्स हैव बीन मेड एज यू आर रेफरिंग, यू नो टिल मार्च 2026 मोर देन 11.87 करोड़ चिल्ड्रन एंड 3.96 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन वर रजिस्टर्ड एंड 8.73 करोड़ वुमेन वर स्क्रीन फॉर सर्विकल कैंसर। एक और जो आपने बात करी मातृत्व सपोर्ट दी जा रही है जी, सो मैटर्नल मोर्टैलिटी रेट्स बहुत नीचे आए हैं, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट्स नीचे आए हैं और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज 68% से बढ़कर 90% से अधिक हो गई है जी, 98 बिल्कुल 98%। तो ये आपको लगता है कि एक तरह से एक माइंडसेट चेंज को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लोगों का विश्वास बढ़ रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा?
1: लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है
0: जी,
1: ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं
0: जी जी।
1: क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है, पहले तो ले जाते ही नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, असुरक्षा भी थी। फिर जो अभी शौचालय सुविधा बढ़ी है, जस्ट गॉन फ्रॉम 39% टू 100%, सो एवरी हाउस होल्ड हैज अ टॉयलेट और अ कवर्ड टॉयलेट एज वी से, सो ODF फ्री इंडिया। देन जो मातृ मृत्यु दर, मोर्टैलिटी एज यू सेड, which has really reduced from 130 to 80, which is a huge change.
0: Yes.
1: Not merely this, the maternal leave vacancies, leaves which were there granted before, they have increased from 12 weeks to 26 weeks. And I think that has given the mother and child a leverage in terms of health and quality time spent together, yes, which will surely lead to healthier generations in coming times.
0: And also when yes. women are healthier and when, you know, they are freed from duties like fetching water from miles, you know, yeah, due to the yeah. Jal Jeevan Mission, you think they have more time to devote to, you know, economic activities?
1: More time to devote to economic activities, more time to devote to their capacity building, more time to devote to thinking about their future. Mm. You can see the women have dreams about their children now, mm. and especially the daughters. Mm. I have come across as a woman vice chancellor, literally, I met so many women who were very, very eager that their children, or especially girl children, come to higher education and go to fields which were unheard of before. So that kind of mindset, that kind of dreams, that kind of aspirations, it's aspirational India now, has come up. Aur Modi ji jo baar baar kehte hain, swasth nari hi swasth rashtra ki janmadata hai. Aur swasth rashtra hi sashakt rashtra ban sakta hai. This is the linkage between women's health and the empowered or Vikasit Bharat, as we say. Aatmanirbhar Bharat bhi usi mein mila hua hai.
0: Absolutely. Aditya ji, coming to you, agar hum safety ki baat kare, ek dignified life ki baat kare, to jo mission shakti ek mission wo raha hai muhim sarkar ka, jiske tahat unhone kai aise initiatives wo laaye hai jisse ki mahilaye surakshit mehsoos kare, jisme abhi jo latest hai She Box portal, jo digital platform hai sexual harassment complaints ka workplace pe unko register karne ka, iske baare mein aap thoda sa bata sakti hai ki iska विस्तार 12 वर्षों में कितना हुआ है ये सेफ्टी नेट का विमेन के लिए, और इसके कारण कितनी सशक्त महसूस कर रही हैं आज की महिलाएं?
2: देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है सेफ्टी का जो इशू है महिलाओं का, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है इस वक्त वो यही है कि महिलाओं के लिए सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी जब वो अपने काम पर जाएं। जैसे हमें याद आता है आरजी कार का जो बड़ा इंसिडेंट हुआ था कलकत्ता में, उसके बाद कितना रोष था, उससे पहले निर्भया हुआ। ये बड़े बड़े इंसिडेंट्स जब हमारी सोसाइटी में हुए, उनसे क्रिमिनल लॉज को बदला गया। निर्भया के बाद आपको याद है कॉम्प्रिहेंसिव क्रिमिनल लॉज लाए गए, लेकिन आज भी दुख की बात यह है कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं। और इस मुद्दे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद 2-3 बार बोला है कि सबसे अर्जेंट क्राइसिस यही है और इसी को रिजॉल्व करने की जरूरत है। और इसी के मद्देनजर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब एक बहुत बड़ा वक्तव्य रेड फोर्ट से अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में दिया था, जब उन्होंने कहा था पेरेंट्स को कि आप अपने बेटों को कल्चरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज समझाइए, उनको घर में ये प्रशिक्षण दीजिए, ये वैल्यू सिस्टम दीजिए, ये शिक्षा दीजिए कि महिलाओं की इज्जत करना ये जरूरी है और ये एक आम बात होनी चाहिए। मतलब ये सोसाइटी का कर्तव्य है, हर चीज सरकार नहीं कर सकती। हमने देखा है कि इस सरकार का भी एक बहुत बड़ा मुहिम रहता है जन भागीदारी का, जो बड़े बड़े चैलेंजेस सोसाइटी फेस करती है। जैसे हमने सदियों से देखा, जब कुरीतियों को हटाया गया, सती प्रथा को हटाया गया, पर्दा सिस्टम को हटाया गया, सोसाइटी ने अपने अंदर से रिफॉर्मर्स पैदा किए जिन्होंने इन कुरीतियों को हटाया। मुझे लगता है विमेन सेफ्टी को लेके वही मुहिम इस वक्त चाहिए। सोसाइटी को खुद बोलना होगा कि इनफ इज इनफ, क्योंकि ये जो बात है अपने हाथ में लोगों को लेनी होगी। एक पॉलिटिकल विल एक लीडर दिखा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री अपनी पॉलिटिकल विल महिला सशक्तिकरण, महिला सेफ्टी के पीछे दिखा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद सरकार के भी हाथ बंधे होते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो एजेंट ऑफ चेंज है सोनू, वो समाज है, वो सरकार नहीं है, समाज सबसे बड़ा एजेंट ऑफ चेंज है। और जहां तक कि आपने जेंडर बजटिंग की बात की और आपने मिशन शक्ति की बात की, उसके तहत जेंडर फोकस्ड एलोकेशंस बहुत बढ़ाई गई हैं ओवर द इयर्स। जैसे अगर आप यही बजट उठा के देख लीजिए 26-27 का, उसमें सिग्निफिकेंट राइज किया गया है जेंडर बजटिंग के लिए, जिसका बहुत सारा पोर्शन महिला सशक्तिकरण और महिला सेफ्टी की तरफ जाएगा। इस वक्त करीब 10% जो हमारे वित्त मंत्री जी ने दिया, 10% उसका जो टोटल बजट का हिस्सा है वो जेंडर बजटिंग है, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर उसको अच्छे से व्यय किया जाए तो कोई वजह नहीं है कि सिस्टम्स इन प्लेस ना हो। पर आप सीसीटीवीज लगा देंगे, आप वन स्टॉप सेंटर्स बना देंगे सोनू, लेकिन आप समाज का जो माइंडसेट है वो कैसे बदलेंगे? आप एक पुरुष का महिला की तरफ देखने का रवैया कैसे बदलेंगे? उसमें तो फैमिलीज का रोल आ जाता है ना, उसी में समाज का रोल आ जाता है।
0: बिल्कुल, पार्टिसिपेटिवली ही ये चेंज लाया जा सकता है। और जो भी व्यवस्था है, 15,000 प्लस विमेन हेल्प डेस्क है सारे जो पुलिस स्टेशन है इंडिया में उनमें, और जैसा आपने वन स्टॉप सेंटर्स का जिक्र किया, 1,000 से ज्यादा है, 24/7 विमेन हेल्पलाइंस है, और 700 प्लस फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हैं जो विमेन को ही त्वरित जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए हैं, लेकिन इन सब का भी इस्तेमाल, ऑफ कोर्स प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, बट अगर कुछ होता है तो ये हिम्मत होनी चाहिए, समाज का सपोर्ट होना चाहिए कि आप आगे आएं और इन फैसिलिटीज का फायदा उठाएं ताकि आगे से

0: जो है इस तरह के हादसे ना हो, मिनिमाइज हो। सो एक प्रोएक्टिव रोल सबको प्ले करना जरूरी है इन सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए भी।
1: बिल्कुल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो सिस्टम्स इन प्लेस हैं, पहली बार उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी जरूरी है, जिसकी तरफ बहुत काम हो रहा है। दूसरी बात ये है कि जुडिशरी और पुलिस सिस्टम, देखिए आप अगर पूरे विश्व में देखेंगे और आप अगर विश्लेषण करेंगे कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती हैं, कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री मानी जाती हैं, तो आप ये पाएंगे कि उन सोसाइटीज के लोग ये कहते हैं कि उनका विश्वास पुलिस सिस्टम में और जस्टिस सिस्टम में सबसे ज्यादा है, जजेस और कॉप्स में। तो हमारे देश के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि जब महिला अपना कोई कंप्लेंट लेकर पुलिस के स्टेशन में जाती है तो उसे ये कन्विंस्ड होनी चाहिए उस वक्त कि मेरी बात वहां बैठा हुआ पुलिस पर्सोनल सुनेगा, मेरी बात को सेंसिटिविटी से लेगा, मेरे कैरेक्टर की जजमेंट में नहीं बैठेगा। वैसे ही जो जजेस हैं उनके लिए भी बहुत सारे प्रशिक्षण हुए हैं। देखिए जब जब सेक्सुअल असॉल्ट की बात हुई है बहुत सारे पाथ ब्रेकिंग जजमेंट्स आए हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसकी वजह से लॉज बदले गए हैं। आपको पता है कि पहले जमाने में हम इसी बात से जूझते रहते थे कि जजेस भी महिलाओं के कैरेक्टर को जज करने, टू फिंगर टेस्ट बहुत आम होता था। आपका सबसे पहले आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती थी अगर आप सेक्सुअल असॉल्ट का कोई कंप्लेन करें, लेकिन वो अब स्टैट्यूट बुक से हटा दिया गया है। अब अगर महिला कहती है उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है तो पुलिस उसको मानेगी, उसकी सुओ मोटो स्टेटमेंट रिकॉर्ड
0: बिल्कुल
1: होगी और ओनर्स टू प्रूव अदरवाइज वो परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम पर है, ना कि महिला पर है जो पीड़ित है। सो ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है जिसकी तरफ भी अब सोसाइटी जा रही है, क्योंकि अब पूरा माहौल पॉलिटिकल विल इस तरफ है कि
0: जी
1: महिलाओं के
0: बिल्कुल
1: साथ सरकार भी खड़ी है, पॉलिसी भी खड़ी है और इस वक्त कुछ कुछ हद तक लगता है कि समाज भी खड़ा है।
0: सुषमा जी, आप अभी थोड़ी देर पहले डिजिटल एम्पावरमेंट की बात कर रही थी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं या और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई हैं, शी मार्ट जो इनिशिएटिव है या गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस के अंडर जो वुमनिया इनिशिएटिव है जिसमें 2 लाख से अधिक विमेन लेड एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड हैं और इसमें 28,000 करोड़ से अधिक का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन विमेन लेड एंटरप्राइजेस को पिछले वित्त वर्ष में बिक्री हुई इस माध्यम से, जो कि 27% ग्रोथ थी FY25 के मुकाबले। सो आपको लगता है कि ये जिस तरह का सशक्तिकरण डिजिटल माध्यमों से भी हो रहा है, चाहे वो ये मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना हो या जो हेल्थ सिस्टम में हेल्थ कार्ड्स हर फील्ड में या इम्यूनाइजेशन में ट्रैकिंग डाउन की किसको कितना क्या टीकाकरण हुआ है, डिजिटाइजेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है विमेन एम्पावरमेंट में भी।
2: जी बिल्कुल, मैं मानती हूँ क्योंकि जो डिजिटल एक्सेस है विच इज इजीएस्ट फॉर वुमेन स्पेशली, इफ यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एंड यू कैन स्टिल एक्सेस मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज, नथिंग बेटर देन दैट, दैट इज ऑलमोस्ट बेस्ट, बिकॉज अपने आप में मूवमेंट या आवागमन जिसको कहते हैं वो महिलाओं का समय भी लेता है, शक्ति भी लेता है और कई बार कुछ सीमाएं भी डालता है। इसलिए डिजिटल एम्पावरमेंट, डिजिटल ट्रेनिंग और डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग ये टारगेट रहा है सरकार का इन सभी क्षेत्रों में जो अभी आपने कहे हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन इनसे महिलाएं तैयार हुई हैं व्यापारी बनने के लिए, उद्यमी बनने के लिए और विकास के कार्यों में जुड़ने के लिए, क्योंकि सरकार का उद्देश्य था, मैं बार बार कह रही हूँ, मोदी जी कहते हैं हम क्या करेंगे, पहले उनको वित्तीय सहायता देंगे, फिर उनका कौशल विकास करेंगे और फिर उन्हें प्रशिक्षण भी देंगे। There can't be a better recipe because if you get some financial support, which women need usually, and maybe after some time they don't even need, they may have their own groups, they may have their own financiers also, like they're coming up now. But with that, you also need later skills because skills keep changing. And the market needs different kinds of skills. At times, they may be digital skills in coming time. And you see, women are really very good at that because this is heart and hand, both going together. And then if you really train them into the right kinds of skills and empowerment techniques also, I would say, or fields, then they're ready for the world. और ये सरकार चाहती है, women led development कब होगा? वो एक माध्यम तो यही है, पहला स्वास्थ्य, उसके बाद सुरक्षा, उसके बाद आर्थिक सहायता या आर्थिक स्वावलंबन, उसके बाद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। क्योंकि मैं ये बात जरूर करना चाहती हूँ यहाँ कि जिस प्रकार से महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी का हर स्थान पर स्वागत किया है, उनका साथ दिया है, उनको सपोर्ट किया है, उसके पीछे ये सारे तो हैं ही, वो राजनीतिक सोच भी है जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम उनकी प्रतीक्षा कर रहा है. 33% एट द लोकल रूट्स और द ग्रास रूट्स हैज कम टू 50% और मोर देन 50%. और यही 33% जब पार्लियामेंट्स और लेजिस्लेचर्स में आएगा, मुझे विश्वास है जो अभी योजनाएं चली हैं ये 10 गुनी 100 गुनी होकर आगे आएंगी. और जो माहौल अभी आप बात कर रही थी, अदिति जी कह रही थी कि लगभग समाज भी तैयार है, राष्ट्र और समाज दोनों उसके लिए तैयार हो.
0: इनफैक्ट जो आप बोल रही हैं, अगर हम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की बात करें तो महिलाएं 48.62% है इलेक्टोरेट का, और हमारा वोटर टर्नआउट जो है, मैं हमारा इसलिए कह रही हूँ कि हम तीनों महिलाएं हैं, 65% से अधिक है, जो पुरुषों से कुछ ऊपर है. और 14.5 लाख महिलाएं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में इलेक्ट हुई हैं, जो कि 46% है टोटल वहां जितने भी अधिकारी हैं उनका. एंड ये पाया गया है कि जब से विमेन आई हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने जो रोजमर्रा की लाइफ है उसको बेहतर करने का, एमिनिटीज डेवलप करने पर फोकस किया है. सो ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड है उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन है वो भी.
2: बिल्कुल, आई विल से दैट, एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस इन इंडिया. आई हैव सीन इट फ्रॉम वेरी क्लोज. आई कैन से विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स, विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स, फर्स्ट टाइमर, मे बी एडमिनिस्ट्रेशन में तो फर्स्ट टाइमर सभी होते हैं, सो इट रियली डजंट मैटर, दे लर्न. एंड आई हैव मेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हु से दैट वी क्वेश्चन्ड अवर ऑफिस व्हेन दे से दिस कांट बी डन. तो हमने उनसे पूछा क्यों नहीं हो सकता है, व्हाई आर वी हियर. तो लिखे कानून ही सिर्फ चलेंगे या नागरिक सुविधाएं बढ़ेंगी. आपको याद है अभी प्रधानमंत्री जी जब काशी में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था नागरिक देवो भव, यानी पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई उन तक पहुंचे. और जो महिला प्रशासक हैं, विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स, स्पेशली इन ऑफ यंग वंस, दे हैव दिस इन देयर माइंड, तो गवर्नेंस का रूप बदलेगा. और फिर जब यही सीनियर होंगी तो नीतियों का रूप भी बदलेगा, क्योंकि नीतियां भी जब फर्स्ट इन एक्सपीरियंस से बनेगी, केवल कंसल्टेंट्स नहीं बनाएंगे, प्रशासक और नागरिक मिलकर बनाएंगे, तो वो नीतियां भी अच्छी बनेगी.
0: अदिति जी, आपको लगता है कि जैसे जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण होता है तो अपने आप ही उनका जो सम्मान है, जो एक दर्जा है समाज में, वो बढ़ जाता है और समाज का भी जो माइंडसेट है वो जेंडर इक्वालिटी की तरफ जाता है?
1: इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसका सबसे इम्पोर्टेंट यार्डस्टिक ये होता है कि क्या कोई सिस्टम, क्या कोई सरकार इस चीज के लिए तैयार है कि एक साथ महिला और पुरुष लीडर्स एक ही टेबल पर बैठकर देश के भविष्य के लिए नीतियां बनाएं या लेजिस्लेशन बनाएं. तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पास होना या उसके पीछे पॉलिटिकल इंटेंट का होना एक बहुत बड़ा माध्यम है इस चीज को जताने का कि हाँ, सरकार पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अब तैयार है. अभी हम बात कर रहे थे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, लोकल बॉडीज में महिलाओं का कितना बड़ा रोल अब हो चुका है. वो इसलिए संभव हुआ है सोनू, क्योंकि 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दी गई थी और 33% सीट्स आरक्षित कर दी गई थी पंचायती लेवल पर महिलाओं के लिए. वो अब आते आते तमाम प्रदेशों ने 50% कर दी है. इतने साल लग गए हैं महिला लीडरशिप को तैयार करते करते. तो अब हम जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करते हैं, तो जब अब ये एक आकार लेगा, जब भी जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2029 का जो अगला इलेक्शन है वो 33% महिलाओं के साथ, आरक्षण के साथ लड़ा जाएगा, अगर वो संभव हो पाया, तो तब से लेकर फिर महिला सशक्तिकरण का असली दौर शुरू होगा, जब महिलाएं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में उनको अपना सही हिस्सा मिलेगा.
0: So as India moves towards the goal of Viksit Bharat by 2047, the role of women is increasingly becoming central to this journey. Across sectors, women are contributing as workers, entrepreneurs, farmers, innovators and leaders. Sushma ji, Aditi ji, thank you so much for this insightful and inspiring discussion.
2: Thank you.
3: In this special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government, from women empowerment to women-led development. Participants were Professor Sushma Yadav and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. Vishesh Shrinkhla ke antargat abhi aap sun rahe the Modi Sarkar ke 12 saal Mahila Sashaktikaran ka Parivartankari Dashak. इसमें भाग ले रही थी प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन. कार्यक्रम का संचालन कर
4: ऋषिकेश गांगुली जी का शास्त्रीय गायन.
5: अभी आप सुन रहे थे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर युवा शक्ति थीम पर विशेष कार्यक्रम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविध संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में ये सुनते हैं हमराज फिल्म का गीत। महेंद्र कपूर की आवाज में बोल हैं साहिर के और संगीतकार हैं रवि।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़। श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
1: मन का सुकून, दिल की आरती,
2: सुरीली संदली।
7: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
8: कार्यक्रम विविध संगीत में आइए सुनते हैं

जरा कल फिर मिलिएगा। ये गीत अभी आप सुन रहे थे पंकज उदास की आवाज में, जमीर काजमी के बोल थे और संगीतबद्ध किया था पंकज उदास ने। कार्यक्रम बेबी संगीत के अंत में आइए सुनते हैं गुलाम अली की आवाज में, मोहसन नकवी का कलाम गुलाम अली की संगीत निर्देशन में।

गुलाम अली की गाई हुई इस गजल के साथ ही कार्यक्रम देवी संगीत अब संपन्न होता है। एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी। कार्यक्रम आइए सुनते हैं राग नट भैरव ध्रुपद सुलताल में पंडित भजन सपोरी का संतूर वादन। पखावज पर संगत कलाकार हैं डालचंद शर्मा।

पंडित भजन सपोरी के राग नट भैरव ध्रुपद सुलताल में संतूर वादन के साथ ही शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम सूर्यामिनी अब संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी व अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिमी एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का

0: ना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडवीय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ए देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EAC members, 2 principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikant Das, also attended the meeting.